0: श्रोताओं, स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने रोहित प्रसन्ना द्वारा बजाए बांसुरी पर राग नट भैरव सुना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय

0: ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Center and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay foundation stone of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his 2-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Pashchim Bengal Divas, West Bengal Day, celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Tomorrow, Prime Minister Modi will participate in the 12th International Yoga Day celebration in Kolkata at around 6:30 a.m. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next Vice President of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the global anti-money laundering and counter-terror financing watchdog. The decision was taken during the FATF plenary held from 17th to 19th of June. The Minister of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said the appointment reinforces India's commitment to combating terrorism, financing and illicit financial networks. It added that Mr. Agarwal's experience as former

0: जा।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम वंदना। अब प्रस्तुत है चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं।
2: बुद्ध के सिद्धांत या शिक्षाएं पूरी तरह से मनुष्य को दुख से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से हैं और इन्हें सामूहिक रूप से धर्म या धम्म कहा जाता है। बुद्ध ने सद्गुणों को महत्व दिया, ज्ञान, दया, धैर्य, उदारता और करुणा। बौद्ध धर्म का मूल बुद्ध की शिक्षाओं से बना है, जो है तीन सार्वभौमिक सत्य, चार आर्य सत्य तथा अष्टांगिक आर्य मार्ग। तीन सार्वभौमिक सत्य, जैसा कि बुद्ध ने उपदेश दिया, तीन सार्वभौमिक सत्य हैं। ब्रह्मांड में कुछ नहीं खोता, ब्रह्मांड में सभी चीजें एक चक्र में मौजूद हैं। पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, जो बदले में वापस पदार्थ में बदल जाता है। मनुष्य मनुष्य से पैदा होता है, जो फिर से मनुष्य को जन्म देता है। इस प्रकार कुछ भी नहीं खोता और ब्रह्मांड जो कुछ भी लेता है उसे वापस कर देता है। सब कुछ बदलता है इस दुनिया में, कुछ भी स्थायी नहीं। कारण और प्रभाव का नियम, बुद्ध कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित कर्म में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटता है। इस जीवन और अगले जीवन में मनुष्य की स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। चार आर्य सत्य, बुद्ध ने चार

0: आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, दुख का सच। जीवन में सभी मनुष्य किसी ना किसी तरह से दुख भोगते हैं। जन्म के समय हम दुख भोगते हैं, बीमारी में और मृत्यु के समय भी हम दुख भोगते हैं। किसी प्रियजन से अलग होना दुख है, अप्रिय का मिलना भी दुख है। बुद्ध दुख का कारण इच्छाओं और आसक्ति को बताते हैं। सांसारिक वासना का भ्रम और कामुक सुखों की लालसा दुख का कारण बनती है। दुख को रोकना और आत्मज्ञान प्राप्त करना संभव है। दुख को समाप्त करने के लिए सभी सांसारिक भ्रमों की जड़ में निहित इच्छा को दूर करना होगा, ताकि मन को पूर्ण मुक्ति और अनासक्ति प्राप्त हो सके। उस मार्ग का सत्य जो हमें दुख से मुक्त करता है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है। अष्टांगिक आर्य मार्ग। अपने ज्ञानोदय के बाद बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में दुख से मुक्ति के लिए 8 महान मार्ग निर्धारित किए हैं। वे हैं सम्यक समझ, ये 4 आर्य सत्यों की सच्ची धारणा को संदर्भित करता है। सही विचार, सम्मा संकल्प, व्यक्ति को सही और गलत इरादे के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। सोच में स्पष्टता अच्छे चरित्र के निर्माण में मदद करती है। सम्यक वाक, हमें सदैव दयालुता पूर्वक सचेत होकर दूसरे का सम्मान करते हुए और उन पर विश्वास करते हुए बोलना चाहिए। सही कर्म, सम्मानता, इसमें दूसरों को चोट पहुंचाने, दूसरों की आलोचना करने से बचना और अच्छे व्यवहार करना शामिल है। सम्यक आजीविका, सम्मा आजीव, बुद्ध ने सलाह दी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी आजीविका ना कमाएं और दूसरों को दुखी करके खुशी ना पाएं। सम्यक प्रयास, सम्मा वयम, इसका तात्पर्य है अपने लिए अच्छी आदतों को बढ़ावा देना, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। सही जागरूकता, इसका तात्पर्य स्वयं शरीर दृष्टिकोण और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। घृणा, लालसा और अज्ञानता को खत्म करने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। सम्यक एकाग्रता, संपूर्ण समाधि, चेतना के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के लिए अपूर्णता और अनियतता की समझ विकसित करने हेतु सच्ची एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति अष्टांगिक आर्य मार्ग का अनुसरण करता है तो वह निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए 5 सुझाव भी दिए हैं। ये हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा या जान लेने से दूर रहें, जो ना दिया गया हो उसे लेने से बचें, चोरी ना करें, इंद्रियों के दुरुपयोग से स्वयं को रोकें, झूठ ना बोलें और दूसरों के बारे में गलत बात ना कहें, किसी भी मादक पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस बालकांड भाग 92।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को

0: सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Magal. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur and offer prayers at sacred groves, Santali Jahera and Ho Jahera Skill Center and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his 2-day visit to West Bengal, the Prime Minister will participate in Paschim Banga Divas, West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stones of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FAO.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संगीतिका, जिसमें आप सुन रहे थे शाहरुख हसन के भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, अपने सभी श्रोताओं का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूरज हर दिन यही संदेश देता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला फिर लौटकर जरूर आता है, और एक गहरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही होती है, जो आपके हर दिन की हर दिन को एक अच्छा बनाती है। सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि नए संकल्पों और नई ऊर्जा का समय होता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो दिन भर अधिक सक्रिय रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। सुबह की ताज़ी हवा, पक्षियों की चहचहाट और उगते सूरज की किरणें मन को एक शांति प्रदान करती है, और जो सुबह को जीत लेता है, समझो वह पूरा दिन जीत लेता है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है येसुदास ने।

बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म चित्रचोर से अभी आपने सुना, येसुदास की आवाज़ में, और फिल्म में संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि खुश रहने वाले लोग हमेशा मुस्कुराते क्यों हैं? नहीं ना, शायद जानते भी हों, क्योंकि वे जीवन की समस्याओं पर नहीं, संभावनाओं पर ध्यान देते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आज सुबह अपने आप से तीन बातें कहिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं सक्षम हूं, और मैं आज जो करूंगा वो अच्छा करूंगा, और साथ ही मैं किसी की मदद जरूर करूंगा। देखिए आपका पूरा दिन कितना अच्छा बीतता है और आपको खुश रहने का जो है एक अच्छा मौका मिलता है। तो सुनते हैं अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग अपने दोस्त अमित के साथ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, सबसे पहले एक खूबसूरत सा एहसास होता है अपने से जुड़ने का, हवा में ताजगी, मन में एक नई उम्मीद, पक्षियों की चहचहाट और एक खूबसूरत सा अच्छा सा एहसास जो हमें एक नई ऊर्जा, नई उमंग देता है जीवन में आगे बढ़ने की। ये वो समय होता है जब आप अपने आप के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो सुबह हमें मौका देती है कि कल की यानी कि पिछली जो गलतियां हैं उनसे कुछ सीखें और नई सुबह के साथ आगे बढ़ें।

कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज़ में अभी आपने एक गीत सुना और आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग मेरे यानी अमित के साथ। दोस्तों, जीवन में जब भी आप में व्यस्तताएं हो तो सुबह का एक पल ऐसा जरूर होना चाहिए जब हम अपने मन की आवाज़ को सुन सकें और गहराई से उसको समझ सकें, क्योंकि सुबह का समय केवल समय नहीं बल्कि जीवन को जीने का एक नया अवसर है, क्योंकि हर सुबह एक ताजगी और एक खूबसूरत एहसास लेकर आती है। इसी एहसास के साथ सुनते हैं एक अगला बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, सुबह का सूरज कहता है उठो, बढ़ो और मुस्कुराओ। कल जो अधूरा रह गया है आज उसे पूरा करके दिखाओ। हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो ताकि आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन को एक खूबसूरत दिशा दे सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन मंगलमय हो, मन प्रसन्न रहे और आपके जीवन में उम्मीदों का दीपक सदैव जलता रहे। इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूं, लेकिन चलते चलते इस प्यारे से गीत के साथ आपको इस कार्यक्रम में छोड़े जाता हूं। और बने रहिए हमारे साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़

0: रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्ध पोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: We have been able to achieve that in the first.
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
4: They are all designed in India now.
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
6: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
3: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से

0: on the IT Act, writes the Indian Express. In its editorial titled Trump's Versailles and a Chance for Peace, the Tribune writes that there is delicious irony in the fact that President Trump signed the Memorandum of Understanding with Iran at Versailles on June 17. The terms of Trump's surrender at Versailles are a far cry from the conditions that he had unilaterally set for the Iranians. Like the original Treaty of Versailles in June 1919, this one will have a profound psychological impact, not just on the US, but also on Israel, on the Gulf states, and indeed on Iran itself. And finally, an app, Abhigyan, has been launched that will soon enable police and agencies to carry out instant fingerprint-based verification of criminal records using scanners linked to a database of over 1.3 crore suspects and convicts, reports The Hindu. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Subhadra. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर सतह पर मशक करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्सा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में सीरीज के तीसरे और आखिरी ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से उनके आबाई जिले मयूरभंज में मिलेंगे। जनाब मोदी का यह दौरा सदर जमहूरिया के 68वें यौम पैदाइश और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वजीर आजम मोदी आज देर गए मगरबी बंगाल के शहर हुगली से पीएम किसान स्कीम के तहत 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों के लिए 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेंगे। इसमें मगरबी बंगाल के 45,00,000 से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे जाने वाले 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल है। पेश है वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 2 रोज़ा दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंच रहे हैं। रियासत में BJP के इकतदार के बाद ये उनका पहला दौरा है। अपने क्याम के दौरान वो हुगली में ताराकेश्वर में मगरबी बंगाल के दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर बैन अल-अक़वामी योग डे प्रोग्राम की क्यादत करेंगे और मुल्क ही में तैयार किए गए 3 जंगी जहाज़ों INS दोनागरी, INS संशोधक और INS एग्रे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो बहुत से अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी ज़रात के शोबे के लिए मगरबी बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी बाकायदा आगाज़ करेंगे जिसके तहत तकरीबन 50 लाख किसानों को बीमा फराहम किया जाएगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए।

0: मुजीब अख्तर।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस रोज़ एक ऐसी रियासत का जश्न मनाया जाता है जिसने अदब, मौसीकी, आर्ट, रूहानियत, साइंस, तिजारत और समाजी इसलाह की शक्ल में मुल्क की तारीख में ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मगरबी बंगाल की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिले ज़िक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बाख्तियार भारत के दो सबसे अहम सतून सेमी कंडक्टर इको निज़ाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की ज़बरदस्त तरक्की है। इस ताज़ा तरीन पॉलिसी से सेमीकंडक्टर इको निज़ाम की उमंगें मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग में बदल गई हैं। सेमीकंडक्टर्स कौमी सलामती, इक्तिसादी इस्तेहकाम, डिजिटल खुदमुख्तारी और मुस्तकबिल के मुकाबला जाती रुझान की बुनियाद हैं। ये मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर्स मिशन 2M का आगाज़ किया, जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहला मिशन इस पेचीदा सनत के लिए बुनियाद के तौर पर कायम किया गया था और मिशन 2M के तहत इको निज़ाम में गहराई लाई जाएगी। भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियाँ अंजाम देने की इजाज़त दी गई, जिसमें सेटेलाइट खला में भेजा जाना भी शामिल है। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। 2014 में महज एक स्टार्टअप था, जबकि अब इनकी तादाद 400 से ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से मुल्क की प्राइवेट खलाई मईशत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियाँ इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं। भारत का पहला सेफ स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई रूट एरोस्पेस इस परिवर्तन का प्रमाण है।
2: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम पे
1: इत्तेता करेंगे। और मंदिर के इलाके में मगरबी महाराष्ट्र मंदिर तरक्याती मंसूबे के तहत शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। जनाब शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। बाद में जनाब शाह इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह इमदाद बाहमी चीनी मिल को नया नाम दिए जाने और तौसीकारी से मुतालिक एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जनाब शाह इचलकरंजी में कलपना अवाडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत को बहरान से दो चार दुनिया में अपने कौमी मफादात, दिफाई खुदमुख्तारी और कसीर कुतबियत को बरकरार रखते हुए ताल्लुकात को मुस्बत बनाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने बहुत से शोबों में भारत अमरीका शराकतदारी को गहरा करने के बारे में इजहार ख्याल किया, जैसा कि दोनों ममालिक अपने मामलात और पेचीदगियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, इसके मफादात में भी तौसी और तनव्वो पैदा हो रहा है। ये आकाशवाणी है। भारत के सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल को मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF का 2026-27 की मुद्दत के लिए नायब सदर मुंतखब किया गया है। वो इंग्लैंड के जिल्स थॉमसन की जगह लेंगे। जनाब अग्रवाल इस वक्त वजारत सकाफत में सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो FATF के लिए भारतीय वफ्द की क्यादत भी कर चुके हैं। 17 से 19 जून के दरमियान FATF के मुकम्मल इजलास के दौरान जनाब अग्रवाल को इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया गया। वजारत खारजा ने जनाब अग्रवाल का इंतखाब किए जाने को भारत की बड़ी कामयाबी करार दिया है। एक

0: मीडिया पोस्ट में वजारत ने कहा कि जनाब अग्रवाल की तकरीरी से दहशतगर्दी की माली एयानत और गैर कानूनी माली नेटवर्क और गैर कानूनी मालियाती ढांचों के खात्मे के भारत के अज़्म को मजीद तकवियत हासिल हुई है। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी NTA नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान से पहले आज एक मुल्कगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद करेगी। इम्तिहानात को खुशुसलूबी, महफूज और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के मकसद के हिस्से के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
1: NTA ने कहा है कि वो नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। ये इम्तिहान कल होना है। एक बयान में NTA ने कहा कि यह इम्तिहान मुल्क के 551 शहरों और बैरून मुल्क के 14 शहरों में मुनक्किद किया जाएगा। तकरीबन 22,79,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक होंगे। एजेंसी ने मजीद कहा कि इम्तिहान को मुनसिफाना और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया है। दोबारा इम्तिहान दोबारा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 पर कलम और कागज़ के तरीक़ेकार के तहत कराया जाएगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम को आर्जी तौर पर ब्लॉक करने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्लेटफॉर्म का निज़ाम गैर कानूनी मवाद के तेज रफ्तार फैलाव को मुमकिन बनाता है और ये कि महदूद नौयत के दीगर इकदाम इम्तिहान में धोखाधही को रोकने में नाकाम रहे थे। हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म की अगली किस्त में एक सामाजिक कारकुन और कारोबारी जज्बे के हामिल SKM मिलानंदन का जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। आप ये प्रोग्राम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत के सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने कुछ असलाहत की मंजूरी दी है, जिनका मकसद मार्केट की इस्तेदाद में बेहतरी लाना, दरकार दस्तावेजात की फरहमी में आसानी पैदा करना और माली शोबे में जाबता जाती फ्रेमवर्क्स को मुस्तहकम बनाना है। कल मुनाकिदा 214वीं मीटिंग में सेबी बोर्ड ने फौत शुदा सरमायाकार के कानूनी जानशीनों और दावेदारों के लिए सिक्योरिटीज़ की मुंतकली को आसान बनाया है। यह फैसला छोटी रकम वाले दावों को जल्द निपटाने के मकसद से किया गया है, ताकि इसके लिए कम से कम दस्तावेजात दरकार हों। सेबी ने कुछ मामलों में पेन की लाजमियत को भी खत्म कर दिया है और QR कोड वाले डेथ सर्टिफिकेट्स को तस्लीम कर लिया है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खुली मार्केट में अपने फरोख्त किए गए शेयर्स को वापस खरीदने का निज़ाम भी दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। यह निज़ाम इस साल 1 अगस्त से दोबारा शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों, असासे की तामीर नौ करने वाली कंपनियों और कर्जा देने वाली कंपनियों के माबेन बकौल उसके गहरी सांठगांठ पर शदीद तशवीश जाहिर की है, जिससे उस तरीके पर शकों को शुबहात पैदा हो जाते हैं जिसके तहत कर्ज नादहिंदगी के मामलात निपटाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कल कहा कि बैंक टैक्स दहिंदगान से हासिल किया गया पैसा कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन इन कर्जों को वापस लेने की अक्सर मौसर कोशिशें नहीं की जा रही। अदालत ने कहा कि उसे सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल पर तशवीश है, जिसे अवाम की बहबूद के लिए खर्च किया जाना चाहिए। योगा का बैनुल अक्वामी दिन 2026 कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। यह 12वां योगा का बैनुल अक्वामी दिन होगा, जिसका मौजू है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा, जो सभी उम्र के लोगों के लिए योगा की अहमियत पर जोर देता है। इस सिलसिले में तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क के 100 अहम मकामात पर योगा के बैनुल अक्वामी दिन के ताल्लुक से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम करेगी। असल तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनक्किद होगी, जहां वजीर आजम कॉमन योगा प्रोटोकॉल में मुल्क की क्यादत करेंगे। मगरबी बंगाल में खलीज बंगाल से उठने वाले मानसून के सरगर्म बादलों और शदीद रतूबत के सबब हिमालय से मुत्तसिल अजला में आज से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। कोलकाता और मजाफात के कई इलाकों ने इस मगरबी बंगाल के कुछ जनूबी जिलों में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब लोगों को दिन के मसरूफ दफ्तरी औकात में पानी भर जाने की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी 3 एक रोजा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मेजबान भारत पहले ही सीरीज में 2-0 से सबकत हासिल किए हुए है और अब वो सीरीज के तीनों मैच को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगा। और अब अखबार के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शायद

0: होने वाले आज के सभी अखबार ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। रोजाना प्रताप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मगरब बंगाल दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाये किया है, जिसके मुताबिक जनाब मोदी आज वहां के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो मगरब बंगाल दिवस के साथ साथ योगा डे की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में बेलगामी सिकल सेल डे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के मिशन के तहत 7 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग हुई है। इस खबर पर रोजाना प्रताप ने खसूसी तवज्जो दी है। मुल्क दिफाई शोबे में खुद इंसारी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और 3 लाख करोड़ रुपये की दिफाई पैदावार नीज 50,000 करोड़ रुपये की दिफाई बरामदात के अहदाफ को वक्त से पहले हासिल कर लिया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नागपुर में ये बात कही। इस खबर को प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में अव्वलीन खातून पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह की खबर को रोजनामा इनकलाब ने उजागर किया है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कीर सतह पर मॉक ड्रिल करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। और सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्षा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
1: स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन स्वीकार करिए। शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, योग एक अत्यंत प्राचीन और अमूल्य भारतीय जीवन शैली है जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का एक संपूर्ण विज्ञान है। संस्कृत की युज धातु से उत्पन्न इस शब्द का अर्थ है जुड़ना, जो व्यक्ति को प्रकृति और आंतरिक शांति से जोड़ता है। नियमित रूप से योगासन करने से हमारे शरीर न केवल लचीला फुर्तीला और मजबूत बनता है बल्कि प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से मानसिक तनाव चिंता और अवसाद से भी मुक्ति मिलती है। योग हर आयु वर्ग के लिए एक वरदान है, विशेषकर हमारे बुजुर्गों के लिए। ये हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और बुढ़ापे को गतिशील और आत्मनिर्भर बनाने का सबसे सुरक्षित माध्यम है। इसकी इसी वैश्विक उपयोगिता को देखते हुए हर वर्ष 21 जून को पूरे उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को एक निरोगी अनुशासित और सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाना है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इस वर्ष की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी योग फॉर हेल्दी एजिंग। सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के ग्लोबल लीडर डॉक्टर टोनी नादर का संदेश।
2: Namaskar to all listeners across India on the occasion of International Yoga Day. I am honored to address the people of Bharat, the country that gave yoga to the world. India is not today sharing yoga with the world for the first time. The world has been receiving yoga from India for many centuries. What this day marks is the recognition on every continent of what India has always known, that yoga is one of the deepest gifts to humanity that any civilization has ever given. I want to begin with the word itself. Yoga in Sanskrit means union, from the root yuj, to join, to yoke. Yoga is not fundamentally exercise. It is not fundamentally posture. It is the science of joining what has been separated, joining body and mind, individual and universal, action and stillness, the small

0: है प्राणायाम, उसके भी अत्यंत फायदे होते हैं। पहला तो ये है कि आपके दिमाग में तंदुरुस्ती लाता है, मन को शांत रखता है, रोगों को दूर रखता है, और इसके अनेक फायदे हैं। मैं इनफैक्ट 5 तरह के प्राणायाम करता हूँ। पहला होता है कपालभाति प्राणायाम, दूसरा है भस्त्रिका, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी और पांचवा नाड़ी शोधन प्राणायाम। योगा को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाइए। प्राणायाम से अपने तन और मन को स्वस्थ रखें। आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, अपने परिवार दोस्तों सभी को योगा करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए।
1: बॉलीवुड अभिनेता जिम से ज्यादा समय योग को दे रहे हैं। वजन कम करने में योग के फायदे के बारे में हमें ये बताया अभिनेता स्पर्श शर्मा ने।
2: जब मैं योग में आया तो मुझे बेसिक लेकिन बहुत बड़ा फर्क जो नजर आया योग में और जिम में, वो ये है कि जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी जो है काफी स्टिफ हो जाती है। वहीं जब योग की मैं बात करता हूँ तो योग एक बहुत ही आत्मिक, बहुत ही नेचुरल क्रिया है जो आपको अपने आप से मुखातिब करवाती है। आप अपने आप को बेहतर जान पाते हैं। आपके अंदर जो आप है, आपके अंदर का ईश्वर है या खुदा है या भगवान है, आपकी आत्मा है, उनसे आप रूबरू हो पाते हैं थ्रू योग। और योग की खास बात सबसे बेहतरीन ये है कि जितनी एनर्जी हम खर्च कर रहे होते हैं, अगर हम कोई शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं योग में, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं योग में, तो उतनी ही एनर्जी आपकी बॉडी में वापस आती है। आपको वेट लॉस करना है, योग अपनाइए। आपको फिट होना है, योग अपनाइए। आपको अपने से अपने आप को बेहतर जानना है, योग अपनाइए। योग अपनाइए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।
1: उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इस उम्र के साथ हमारे शरीर का स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। कहते हैं कि एक मजबूत इमारत के पीछे उसकी मजबूत नींव का हाथ होता है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर को जीवन भर संभाले रखने के लिए हमारी हड्डियां बहुत जरूरी काम करती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ढलती उम्र के साथ हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, जिससे जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में तकलीफ या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम इसी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। विषय है बढ़ती उम्र में हड्डियों की देखभाल।
3: आज के हमारी सेहत के अंक में हम जानेंगे कि हड्डियों की ये समस्याएं क्यों होती हैं, शुरुआती लक्षण क्या हैं और किस प्रकार संतुलित खानपान, नियंत्रित व्यायाम और समय पर उपचार से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, मैं हूँ रश्मि गुप्ता और आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर दिवेश जालान, प्रोफेसर इन ऑर्थोपेडिक्स। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बढ़ती उम्र में हड्डियां कमजोर क्यों होने लगती हैं? ये एक सामान्य प्रक्रिया है या इसे रोका भी जा सकता है?
4: ये जो समस्या है जो कि हम बुजुर्गों में देखते हैं, यह एक सामान्य समस्या है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है
3: जी।
4: और जैसे हमारी हर उम्र में कुछ हड्डियां बनती हैं और कुछ हड्डियां लॉस होती हैं, जो कि एक नेचुरली चलता प्रोसेस है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे ये प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू होता है। और जो बोन लॉस हो रहा है वो ज्यादा तेजी से होता है एज कम्पेयर टू जितना बोन नया बनता है
3: जी।
4: इस वजह से ये प्रोसेस हमारा एक नेचुरल मैकेनिज्म की तरह बढ़ता है, बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे जो हड्डी की कमजोरी है, चूंकि बोन उतना नहीं बन पा रहा है, इस वजह से वो कमजोरी बढ़ने लगती है। और इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये प्रोसेस नॉर्मल है, लेकिन अगर यह चीज तेजी से बढ़ रही है तो हम उसको नॉर्मल में नहीं आंक सकते, क्योंकि कुछ लोगों में ये चीज बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर वो एक परेशानी का कारण बनती है, चाहे वो फ्रैक्चर के रूप में बने या फिर दर्द के रूप में बने, तो उस प्रोसेस को हम नॉर्मल नहीं कर सकते
3: जी।
4: इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है वो तेजी से भाग रही है और वो नॉर्मल नहीं है।
3: तो यदि हम बुजुर्गों की बात करें तो उनमें हड्डियों से जुड़ी सबसे आम समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं?
4: तो सबसे आम समस्या जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हड्डियों की कमजोरी है
3: जी।
4: जो कि तेजी से बढ़ जाए, तो जिसको हम बहुत कॉमनली नाम जो मेडिकल टर्म यूज करते हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस
3: जी।
4: जो कि हड्डियों की कमजोरी की तेजी से बढ़ना और जिसके

0: जैसे हमारा जो रोजमर्रा का काम है, जैसे हम बाथरूम में नहाने जाते हैं, एक हल्का सा झटका लगा और हमें लगता है कि हमारी हड्डी टूट गई, तो
1: जी।
0: वो जो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं जो कि हमारे नॉर्मल एक्टिविटी से हो रहे हैं, कोई चोट नहीं लग रही,
1: जी
0: वो इस कारण से हो रहे हैं क्योंकि हमारी हड्डी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। तो
1: ओके
0: इस तरह के जो केसेस हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है।
1: जी
0: दूसरी जो कॉमन समस्या हम देखते हैं जिसमें कि एज के साथ हमारी नॉर्मल बॉडी के जो जोड़ हैं, जैसे घुटने हैं, कूल्हे के जोड़ हैं, हाथों के जोड़ हैं,
1: जी
0: वो जोड़ अपने नॉर्मल धीरे धीरे घिस जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो घिस गए हैं, हड्डियां बढ़ गई हैं।
1: जी।
0: लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी जो अंदर का कार्टिलेज है, जो कि उसको एक कुशन देता है,
1: ओके
0: उस जोड़ को मोबिलिटी देता है
1: जी
0: कि वो जोड़ ढंग से चले,
1: हाँ
0: वो धीरे धीरे एज के साथ कमजोर हो जाते हैं,
1: जी
0: और इसकी वजह से इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस।
1: ओके
0: तो ये दो मेन कॉमन समस्याएं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये जो प्रोसेस जो वियर एंड टियर का है, वो नॉर्मल स्पाइन में भी हो सकता है, जिसमें कि कमर में दर्द होना, या आपको कई बार हमें लगता है बुजुर्गों में हमारी कमर धीरे धीरे टेढ़ी होने
1: जी
0: लगती
1: जी
0: है,
1: जी बिल्कुल
0: वो भी एक तरह से ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है, बिकॉज उनका धीरे धीरे जो कमर की जो हड्डियां हैं वो पिचकने से लगती हैं, कमजोर
1: जी
0: होके वो कोलैप्स होने लगती हैं,
1: ओके
0: और इस वजह से उनकी जो हाइट है वो धीरे
1: कम
0: धीरे कम होना
1: होने
0: होने
1: लगती
0: लगती
1: है।
0: है।
1: जी।
0: तो
1: तो
0: वो
1: सर
0: भी एक
1: ये
0: अस्पताल
1: जो समस्याएं हैं ये केवल बुजुर्गों के लिए होती हैं या मतलब किसी और उम्र के लोगों में भी हो सकती हैं
0: तो
1: लोगों में?
0: ऑस्टियोपोरोसिस प्रेडोमिनेंटली हम बुजुर्गों में देखते हैं,
1: जी
0: और नॉर्मल ये जो औरतों में, फीमेल सेक्स में ज्यादा कॉमन है, और
1: अच्छा
0: इसका कारण ये है कि जब हमारे को मेनोपॉज होता है उसके बाद ये रिस्क ऑस्टियोपोरोसिस का, बोन की हड्डियों की कमजोरी का, फीमेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
1: जी
0: और इसीलिए हम अगर बात करें तो 50 से 55 साल की उम्र के बाद महिलाओं में ये प्रॉब्लम हड्डियों के दर्द की और ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क काफी है, एज कम्पेयर टू मेल्स जिसमें कि ये जो प्रॉब्लम है जो कि काफी लेट देखी जाती है। इसके अलावा अगर हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, वो हड्डियों की कमजोरी को बढ़ाते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं अगर हम स्मोकिंग बहुत करते हैं, अगर हम अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर हमारे डाइट में एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं है, जिसमें कि हम कैल्शियम, विटामिन डी या फिर मैग्नीशियम, या फिर हम बात करते हैं प्रोटीन्स
1: जी
0: जो कि
1: जी
0: नॉर्मल मसल और बोन स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है,
1: जरूरी
0: तो
1: है
0: अगर
1: जी
0: हमारी डाइट पूरी प्रॉपर नहीं है तो वो सारे फैक्टर्स इस चीज़ों को जल्दी भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने बात की कि महिलाओं में 55 और अगर पुरुषों में 65 या 70 के बाद हो रही है,
1: जी
0: तो ये पहले भी हो
1: पहले
0: सकती
1: भी हो
0: है अगर
1: सकती है
0: हमारी जो लाइफस्टाइल है
1: जी।
0: वो चीज़ सही नहीं है तो।
1: सर खान पान और जीवन शैली के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। पहले मैं ये जानना चाह रही थी कि हड्डियों की मजबूती की यदि हम जांच कराना चाहें तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए और किस उम्र में ये जरूरी हो जाते हैं?
0: ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें
1: जी
0: लगता है कि क्या हम इसको पकड़ पाएंगे।
1: जी
0: तो ऑस्टियोपोरोसिस को ना हम साइलेंट डिजीज की तरह कहते हैं कि आपको इसके लक्षण नहीं पता चलते, कि आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और जब हमारे पास मरीज आते हैं तो वो मोस्टली फ्रैक्चर के रूप में आते हैं।
1: मैंने एक चीज और भी देखी है जो हमारी यंग एज के जो लोग हैं या 30-40s में ही जो महिलाएं हैं या जेंट्स हैं वो जस्ट सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ही उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें तकलीफ हो रही है, घुटने में हल्का सा कुछ पेन है या कुछ चीज खिसक गया है, तो क्या वो भी हड्डियों की कमजोरी ही है?
0: देखिए, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको हमें जांच करने की जरूरत पड़ती है।
1: जी
0: अगर हमें स्पेसिफिकली सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तब वो जॉइंट में कुछ, कई बार हमारे झिल्लियां फट जाती हैं जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं,
1: ओके
0: कुछ लिगामेंट की इंजरी होती है जो कि प्रेडोमिनेटली यंग एज में ज्यादा होती है,
1: अच्छा
0: बट ओल्ड एज में भी उस तरह की समस्याएं
1: हो
0: पत हो
1: सकती
0: सकती
1: है
0: है। तो हमें ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि अगर ये चीज सिर्फ हमें सीढ़ियां चढ़ने या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिसमें हो रही है,
1: जी
0: तब हमें वो जांचने की जरूरत पड़ेगी कि वो क्यों हो रही है।
1: ओके
0: और अदरवाइज अगर वो प्रोसेस हमारा एक रूटीन है कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे जोड़ में, जैसे हम नॉर्मल बैठे हैं, बैठ के उठते हैं तो हमें लगता है घुटने स्टिफ हो गए हैं,
1: जी
0: घुटने में उठने में दर्द होना शुरू
1: दर्द
0: हो गया,
1: हाँ
0: तो ये, और कुछ देर चलते हैं तो लगता है थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखते हैं हम,
1: ओके
0: कि आपको जब भी आप थोड़ा सा इनएक्टिविटी वाला पीरियड होगा, जैसे आप रात को सो गए और फिर जब आप सुबह उठोगे तो आपको लगेगा बॉडी सारी स्टिफ हो गई है, आपकी मूवमेंट लिमिटेड है। बट वही आप अगर 5-10-15 मिनट एक बार उठ के थोड़ा बहुत चलोगे, देन यू विल फील कि आपका थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, ये लक्षण हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ दिखा रहे हैं। बट ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो उसमें वो लक्षण नहीं आते हैं। बट कई बार हम कुछ चीजों से आइडिया लगा सकते हैं, जो मैंने आपसे बात की पहले, कि हम जैसे किसी की अगर हाइट आपको लग रहा है कि धीरे धीरे कम हो रही है या कमर का झुकाव बढ़ रहा है, तो हम उस केस में ये सोच सकते हैं कि हाँ ये हड्डियां कमजोरी की वजह से हैं, और हम उसको अगर इवेलुएट करें तो हम वो उसको चीजों को पकड़ सकते हैं। अब क्या कुछ टेस्ट है हमारी, अगर हम उस पर स्पेसिफिक बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हम करते हैं बोन की स्ट्रेंथ को जांच करने के लिए, उसको हम कहते हैं डेक्सा स्कैन, जो कि एक तरीके से एक्सरे टाइप की मशीन होती है। उसमें कोई आपका मतलब कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं है, जैसे एक्सरे के मशीन में एक स्कैन होता है उसी तरीके का स्कैन होता है, और वो कोई रेडिएशन का रिस्क भी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ हिस्से जो कि कॉमनली जहाँ पे हम फ्रैक्चर देखते हैं, जैसे कि स्पाइन जिसका फ्रैक्चर बहुत कॉमन है ओल्ड एज में, और हिप के फ्रैक्चर्स, ये दो ऐसे एरिया हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके फ्रैक्चर सबसे ज्यादा कॉमन है
1: जी।
0: तो इन दो हिस्सों की डेंसिटी हम चेक करते हैं मोस्टली डेक्सा स्कैन में।
1: अच्छा।
0: अब इसमें हमने एक क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है कि स्कोर हमारा -2.5 से कम आता है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस में जाता है।
1: अच्छा।
0: उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और -1 से अगर हमारा स्कोर बढ़िया है, ज्यादा है, तो वो चीज नॉर्मल होती है। और इन दोनों बीच के रास्ते में -1 से कम और -2.5 से ज्यादा में हमारे जो बीच का रास्ता है उसमें हड्डियां कमजोर हैं, और लेकिन उसमें हम ट्रीटमेंट दे के फ्रैक्चर के रिस्क को खत्म कर सकते हैं।
1: तो सर इसका इलाज केवल दवाइयों के द्वारा है या कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करनी पड़ती है, और पूरी तरह से संभव है इसे नियंत्रित कर सकते हैं?
0: देखिए, पूरा इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो सबको होनी है। हम जैसे जैसे बुजुर्ग होंगे, हमारी चूंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारी हड्डियां और मसल्स कमजोर होंगी
1: जी।
0: लेकिन हम इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। हम इस प्रोसेस को जितनी तेजी से जो बढ़ रही है उसको हम स्लो कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, और अगर हम उन लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे बहुत जल्दी ध्यान देना शुरू करेंगे तो मेडिसिन की आवश्यकता कम से कम पड़ेगी या फिर नहीं भी पड़ सकती। तो लाइफस्टाइल की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात की वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इसमें नॉर्मली जो एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं वो है वेट बियरिंग एक्सरसाइज। तो वेट बियरिंग एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी का वेट उसमें यूज हो रहा है। तो हमारी बॉडी का वेट नॉर्मल एक्टिविटी, जैसे हम अगर नॉर्मल रूटीन वॉक कर रहे हैं या ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं
1: जी,
0: या फिर हम स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो कोई भी जो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी, अगर हम चल फिर रहे हैं नॉर्मल और सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या फिर हम उठ के बैठ रहे हैं, वो सारी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं
1: जी।
0: तो हमें वो चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम धीरे धीरे हमें लगता है कि प्रॉब्लम भी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो एक्सरसाइज को हम रिटेन कर पाए, क्योंकि उससे मसल की स्ट्रेंथ और बोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज है वो है मसल की स्ट्रेंथ।
1: Okay.
0: क्योंकि मसल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि बोन्स और मसल्स दोनों साथ में काम करती हैं। तो अगर हम बोन के साथ मसल्स पे काम नहीं करेंगे
1: जी,
0: तो बोन्स भी हमारी बहुत हेल्प नहीं करेंगे।
1: Okay.
0: तो मसल स्ट्रेंथ की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें कि हम कुछ वेट्स के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेसिस्टेंस बैंड्स आती हैं जिससे कि कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमारी मसल की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो।
1: तो जो 70+ या 80+ लोग हैं वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं?
0: हाँ, ये एक्सरसाइज हर एज पे आप कर सकते हैं
1: जी।
0: उस एक्सरसाइज को बेसिकली हम धीरे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जो वेट हम मतलब यंग एज में रिकमेंड करते
1: जी,
0: हैं वही आप ओल्ड एज में
1: जी,
0: आप आधे किलो से शुरू कर सकते हैं, आप 1 किलो से शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन आपको वो चीज बिल्ड करनी है
1: जी।
0: आप उसको ग्रेजुअली करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेंथ लूज होगी।
1: सर आपने बताया कि व्यायाम हो, एक्सरसाइज हो या जीवन शैली हो, हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं यदि हम समय से शुरू कर दें। तो क्या खान पान में बदलाव करके भी हड्डियों को मजबूत किया जा सकता है?
0: हाँ।
1: तो आहार में किस तरह के पोषक तत्व हम ऐड करें कि हमारी हड्डियां मजबूत हो जाए?
0: हाँ, तो अब हमने जैसे बात की एक्सरसाइज की, उसका अब दूसरा पहलू न्यूट्रिशन है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि शायद मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, तो पहला पहलू हमने एक्सरसाइज की बात की। अब दूसरा

0: पहलू है न्यूट्रिशन।
1: जी
0: न्यूट्रिशन में बोन हेल्थ के अगर हम रिगार्डिंग बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हम कैल्शियम,
1: कैल्शियम
0: क्योंकि
1: जी
0: कैल्शियम हर आदमी को दी जाती है, हर आदमी
1: जी
0: को पता है कैल्शियम लेना है।
1: जी
0: लेकिन कैल्शियम की जो अगर हम डाइट से वो चीज़ पूरी कर सकते हैं तो हमें अपने डाइट में कैल्शियम को इम्प्रूव करना चाहिए, जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, इन
1: जी
0: सब चीज़ों में कैल्शियम होती हैं।
1: जी
0: तो कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बोन हेल्थ का। इसके अलावा वाइटमिन डी,
1: जी
0: जो कि कैल्शियम और वाइटमिन डी दोनों आपस में एक दूसरे के ब्रदर हैं, एक साथ काम करते हैं।
1: जी
0: अगर कैल्शियम के साथ वाइटमिन डी नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी इतना अच्छा नहीं करता। तो नॉर्मली जो भी हम कैल्शियम मार्केट से अगर लेते भी हैं उसमें वाइटमिन डी हमेशा साथ में होता है कुछ
1: जी
0: ना कुछ। प्लस डाइट की जहां तक हम बात करें तो वाइटमिन डी जो डाइट प्रिडोमिनेटली मिलता है वो हमें नॉन वेज फूड से ज्यादा मिलता है,
1: जी
0: जिसमें कि फिश हो गए या एग योक हो गया, जिसमें कि प्रिडोमिनेटली वाइटामिन डी मिलता है।
1: अच्छा
0: बट हम उसको सनलाइट एक्सपोजर एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि अगर हम रोज के 15 से 20 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं तो वो भी हमारी वाइटामिन डी को बनाने में हेल्प करता है।
1: जी
0: इसके अलावा हमारे मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, बोरोन, ये सारे चीज़ें भी हमारे डाइट के तरफ से हमें हेल्प कर सकती हैं।
1: जी
0: तो कैल्शियम, वाइटामिन डी, इन दोनों के अलावा नेक्स्ट स्टेप जो हमने बात की थी मसल स्ट्रेंथ, तो मसल स्ट्रेंथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। तो हमें कैल्शियम, वाइटामिन डी के अलावा प्रोटीन को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोटीन अगर हमारे डाइट में कम है, जो कि बहुत सारे हमारे जो रेगुलर इंडियन डाइट है
1: हाँ
0: उसमें
1: बिल्कुल, इसमें
0: प्रोटीन पे
1: प्रोटीन
0: हम सबसे कम फोकस
1: जी
0: करते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो प्रोटीन के हमारे पास वेज सोर्स भी बहुत हैं और नॉन वेज सोर्स भी बहुत हैं।
1: जी
0: तो हम दोनों सोर्सेज, जो भी हमारी डाइट की चीज़ें हों, जो डाइट हम लेते हों, उस डाइट में हमें प्रोटीन पे फोकस करना चाहिए एज के साथ भी। अगर प्रोटीन हम इंटेक बढ़ाएंगे तो हमारी मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करेगी।
1: जी तो सर प्रोटीन के कुछ सोर्सेज हमारे लिसनर्स के लिए।
0: तो प्रोटीन हम वेजिटेरियन सोर्सेज में हमारे पास दाल है, चना है, सोया है, टोफू है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोटीन के प्रोडक्ट्स हैं जो कि
1: जी
0: हम ले सकते हैं।
1: जी
0: नॉन वेज सोर्स में हमारे पास रेड मीट है, हमारे पास फिश है,
1: जी
0: ठीक है, इन सब चीज़ों में प्रोटीन होता है।
1: सर सीनियर सिटीजन्स खासतौर पे जो 70-80+ हैं उन्हें चलने में दिक्कत होती है, आपने जैसे बताया भी उठने बैठने में दिक्कत होती है, घुटनों का कोई हिस्सा अचानक से अटक जाता है या कमर झुकने लगती है, उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए, मेरा यही सुझाव रहेगा उनके लिए कि जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है आप उसको नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि
1: जी
0: कई बार क्या होता है बहुत घरों में ये होता है कि अरे ये तो उम्र का तगाजा है, हम माइंड में भी ये सोच के चलते हैं और घर वालों पे भी यही इम्प्रेशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को, जो बीमारियों की हमने बात की जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की या घुटने में कोई झिल्ली के फट जाने की बात की, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कि हम कम नहीं कर सकते या जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते।
1: जी
0: तो अगर हम उस बीमारी को पकड़ पाते हैं कि वो चीज़ क्यों हो पा रही है,
1: हाँ
0: ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, या अंदर कोई लिगामेंट या झिल्ली के फटने की वजह से है,
1: जी
0: तो हम उस चीज़ का एक प्रॉपर इवेल्युएशन करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं,
1: ठीक है
0: जिससे कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो कि आपके चलने फिरने की एक ताकत है, वो बनी रह सकती है।
1: जी जी
0: क्योंकि एक एज के बाद आदमी सबसे इम्पॉर्टेंट ये चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर पाए,
1: बिल्कुल
0: और
1: जी
0: अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होती है और आप उसको नेगलेक्ट करते रहते हो, तो
1: जी
0: कई बार जब हमारे पास पेशेंट फ्रैक्चर के साथ आते हैं तो फिर उनको वापस इंडिपेंडेंट करने में जो मेहनत लगती है और कई बार वो नहीं भी हो पाते,
1: जी
0: वो एक रिस्क बहुत बड़ा है। तो
1: जी
0: हमें ये पहले ही इस चीज़ को इवेल्युएट कराना
1: जी
0: चाहिए।
1: सर अब समय चूंकि बहुत थोड़ा सा बचा है, मैं ये जानना चाहूंगी कम उम्र से ही किस तरह से हम अपनी हड्डियों का ख्याल रख सकते हैं, ये हमारे सुनने वालों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए, जो हमारी मेन हड्डी बनती है
1: जी
0: वो शुरुआती दौर में बनती है, जब हम 20 साल की उम्र के होते हैं
1: जी
0: हमारी 90 से 95% हड्डी का मेन मास बन चुका होता है। तो अगर हम अपने बच्चों में, एक जो हमने बात की बोन हेल्थ के लिए, वो बच्चों में भी कारगर है, अगर बच्चों में हम उनको शुरू से एक अच्छी डाइट दें जिसमें कैल्शियम, वाइटामिन डी, प्रोटीन, मैग्नीज, ऑल दीज बोरोन्स, मिनरल्स, ये सब
1: जी
0: अगर हों, तो एक न्यूट्रिशियस डाइट दें, उन्हें एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करें, जो कि आज की जनरेशन में थोड़ा
1: जी
0: मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, ये नहीं कि घर में बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो जब तक वो एक्सरसाइज

0: करेंगे वेट बेयरिंग, एक डाइट अच्छी लेंगे और कोई भी ऐसी एडिक्शन से बचेंगे जैसे अल्कोहल है या स्मोकिंग है
1: जी,
0: तो उनकी जो बोन मास बनेगी वो काफी अच्छी बनेगी और वो अर्ली बनती है
1: जी।
0: अगर वो बोन मास बहुत अच्छी बनेगी तो वो प्रॉब्लम बाद की जो हम प्रॉब्लम्स कह रहे हैं कि बोन कमजोर हो रही है वो प्रॉब्लम भी वो प्रिवेंट हो सकती है
1: जी।
0: तो हमारा जो प्रिवेंशन है वो अर्ली स्टेज में शुरू होता है
1: जी।
0: और उस चीज पे हमें वर्क करना चाहिए।
1: तो मुझे लगता है आज जो हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए आज का प्रोग्राम, आज का कार्यक्रम काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। और डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय निकाल कर इतनी ज़रूरी बातें हड्डियों से जुड़ी हुई हमें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बढ़ती उम्र में हड्डियों की देखभाल, अभी आप इस विषय पर सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिवेश से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थी रश्मि गुप्ता। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेहत स्वास्थ्य पत्रिका के अंतर्गत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम धरती आकाश।
5: नमस्कार, धरती आकाश के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। तीव्र शहरीकरण के कारण जल की भारी मांग, अपर्याप्त स्वच्छता और अपशिष्ट जल प्रदूषण जैसी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यदि जल चक्र का उचित प्रबंधन न किया गया तो ये सतत विकास लक्ष्य SDG 6 को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। बढ़ते शहरीकरण के दौर में जल, स्वच्छता और सतत विकास। विस्तृत जानकारी के लिए सुनिए असीम आचार्य, सह संस्थापक फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैबिटेट्स, कार्यक्रम निदेशक एवं सलाहकार बोरडा से दिलीप झा की ये बातचीत।
6: असीम आचार्य जी, जल, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आजीविका और शहरी विकास के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखते हैं। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इरमा से शिक्षा प्राप्त की है। असीम आचार्य जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
7: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
6: सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम जल की और स्वच्छता की बात करते हैं तो छोटे और तेजी से विकसित हो रहे शहरों में खास करके चुनौतियाँ क्या है?
7: आपने बहुत ही अच्छा सवाल रखा सर। सबसे पहले क्योंकि हम जितना भी देख रहे हैं अपने आसपास में, हम देखते हैं कि बहुत सारा रिसोर्स, बहुत सारा फोकस, ध्यान जो है वो बड़े शहरों की तरफ रहता है। तो आप दिल्ली देखेंगे, आप मुंबई देखेंगे, आप अहमदाबाद देखेंगे, आप बैंगलोर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैपेसिटी भी बहुत हाई है, रिसोर्सेज भी बहुत हाई है, सरकार का फोकस भी बहुत हाई है। पर जैसे ही आप छोटे छोटे शहरों की तरफ जाना शुरू करते हैं, जैसे बैंगलोर के पास में एक छोटा शहर है चिंतामणि, चिकबलापुरा, तो इन शहरों में हम देखते हैं कि आपकी जो म्युनिसिपैलिटी है वो डे टू डे रोजमर्रा की चीजों को लेके, रोजमर्रा की सर्विसेज को लेके बहुत ही स्ट्रगल करती हैं। और एक और चीज जो कि बहुत ही इंटरेस्ट की है वो ये है कि ये जो छोटे शहर हैं इसमें भारत की 60% आबादी 2030 तक बसना शुरू कर देगी। तो जब हम 60% आबादी जिन शहरों में बस रही है उन शहरों के ऊपर यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो शहर हमारे जो आम जनता है या फिर रोजमर्रा का जो जीवन है उसको बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगे। छोटे शहरों में यदि हम देखें कुछ जो बहुत ही टिपिकल या बहुत ही स्पेसिफिक यदि हम कुछ प्रॉब्लम देखने का कोशिश करें सर, तो छोटे शहरों में ऐसा होता है कि जो आपका म्युनिसिपैलिटी होता है वो अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन कभी म्युनिसिपैलिटी को पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। कभी उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी तकनीक इस्तेमाल में लेनी है। कभी वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में पैसे का प्रबंधन ही नहीं होता है क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है स्टेट के ऊपर, सेंटर के ऊपर। ज्यादातर जो पैसा जो स्कीम से आता है वो सेंटर की तरफ से आता है, म्युनिसिपैलिटी का उसमें कंट्रोल बहुत कम रहता है। दूसरा एक और एस्पेक्ट आप देखेंगे या एक और पहलू आप देखेंगे कि जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो खुद का अपना रेवेन्यू अभी भी अच्छे से जनरेट नहीं कर रही हैं छोटे और मीडियम साइज के शहरों। तो कहीं ना कहीं जब इन म्युनिसिपैलिटीज को एक अच्छी कैपेसिटी नहीं मिल पा रही है, इनके पास में प्रॉपर पैसा नहीं है चीजों को करने का, इनके पास में बढ़िया तकनीकें इतने अच्छे से नहीं पहुंच पा रही हैं, स्किल लोगों की भी कमी है और इन कई जगहों पर लोगों की ही कमी है, तो इन सारी प्रॉब्लम के बीच में ये जो छोटे और जो मध्यम वर्ग के जो शहर हैं ये काफी स्ट्रगल कर रहे हैं।

0: और आप देखेंगे कि यदि पानी की व्यवस्था से लेके, कचरे की व्यवस्था से लेके, या फिर पानी के इस्तेमाल को किस तरीके से रखना है, या आपका ओवरऑल जलवायु पर्यावरण की जो परेशानियां हैं वो अब इन छोटे छोटे शहरों में दिखना शुरू हो गई हैं। जो थोड़ी खतरे की या फिर जो थोड़ी परेशानी की बात है वो ये है कि छोटे शहरों को लेके हम जलवायु का बहुत बड़ा एक प्लान तो बना रहे हैं, हम पूरे देश को लेके बना रहे हैं, लेकिन इन छोटे शहरों को पता ही नहीं है कि जलवायु के अराउंड काम
1: क्या
0: क्या हो
1: है
0: रहा है,
1: और जो जलवायु परिवर्तन है उस तरह
0: उसको किस
1: से
0: तरीके से वो करना
1: फेस
0: है।
1: करना है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी संस्था या कोई भी आप नागरिकों से भी बात करें तो सरकार के बिना ये काम करना एकदम ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि
1: धन की
0: सरकार
1: कमी।
0: हमारा मेन जो सर्विस जो देने की जो एंटिटी है वो सरकार है, और सरकार जिस तरीके की स्कीम भी बना रही है तो बहुत ही अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं। हमारी आप स्कीम्स को देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे रूल्स, बहुत अच्छे रेगुलेशंस डिफाइन कर रहे हैं। जैसी वो स्कीम थोड़ा नीचे उतर के इम्प्लीमेंटेशन पे जाती है वहां हम बड़े परेशानियां देखना शुरू करते हैं। तो सर इसको रखते हुए यदि हम बात करें कि आम आदमी या फिर संस्थाएं कैसे मदद कर सकती हैं, तो आई थिंक सर जो एक जो सबसे बड़ा हम जो गैप देखते हैं छोटे शहरों में, मध्यम वर्गीय शहरों में, वो है कैपेसिटी का गैप। कैपेसिटी का गैप बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कई जगहों पे गवर्नेंस के अराउंड का बात हो सकता है कि जनरल आपको अपना म्यूनसिपैलिटी को अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, आपको अपना रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी टैक्सेस तो आप कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था का पैसा आप कलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, कचरा जो उठाने का जो पैसा है वो आप कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आपके पास में प्रॉपर व्हीकल होना चाहिए कचरा उठाने के लिए वो आपके पास में है कि नहीं, या फिर जिस टाइप का आपको कॉन्वर्जेशन करना है, बात करना है लोगों से, वो बात करने के पॉइंटर्स आपके पास में है कि नहीं, आप ये समझते हैं क्या कि उससे एक्चुअली में पब्लिक हेल्थ या फिर जो सामाजिक स्वास्थ्य है उस पर असर क्या पड़ता है वो आपकी समझ में है कि नहीं। तो ये जो कैपेसिटी का जो गैप है ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसमें कई सारे अलग अलग तरीके के वैज्ञानिक माध्यमों को इस्तेमाल में लिया जा सकता है। जैसे एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट या फिर मैं बोलूंगा कि बहुत ही जो आम तरीका है वो है कि आप बहुत ही इंटेंसिवली लोगों से बात करना सबसे पहले शुरू करें, क्योंकि अभी तक ऐसा होता है कि लोग बिजली पे बात करते हैं, कभी भी बिजली चली जाती है एक कॉन्वर्जेशन का टॉपिक है, लेकिन पानी इतना बड़ा कॉन्वर्जेशन का टॉपिक नहीं है, कचरा इतना बड़ा बात करने का टॉपिक नहीं है। हमने कितने लोगों ने देखा कि चार लोग साथ में बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक पहली बात तो यह है कि वो बात शुरू करना बहुत जरूरी है, एंड जब बात शुरू होगी तो धीरे धीरे बात स्केल पे होगी। दूसरा चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका लोकल जो प्रबंधन है उसकी आप कैपेसिटी या उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो मुझे लगता है सर जो कि बहुत ही जरूरी है, जो हमारे किसी के भी अभी हाथ में नहीं है, वो है कि हम किस तरीके से इन म्यूनसिपैलिटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप स्टेट की तरफ से आपको ग्रांट मिलता है जो आपका कुछ टाइड ग्रांट होता है जिसमें आपको एक सेट एक्टिविटीज करनी होती है, देन उसके अलावा म्यूनसिपैलिटी कई जगह पे अपना खुद का पैसा जनरेट करती है। कई जगहों पे आजकल म्यूनसिपैलिटीज आपके जो बॉन्ड्स हैं जैसे प्लास्टिक के आपके क्रेडिट्स होते हैं या फिर आपके कार्बन के क्रेडिट्स होते हैं या म्यूनसिपल बॉन्ड होते हैं, इन सब चीजों को भी अब म्यूनसिपैलिटीज धीरे धीरे देखना शुरू कर गई हैं। पर जो डिफरेंस है वो कई बार इंफॉर्मेशन और नॉलेज का भी है कि यहाँ पे यदि कोई एक चीज है उसको उतार के जमीन पे ले जाने के लिए कौन है, और वहां पे आई थिंक ये जो संस्थाएं हैं या फिर जो नागरिकों के ग्रुप हैं ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं।
1: इस तरह की संस्थाओं का जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और जो स्थानीय नागरिक हैं उनकी सहभागिता बहुत जरूरी है। आपने एक बात बताई कि सबसे पहले संसाधन की भी जरूरत है, संसाधन सिर्फ सरकार पर ही निर्भर है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में और कारपोरेट सेक्टर को आना होगा या लोगों को खुद ही कंट्रीब्यूट करना होगा। ऐसी स्थिति में बात आती है कि वेस्ट टू रिसोर्स की या जो वेस्ट टू वेल्थ की बात करते हैं हम, कि जो कचरा है, जो गार्बेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उससे किस तरह से एक संसाधन निर्मित किया जा सकता है। ये अवधारणा बहुत जगह देखी गई है महानगरों में, खास करके दिल्ली के हाई राइज सोसाइटी में और जो बेंगलोर की सोसाइटियों में कुछ सफलताएं हैं। आप चूंकि एक मध्यम शहरों में काम करते हैं, आप एक दूर दराज के क्षेत्रों में भी काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह के काम करते हैं उसमें इस कंसर्न को किस तरह से एक लाभदायक रूप में लाया जा सकता है?
0: तो सर वेस्ट टू रिसोर्स या फिर हम बोलें कि जो गंदा पानी है उसको फिर से इस्तेमाल में लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी चीज है यदि हम जलवायु प्रबंधन की बात करें। लेकिन जैसे आप छोटे और मध्यम वर्ग के टाउन या शहरों की बात करते हैं, तो अभी छोटे और मध्यम वर्ग के जो शहर हैं वो तैयार नहीं है सर इस टाइप का एक वार्तालाप शुरू करने के लिए। सो जैसे आप देखेंगे कि छोटे शहरों में, मध्यम वर्गीय शहरों में अभी पूरी तरह से कचरा ही कलेक्ट नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कई जगहों पर ऐसा ब्लैक स्पॉट होता है जहाँ पे आपका कचरा पड़ा होता है, पूरा कचरा अभी आपके फैसिलिटीज में ही नहीं पहुंचता है। बहुत सारा कचरा आपका वेस्ट, लेगेसी वेस्ट का साइड पे चला जाता है जहाँ पे वो फिर 10-10, 15-15 साल तक पड़ा रहता है। उसी में आप यदि गंदे पानी का भी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अभी भी छोटे और मध्यम वर्गीय शहर हैं वहां पे ट्रीटमेंट की फैसिलिटी ही अभी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो जब तक हम,
1: अब मुझे लगता है कि इस तरह के शहरों में लोग एक अपने मकान में ही एक हाउस भी बना लेते हैं, ठीक है, जो उनके वॉशरूम से रिलेटेड सारे पानी और जो,
0: तो ये सोसाइटीज में ज्यादा है। यदि आप एक निजी घर की बात करें तो एक निजी घर ज्यादातर तरीके पे अभी भी म्यूनसिपैलिटी की सर्विस पे ही अटका है, लेकिन जैसे

0: आप ये अपार्टमेंट की बात करेंगे जो आजकल छोटे शहरों में भी पहुंच रहे हैं, तो इनके खुद के ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, इनका खुद का कचरा कलेक्ट करने का फैसिलिटी होता है, ये लोग अपने कचरे को, अपने वेस्ट को किसी न किसी तरीके के रिसोर्स या किसी न किसी तरीके के उसमें कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो पहला जो मेरा जो पॉइंट रहेगा सर इसमें, वो ये है कि अभी हमारे छोटे और मध्यम वर्गीय शहर तैयार नहीं है, लेकिन जरूरत आ चुकी है। तो हम जितना इसमें डिले करते जाएंगे शहर, या जितना इसको देरी करते जाएंगे, उतना ही जलवायु की परिस्थिति और खराब होती जाएगी। जैसे आप यदि असम जैसे एरिया की बात करें जहाँ पे पानी फ्लडिंग बहुत ज्यादा होता है, अब यदि फ्लडिंग बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि शहरों में पानी भर रहा है, और यदि आपका गंदा पानी ट्रीट नहीं हो रहा है या वो इधर उधर फैल रहा है, तो वो आपके फ्लडेड वाटर के साथ में मिक्स होगा और वो आम जनता के गलियारों में, घरों के आसपास में पड़ा रहेगा, उसमें ईकोलाई, अलग अलग बैक्टीरिया, मच्छर, अलग अलग टाइप की बीमारियां उससे पैदा होती रहेंगी। तो जब तक हम अपने कचरे को और अपने वेस्ट वाटर को सबसे पहले कंटेन करके ट्रीट नहीं करते, तब तक हम वेल्थ और उसके कॉन्वर्जेशन पे नहीं जा सकते, और छोटे और मध्यम वर्ग के टाउन अभी उसको कंटेन करने कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा जो चीज सर एक और पॉइंट में रखना चाहूंगा, वो है कि जब हम वेस्ट टू वेल्थ या वेस्ट टू एनर्जी या फिर वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट या यूज्ड वाटर का भी बात करते हैं, तो अभी जिस टाइप का काम हम लोगों ने सबने लेके रखा है, वो काम भी बहुत ही थोड़ा सा टोकन की तरह से ज्यादा चल रहा है, रादर देन एक एक्चुअल काम की जगह वो थोड़ा चेक मार्क की तरह से ज्यादा चल रहा है। तो जैसे आप प्लास्टिक का देखेंगे, तो प्लास्टिक क्योंकि उसका जरूरत बहुत हाई है, प्लास्टिक में आप देखेंगे कि वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से
1: चल रहा है, और खास करके उसमें जो लोकल में कबाड़ी जो करते हैं
0: वो भी, तो उसमें इनफॉर्मल सेक्टर
1: वो उनके लिए बहुत हेल्प करते हैं, कलेक्ट करने में, स्टोर करने में, और एक एजेंसी तक पहुंचाने में,
0: क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यू है, उसके अंदर उनको पैसा मिलता है। लेकिन जैसे आप प्लास्टिक को छोड़ के बाकी वेस्ट का बात करें, तो उनके लिए अभी भी उस टाइप का वेल्थ का प्रबंधन, वेल्थ के अराउंड होना चाहिए, वेल्थ कैसे जनरेट होगा। प्लास्टिक में तो है लेकिन बाकी वेस्ट की स्ट्रीम में नहीं है। तो ये भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें दूर से देखने में लगता है कि हाँ वेस्ट टू वेल्थ की बात हो रही है, लेकिन आप जितना अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि हम एक सर्टेन टाइप ऑफ वेस्ट का ही बात कर रहे हैं, या हम एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ यू नो वाटर का यूजेज का बात कर रहे हैं। तो ये भी कुछ चीजें प्रॉब्लम बनती है।
1: आपने जो है एक बहुत ही उच्च संस्थान से अध्ययन किया हुआ है, और वो भी मैनेजमेंट के, रूरल मैनेजमेंट के, और रूरल डेवलपमेंट के लिए एक भारत सरकार का अलग से मंत्रालय है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है। आपने जब इस संस्था की स्थापना की, जो आप फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैबिटेट की बात करते हैं, तो इसका आइडिया आपको कैसे मिला, आपको क्या इसकी जरूरत लगी, और इसमें आपका अनुभव क्या है कि आपने किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में गए हैं, तो आपको क्या फायदा या कमियां देखी है?
0: पिछले 10 साल से मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूं, तो मैंने जब अपना काम करना शुरू किया था तो मैंने रूरल सेक्टर में ही काम शुरू किया था। एंड रूरल में हम उस टाइम पे बहुत ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे थे, जैसे आप देख रहे थे कि उसी टाइम पे स्वच्छ भारत मिशन भी आया था जिसने शौचालय को लेकर एक बहुत बड़ा मुहिम क्रिएट किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं काम करता गया, मैं रूरल से फिर थोड़ा अर्बन शहरी इलाकों की तरफ मैंने काम देखना शुरू किया, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं छोटे शहर, मध्यम शहर और रूरल की जो प्रॉब्लम है उनको आप एकदम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके छोटे शहरों के पास में ही पूरे गांव बसे हुए हैं, मध्यम वर्गीय शहरों के पास में ही गांव बसे हुए हैं। गांव की बाउंड्री, वैसे म्युनिसिपल बाउंड्री वैसे तो डिफाइंड है, लेकिन कचरा यदि शहर का कचरा उसी गाँव के या फिर बीच के एरिया में फेंक दिया जाता है, तो वहां से हम लोगों ने ये चीज को समझना शुरू किया कि यदि आपको भारत में पानी की या आपको कचरे की व्यवस्था को सही करना है, तो आप इसको शहर और गाँव में पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते, यदि आप छोटे और मध्यम वर्गीय शहरों का बात कर रहे हैं। फिर जब हमने थोड़ा फोकस करना शुरू किया छोटे और मध्यम वर्गीय शहरों के ऊपर, जैसे हमने पहले भी बात करी, हमें ये सब समझ में आने लगा कि छोटे शहरों में बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन छोटे शहरों में उस पॉपुलेशन के हिसाब से फैसिलिटी नहीं बढ़ रही, या उनके पास में रिसोर्स नहीं बढ़ रहे, या कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। तो एक जो बड़ा, और आप आसपास में देखेंगे तो बहुत सारी जो संस्था है वो अभी भी बड़े बड़े शहरों में काम करती है, क्योंकि टीयर टू टीयर थ्री में ज्यादातर क्या होता है कि विजिबिलिटी नहीं होती। जैसे आप कोई चीज यदि दिल्ली में करेंगे, बंबई में करेंगे, तो आप उसको चार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी दिखा सकते हैं, चार प्राइवेट लोगों को अलग से भी दिखा सकते हैं। वही चीज को आप यदि एक बहुत ही रिमोट से छोटे शहर में करेंगे तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। प्लस क्या होता है कि आप कोई भी सीएसआर काम करना चाहता है तो वो चाहता है कि भाई सरकार आपकी एक्टिवली वहां पे काम करे, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में काम करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में काम करना आसान है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपैलिटी के साथ में काम करना, मेयर्स के साथ में काम करना, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके साथ में काम करने के लिए आपको उनका लोकल कॉन्टेक्ट समझना पड़ेगा, आपको उनकी लोकल परेशानी को, तो प्लानिंग से लेके मॉनिटरिंग से लेके सब कुछ डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको उसमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो वो सब चीजों की वजह से भी हमने देखा कि बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे लोग इन सब एरिया में काम नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने सोचा कि बिकॉज यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आज नहीं है, लेकिन आज से 10 साल में आपको और दिखेगा। सबसे बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण ही। हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि गांव प्रदेश से लोग बाग शहरों की तरफ और बढ़ना शुरू हो गए हैं। हम शहरों में भी देख रहे हैं कि कैसे 10 मिनट की सर्विसेज और तेजी से बढ़ेंगे। तो जिस तरीके का शहरीकरण हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है सर, और इसी शहरीकरण

0: अराउंड साइंटिफिकली भी और मेंटली भी दोनों तरीके से, कि एक आपके विचारधारा के तरीके से भी और एक आपके वैज्ञानिक तरीके से भी एक प्रोग्रेस हुई है। लोग इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस भी देने लगे हैं, लोग इसके बारे में जागरूक भी होने लगे हैं और लोग इसको समझना भी शुरू करने लगे हैं। तो मुझे इस चीज से एक आशा मिलती है कि यदि हम जिस टाइप की स्कीम्स वो हैं, यदि हम उनको छोटे शहरों में उनके लोकल स्रोतों के अराउंड, उनकी लोकल परेशानियों के अराउंड या फिर उनके लोकल जो रहने सहने के तरीके हैं उनके अराउंड यदि हम सॉल्यूशंस को थोड़ा बिल्ड करेंगे, और म्युनिसिपैलिटी को, जो आपके छोटे शहरों की या मध्यम वर्गीय शहरों की म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको हम एक सही कैपेसिटी और थोड़ा बहुत उनको फाइनेंस मोबिलाइज करने के तरीके, तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में हमारी परिस्थिति उतनी बुरी नहीं होगी जितनी हमें शायद आज देख के लग रही है।
1: असीम जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बढ़ते शहरीकरण के दौर में जल स्वच्छता और सतत विकास, अभी आप असीम आचार्य, सह संस्थापक फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैबिटेट्स, कार्यक्रम निदेशक एवं सलाहकार बोरडा से दिलीप झा की ये बातचीत सुन रहे थे। और इसी के साथ धरती आकाश का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हां मैं बलविंदर। दिन दी शुरुआत एक वधिया विचार दे नाल। किसे ने कहा है कि सफल इंसान ओही है जो अपने ते सुट्टियां इट्टां दी मजबूत नी उसार लवे। आओ जानते हां अज दे प्रोग्राम दी तफसील। अज तुसी सुनोगे वार्ता जिस दा विषय है अज दे बच्चे अते वीडियो खेडां। वार्ताकार ने निर्मल राणी। इस तो इलावा माता दियां भेटां भी सुनवाईयां जाणगियां। पर सब तो पहला कुछ जरूरी गल्लां। पानी धरती उत्ते जीवन दा मुड है। इस तो बिना ना ता इंसान जी सकदा है ते ना पशु पंछी ते ना ही रुख पौधे। पर आज दुनिया भर विच पानी दी घाट इक वड्डी समस्या बन चुकी है। वधदी आबादी गलत उपयोग ते जलवायु तब्दीली कारण जमीन विचला पानी तेजी नाल घट रहा है। इस लई पानी दी संभाल हुण लोकां ते सरकारां लई इक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बन चुकी है। भारत विच खास करके पंजाब हरियाणा ते राजस्थान वर्गे राज्यां विच धरती हेठले पानी दा पद्धर बहुत तेजी नाल घट रहा है। पंजाब विच धान दी खेती लई ट्यूबवैल चल रहे ने जिस कारण वाटर लेवल हर साल 30 to 50 cm थले डिग रहा है। विश्व बैंक ते यूनिसेफ वर्गियां संस्थावां अनुसार 2030 तक भारत विच आबादी दे वड्डे हिस्से नूं पानी दी घाट दा सामना करना पै सकदा है। इस तो इलावा नदियां ते झीलां विच गंदगी वधण नाल उद्योग योग पानी भी घट रहा है। इस संकट तो बचण लई कुछ गल्लां दा ध्यान रखण दी लोड़ है। जिवें घरेलू पद्धर ते नहाउण कपड़े धोण ते बर्तन धोण वेले पानी दी बर्बादी तो बचना। बरसाती पानी इकट्ठा करके वरतों विच लियाउण दी तकनीक उत्ते काम करना। लीक हो रहे नलकियां दी समय सिर मुरम्मत करवाना ते पानी दी बेलोड़ी बर्बादी नूं रोकिया जावे। पंजाब वर्गे खेती प्रधान सूबे विच सब तो वध पानी खेतां विच वरत्या जांदा है। इस दे लई ड्रिप इरीगेशन ते स्प्रिंकलर विधि अपनाउणी लाभदायक होवेगी। धान दी थां घट पानी वालियां फसलां जिवें मक्की बाजरा कणक उगाउणा वधेरे सुखाला होवेगा। लेजर लेवलिंग नाल खेतां विच पानी दी बराबर वंड कीती जा सकदी है। इस तो इलावा फैक्ट्रियां विच वरत्या गया पानी ट्रीट करके दुबारा वरत्या जाना चाहिदा है। शहरां विच वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाए जाण। भारत सरकार वल्लों चलाईयां गईयां योजनावां जिवें जल जीवन मिशन अटल भूजल योजना अते वाटर रिचार्ज प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण ने। पर इह यतन उदों ही सफल हो सकदे ने जदों आम लोक इस विच हिस्सा लैण। हर व्यक्ति नूं याद रखना चाहिदा है कि पानी बचाओगे तां ही जीवन बचेगा। पानी कोई खत्म होण वाली चीज नहीं पर इसदा गलत इस्तेमाल इस नूं घाट

0: प्रतिक्रिया दा समा तेज हुंदा है, ओह जिंदगी भी तेजी नाल फैसले लैण दे योग बनदे हन। वीडियो गेम्स खिडारियां नूं इक्को समय कई चीज़ां ते ध्यान देण लई प्रेरित करदियां हन। इस नाल याददाश्त मजबूत हुंदी है अते रचनात्मकता नूं बढ़ावा मिलदा है। एक सीमित समय तक गेमिंग करना नाल दिमाग नूं ताजगी मिलदी है अते दिन भर दा तनाव ते चिंता घट हो सकती है। ए मनोरंजन दा इक वधिया साधन है जो खुशी दा एहसास करवांदा है। मल्टीप्लेयर अते ऑनलाइन गेम्स खेडण नाल दूजिआं नाल मिल के काम करन अते सहयोग दी भावना पैदा हुंदी है। विदेशी भाषावां दे खिडारियां नाल गल्लबात करन अते गेम दी कहानी नूं समझण नाल नवीआं भाषावां सिखण विच वी मदद मिलदी है। कई अध्ययनां विच मन्निआ गिआ है कि सीमित समें तक एक्शन गेम्स खेडण नाल अक्खां अते हत्थां दा तालमेल बेहतर हुंदा है अते नज़र विच सुधार हो सकदा है। जिहड़े लोक वीडियो गेम्स खेलदे हन उन्हां दी प्लानिंग करन दी स्किल बहुत तेज हो जांदी है। इह इक इस तरह दा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिथे दुनिया नाल जुड़न अते गल करन दा मौका मिलदा है। गेमिंग जिंदगी बदल सकदे हन। वीडियो गेम दे फायदे उदों ही मिलदे हन जदों इन्हां नूं इक सीमित समें तक शौक दे रूप विच खेलिया जावे ना कि लत दे रूप विच, क्योंकि अति हरेक चीज़ दी बुरी हुंदी है।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी वार्ता जिस दा विशा सी अज दे बच्चे अते वीडियो खेडां। वार्ताकार सन निर्मल राणी ते हुण सुनदे हां माता दी ए भेंट सलीम दी आवाज़ विच।

ललारी रंगी है तेरी चुनरी दातिए। सलीम दी आवाज विच हुणे तुसी माता दिए पेंट सुन रहे सी। ते आओ हुण सुनदे हां अमरजीत बिजली दी आवाज विच माता दी ए पेंट।

चिंतपूर्णी मैया तेरी जय होवे, मैया जगत रचैया तेरी जय होवे। अमरजीत बिजली दी आवाज विच माता दी ए भेंट हुणे तुसी सुन रहे सी। ते आओ हुण सुनदे हां महिंदर कपूर दी आवाज विच माता दी ए भेंट। कलमकार ने शबाब अलावलपुरी।

मिठी मिठी पौन तेरे भवना ते वैष्णु चरणी अमृत वगदे। महिंदर कपूर दी आवाज विच माता दी पेंट हुणे तुसी सुन रहे सी। आस करदे हां कि अज दा पंजाबी प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नू इजाजत दिओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचकल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री इचकल करंजी के कल्पंगना अवडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें परिवेशकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटी ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन

0: करनी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुबह की ताज़गी, नई उम्मीदें और बेहतरीन गानों के साथ। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, हर गीत किसी न किसी याद से जुड़ा हुआ होता है। कुछ गीत हमें बचपन में ले जाते हैं, कुछ कॉलेज के दिनों की याद दिलाते हैं और कुछ किसी खास इंसान की याद दिलाते हैं जो हमारे दिल के, हमारे मन के बहुत ही करीब होता है। सोचिए, ऐसा कौन सा गीत है जो आपकी ज़िंदगी, आपकी यादों का हिस्सा बन चुका होगा। और साथ ही साथ हमें संदेश भी आ चुके हैं। हमें संदेश भेजने वाले हैं दिग्दर्शन गौर बाईपास मेरठ से, साथ ही कविता कर्ण, शक्ति रिया, जया और दर्शन भाई। संदेश हमें मिला है, आर्यन वर्मा का, निसार अली। निसार अली लिखते हैं कि प्लीज कोई भी गीत शामिल करें, धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से। अनिल जैन का संदेश हमें मिला है, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, सेक्टर 67 मोहाली से हमें संदेश भेज रहे हैं। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष और नंदिनी, इन्होंने संदेश भेजा है। धमदा ग्राम सुखरी कला, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, इन्होंने गुजारिश किया कि मैसेज को ज़रूर शामिल किया जाए। राधे श्याम शर्मा जी हमें लिखते हैं, इंदिरा शर्मा, साथ ही सार्थक शर्मा, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। गांव हांडीखेड़ा, ज़िला सिरसा, हरियाणा से। कंवर कॉलोनी बड़वाह, ज़िला खरगोन, मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और बीना श्रीमाली का संदेश हमें मिला है।

पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, इनका संदेश हमें मिला है। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने संदेश भेजा है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बास, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य इन्होंने हमें संदेश भेजा है। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से। तो दोस्तों, अभी जैसे कि हमने बात की थी कि सोचिए ऐसा कौन सा गीत है जो आपकी ज़िंदगी, आपकी यादों का हिस्सा बन चुका है, सोचिएगा ज़रूर। तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म हिना से। और दोस्तों, जैसा कि हमारी आपसे बात हुई थी कि आपने कोई ना कोई ऐसा गीत ज़रूर सोचा होगा जो हमें हमारे बचपन की, हमारे कॉलेज के दिनों की, या फिर हमें उस पल की याद दिलाता है जब कोई व्यक्ति, कोई विशेष हमारे दिल के, हमारे मन के बहुत करीब होता है। इसी के साथ हमें संदेश मिला है सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चनाताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रतिभा, इन्होंने संदेश भेजा है। संदेश हमें मिला है उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता प्रणीता, सिद्धांत अर्जुन, इनका संदेश हमें मिला है। साथ ही वैशाली सुमित, कुमारी धोनी, प्रिंस एकांश, इन्होंने संदेश भेजा है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का संदेश हमें मिला है। अनिल ब्रांडे हमें लिखते हैं महाराष्ट्र से। साथ ही उषा अनुश्री धनश्री, इन्होंने संदेश भेजा है और मैसेज को शामिल करने के लिए धन्यवाद भी लिखा है। स्वर्ण सिंह हमें लिखते हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। साथ ही इनके साथ दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, इन्होंने कहा है कि कोई भी गीत जो है वो सुनवा दीजिए। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे, कुमार संचित, प्रथमेश सर्वद, प्रणाली सानवी, हर्षदा, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने लिखा है और कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। सफरुद्दीन अंसारी बक्सर बिहार से लिखते हैं। साथ ही फातिमा खातून अंसारी और सरित रमेश साहू। इसके अलावा डुमराव बिहार से डॉक्टर अब्दुल अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। तो ये थे हमारे संदेश। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि फिल्में जो है उनके जो गीत हैं वो केवल मनोरंजन नहीं करते, वे हमारी जिंदगी के कई पलों के साथी भी बन जाते हैं। कई ऐसे खूबसूरत पल जो आप अपने अतीत में जाके जी चुके होते हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई गीत आपके मन में हमेशा घूमता ही रहता है। और वो पल जब उसकी परिस्थितियां ऐसी बनती है कि वो रिपीट होके आता है, तो आपको वो गीत ज़रूर याद आता है। कभी कोई गीत हमें बचपन की गलियों में ले जाता है, तो कभी किसी पुराने दोस्त या प्रियजन की याद दिलाता है। यही तो संगीत की खूबसूरती है, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में अगला गीत।

किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने एक खूबसूरत गीत सुना। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं आपका दोस्त आरजे अमित। दोस्तों, समय बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते, मानते हैं ना। दशकों पहले लिखे गए और गाए गए कई गीत आज भी उतनी ही ताजगी के साथ हमारे दिलों को छूते हैं और हमारे मन को छूते हैं। और सच्चे गीत की जो पहचान होती है ना, वो यही होती है कि वो आप उनको जब भी सुनो, आपको हमेशा एक नएपन का, अपनेपन का एहसास देती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के आधार पर सुनवा रहे हैं अगला गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

बहुत ही खूबसूरत गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, फिल्म का नाम यारा दिलदारा। और हमारे श्रोताओं का संदेश हमें लगातार मिल रहा है।

बहुत ही भारी मात्रा में। और अगला संदेश हमें भेजा है कोमल मेहरा ने, साथ ही कृष्णा मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल। संदेश हमें मिला है दादरी गेट भिवानी से। धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल, ईशान, पूजा, इनका संदेश हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से। उत्तम सिंह जंघेल का संदेश हमें मिला है गगनदीप ठांडी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वमिका और वाणी थारदी। इनका संदेश हमें मिला है नवाशहर पंजाब से। बिट्टू भाटिया संदेश हमें लिखते हैं, साथ ही रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक। संदेश हमें मिला है झज्जर हरियाणा से। अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता, पूनम। इनका संदेश हमें मिला है कलेर बिहार से। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया और निमित। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से संदेश भेजने वाले हैं राजेश कुमार, प्रीति, कार्तिक। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। और इनका संदेश जो है वो काफ़ी बड़ा भी है। इनके साथ इसके अलावा संदेश हमें मिला है संजय ढींगिया का, बागपत उत्तर प्रदेश से। इनके साथ ही नमन और अपार ढींगिया भी हमें संदेश भेजते हैं। पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखन, सावित्रीबाई देवांगन। इनका संदेश मिला है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू, चंपा साहू। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु सागर। और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन और मोहब्बत मोहब्बत बेगम का संदेश हमें मिला है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर, स्वीटी छाबड़ा। इन्होंने लिखा है कि कोई भी गीत में हमें शामिल करें। तुलसी मस्कीन का संदेश हमें मिला है, वीना मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधाना। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगला और राजेंद्र। पार्स रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल। इन्होंने फरमाइश की है किसी भी गीत को सुनने की। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार और साधना पवन पाटिल। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू का संदेश हमें मिला है। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा हसन, बाबू अहद, मिफरा नवाज और बेबी चाहत ने हमें संदेश भेजा है और संदेश को शामिल करने के लिए शुक्रिया कहा है।
ताज मोहम्मद

संदेश हमें मिला है, साथ ही गुलाम साबिर राही मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार रगली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता अनिकेत ऋषिकेश जीविका, पुनावले पुणे से अजय सोनवे ने, करिश्मा अविका विशाखा, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा लिखते हैं, प्रिय अमित भाई नमस्कार, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन। लड़ लो झगड़ लो लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, वाकई ये एक परिवार को जोड़ने की बात है। और वैसे भी हमारा, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, एक साथ परिवार को जोड़ने की बात करते हैं, तो बिल्कुल बात सही है कि परिवार में बने रहना चाहिए और एक साथ हमें कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो हमारी खूबसूरती और हमारी पहचान है। तो अब सुनते हैं अगला गीत जो कि आपको पसंद आने वाला है, और इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें इस गीत पर कि ये गीत आपको कैसा लगा।

पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने एक गीत सुना फिल्म बहार आने तक से, और इस गीत को संगीत दिया था राजेश रोशन ने। दोस्तों, हर व्यक्ति के पास यादों की एक छोटी सी पोटली होती है ना, उसमें कुछ चेहरे होते हैं, कुछ बातें होती हैं और कुछ गीत होते हैं। कई बार कोई पुराना गीत सुनते ही बरसों पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। शायद यही वजह है कि संगीत को यादों की भाषा भी कहा जाता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? फिल्मी संगीत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हर भावना को, हर फीलिंग्स को अपने सुरों में समेट लेता है। खुशी हो, गम हो, प्यार हो, उम्मीद हो, कोई भी एहसास हो जीवन का, कोई ना कोई गीत ज़रूर मिल जाएगा। यही कारण है कि गीत हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। और साथ ही साथ, चूंकि संदेश आ रहे हैं, हम संदेश शामिल कर लेते हैं। रज़ाक मोहम्मद का, नीटू मल्होत्रा, तुलसी मस्कीन, मेहराजुद्दीन का, रविंद्र सिंह का, राधेश्याम देवांगन, भारत भूषण ने संदेश भेजा है हमें, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज, भानु प्रकाश, गीतिका, निशु, कुड़ी सेक्टर 5, सूर्यनगरी, जोधपुर, राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष।

संबलपुर कांकेर से फागुराम ज्योति ओजस्वी, ऊपरकोटा मोहल्ली चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अवान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण, दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर मुजक्किर, जफीर अंसारी, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल, साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता, सुरसंगम रेडियो श्रोता ग्रुप, वीर मगाम गुजरात से अजीत भावसर, प्रमीला भावेश, जैमिनी जैमिन कुमार, चक एमडी पतरोड़ा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी अंकुर और सुनीता जनागल, साथ ही इंदु। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें संदेश लिखते हैं। हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया का संदेश हमें मिला है। इंदिरा नगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू और नेहा, मांगेराम जी का संदेश हमें मिला है। गांव चौधरीवास हरियाणा से, साथ ही ऋतु सिंह। फारूक अली का संदेश हमें मिला है। सतीश अनेजा लिखते हैं चंडीगढ़ सिटी से। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, किरण, शशि और जग्गी दुआ, इनका संदेश मिला है। मित्रनगर बीड शहर से विकास बंसोड़े, रेखा और अदिति। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू और संजीव जैन। चौधरी विहार हिसार से दक्ष, केशव और राजू अग्रवाल का संदेश हमें मिला है। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव, एसके, पप्पी का संदेश हमें मिला है। स्वर्ण सिंह का संदेश हमें मिला है। अनवर साबरी, इंद्रजीत छाबड़ा, भारत भूषण, गुलाब दास, मणिकपुर, अनिल जैन, अनवर साबरी, हरजिंदर सिंह, अकमर हुसैन, रविंदर सिंह, हरजिंदर, फारूक अली, सीताराम कागरा, भाई मूसा शेख, नरेंद्र शर्मा, इन सभी का संदेश हमें मिला है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम संपन्न करने का भी समय हो रहा है श्रोताओं, और चलते चलते आपको सुनाते हैं ये आखिरी गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ज़मीर।

और चलते चलते एक संदेश और शामिल कर लेते हैं। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू लक्ष्य, लाडो कोयल और पीयूष सिक्का का। और चलते चलते आपको एक आखिरी बात और आपको बता दें कि ज़रा सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी पर कोई फिल्म बने तो उसका शीर्षक गीत कौन सा होगा, जिसे सुनकर आपको लगे ये तो बिल्कुल आपकी कहानी कह रहा है। तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और अपने संदेशों में शामिल रखिएगा। तो मैं आपसे अमित इस कार्यक्रम से विदा लेता हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा में मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृहमंत्री इचलकरंजी में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सबरस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। समय हो गया है सुरमंजरी का, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं तन्वी भट्टाचार्य का गायन राग शुद्ध सारंग। इनके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं सुमित राम ढोकर और हारमोनियम पर करीम नियाजी।

सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अभी आप तन्वी भट्टाचार्य का गायन सुन रहे थे, राग शुद्ध सारंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव।

0: 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। 12 बजने को हैं, अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमरीकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu reached at her village Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today to celebrate her 68th birthday amid a warm welcome from local residents. Odisha Governor Haribabu Kambhambati and Chief Minister Mohan Charan Manji received the President on her arrival. Prime Minister Narendra Modi has arrived at Paharpur. The President will accompany the Prime Minister on a visit to her village and the two leaders will offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves. Later, the President and the Prime Minister will participate in a major public program at Rai Rangpur, marking 2 years of the Odisha government. Development projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Paschim Bongo Divas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India. The Vice President said that on this day in 1947, a historic decision paved the way for the creation of West Bengal as an integral part of India. He said that West Bengal occupies a special place in the country's civilizational and national life. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce, and social reform. The National Testing Agency, or NT, has said that it is fully prepared for the smooth, fair, and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, the NT has said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The NT noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements, and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting held in Mumbai yesterday, SEBI Board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. The fact-check unit of the External Affairs Ministry has debunked claims on social media that Indian ambassador to China was summoned by Beijing to lodge protest over certain memes. It urged people to stay alert against such false and baseless claims on social media. US Special Envoy Steve Witkoff and Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi are heading to Switzerland for the next round of talks. The talks were originally scheduled to begin yesterday, but were postponed because of ongoing hostilities between Israel and Hezbollah in Lebanon. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Brazil had come into the game under pressure after being held to a draw by Morocco in the Group C fixture. The victory lifts the South Americans to the top of the group on goal difference. Earlier today, Morocco secured a 1-0 victory over Scotland in their Group C match. In men's cricket, the third and final ODI match of the series between India and Afghanistan will be played at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the three-match series. And International Yoga Day 2026, or IDY 2026, will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. And that is the end of this news bulletin.

0: घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा दीपा का
1: और मेरा यानी आपकी रेडियो जगह कल्पना का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
0: और दोस्तों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने सच हों इसके पहले आपको सपने देखने होंगे। सपने केवल कल्पना नहीं बल्कि हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। लक्ष्य ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दीपा, और यही जो सपने हैं हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए बड़ा सोचिए, लक्ष्य तय कीजिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए।
0: बिल्कुल।
1: अब देखो, लक्ष्य की बात हुई है और अब हमारे कार्यक्रम में एक नया सेगमेंट भी जुड़ा है, प्रश्न पूछने का, जिससे आप और हम बेहतर तरीके से जुड़ सके। तो आज का प्रश्न हम पूछ लेते हैं दीपा जी अपने श्रोताओं से, वो ये है कि आप जिस भी उम्र में हैं, अब आपके जीवन में आगे का लक्ष्य क्या है?
0: अरे वाह कल्पना, क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा। और दोस्तों, आप हमें अपने जवाब ईमेल करें fmgoldga@gmail.com पर। हम जरूर इसी अंक में, क्यों कल्पना?
1: बिल्कुल,
0: है ना, आपके जवाब शामिल करेंगे। और तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, ये कौन आया, जो कि फिल्म बाजी से है और गायिका हैं गीता दत्त।

0: दोस्तों, आज 20 जून है और हर वर्ष इसी दिन विश्व शरणार्थी दिवस रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। ये दिवस उन लोगों के साहस और संघर्ष को सम्मान देने के लिए समर्पित है जिन्हें युद्ध, हिंसा या संकट के कारण अपना घर छोड़ना पड़ता है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपा। और इस वर्ष जो शरणार्थी सम्मेलन है उसके 75 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जिसने शरणार्थियों के अधिकारों और सुरक्षा की महत्वपूर्ण आधारशिला रखी।
0: बिल्कुल सही कहा कल्पना। और दोस्तों, अनटिल एवरीवन इज सेफ इस वर्ष 2026 का संदेश है, अर्थात जब तक हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं तब तक सुरक्षा का वादा अधूरा है।
1: बिल्कुल। और इस दिवस का उद्देश्य जो है वो ये है कि हमें मानवता, करुणा और सह अस्तित्व के मूल्यों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो दीपक, चलो अब आज हम भी ये संकल्प लेते हैं और अपने श्रोताओं को भी बोलते हैं कि वो भी हमारे साथ ये संकल्प लें कि भाई प्यार से रहेंगे, प्यार पाएंगे और प्यार बांटेंगे।

0: मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के हुनर होते हैं। कोई अच्छा गायक होता है, कोई कलाकार होता है दीपा जी, और कोई खिलाड़ी तो कोई विद्वान। लेकिन इन सभी हुनरों से बढ़कर एक ऐसा हुनर है जो जीवन को सरल, सुंदर और सफल बनाता है, और ये हुनर है हमेशा खुश रहना।
1: और मुझे लगता है तुम तो हमेशा रहती हो खुशी। हाँ बिल्कुल। खुशी केवल चेहरे की मुस्कान नहीं है दोस्तों, बल्कि मन की एक सकारात्मक अवस्था है। जो व्यक्ति हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहना सीख लेता है, वो जीवन की कठिनाइयों का सामना भी साहस और धैर्य के साथ कर सकता है। खुश रहने वाला व्यक्ति स्वयं भी सुखी रहता है और अपने आस पास के लोगों को भी खुशी बांटता है।
0: क्या बात है। और देखो ना, आज के समय में लोग भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उनके पीछे भागते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनसे ना परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। ऐसे में खुश रहने का जो हुनर है ना, वो हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए।
1: और खुश रहने के लिए दोस्तों संतोष, कृतज्ञता, सकारात्मक सोच और अच्छे संबंधों का होना आवश्यक है। दूसरों की मदद करना, प्रकृति और परिवार के साथ समय बिताना, योग और ध्यान करना आपकी आंतरिक खुशी को सदैव बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखो, खुश रहने वाला जो व्यक्ति होता है ना दीपक, वो सिर्फ अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। इसलिए हमें जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराने और खुश रहने का अभ्यास सीखना चाहिए। तो अपने दोस्तों से भी हम यही कहेंगे कि एक बार मुस्कुरा दो।
1: बिल्कुल।

0: जो तुम मुस्कुरा दो, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी धूल का फूल और गायक कलाकार थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: दीपा जी अपने दोस्तों को याद दिला देते हैं अपना प्रश्न जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था कि भाई कुछ हमारे श्रोता जो है वो हो सकता है अभी जुड़े हों। तो आपके लिए प्रश्न ये है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन के अलग अलग पन होते हैं, बचपन होता है, युवापन होता है और वृद्धावस्था भी होती है, लेकिन हमेशा आपके पास आगे जीवन जीने के लिए एक लक्ष्य होता है, क्योंकि निरुद्देश्य तो किसी का जीवन नहीं होता। तो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आप हमें ईमेल करें अपना उत्तर और हम उसको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अब बात करते हैं, थोड़ी सी आपको जानकारी बढ़ाते हैं, भाई आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो

0: विकसित किया गया है। दोस्तों, ये एक मोबाइल ऐप है जिसके अंतर्गत योग केंद्रों, प्रशिक्षकों और योग कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
1: बिल्कुल, और इस ऐप में तरह तरह के योगासन, प्राणायाम और ध्यान से संबंधित जो शैक्षिक सामग्री होती है उसका समावेश किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को योग अभ्यास के लिए प्रेरित करता है। इसमें मौजूद फिटनेस ट्रैकर की सुविधा से कदमों यानी जो आप स्टेप्स चलते हैं और कैलोरी की निगरानी भी की जा सकती है कि भाई आप कैलोरीज कितनी बर्न हुई है, कितनी आपको करनी है।
0: बिल्कुल, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय। और साथ ही दोस्तों, योग क्विज और अन्य गतिविधियों के माध्यम से योग संबंधी ज्ञान बढ़ाने से ये ऐप जो है सहायता करता है। यानी नमस्ते योग ऐप योग को सरल, सुलभ और लोकप्रिय बनाने का काम कर रहा है, तो आप भी इससे जरूर जुड़ें और बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते रहें।
1: बिल्कुल, और हम तो यही कहेंगे दीपा जी कि भाई हम योग का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे।

0: कभी तेरा दामन, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, गायक कलाकार थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी।
1: बिल्कुल दीपा, और अब बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिसने लिप्पन आर्ट और वेडिंग प्रोडक्ट जैसे पारंपरिक काम से देश भर में अपनी पहचान बनाई है। ढेर सारी मेहनत, अनोखी रचनात्मकता और आत्मविश्वास के दम पर इंदौर की युवा उद्यमी अदिति

0: शाह आज सोशल मीडिया और हस्तशिल्प जगत में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं।
1: और दोस्तों, इन्होंने लिपिन आर्ट, वेडिंग डेकोर आइटम्स और क्राफ्ट रॉ मटेरियल के क्षेत्र में इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद देश भर के ग्राहकों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। पहले पहले अदिति ने छोटे स्तर से अपनी शुरुआत कर अपने जुनून को व्यवसाय में बदला। आज उनके सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं और उनके वीडियो और उत्पाद सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं।
0: बिल्कुल, और उनके बनाए हुए हैंडमेड प्रोडक्ट्स की जो मांग है वो भारत के विभिन्न राज्यों से आती है, यानी ऑल इंडिया में ग्राहकों का जो नेटवर्क है वो उनका बन चुका है। वे आज क्राफ्ट रॉ मटेरियल के लिए विश्वसनीय नाम है और हजारों संतुष्ट ग्राहकों का विश्वास भी है उन पर।
1: इंदौर की अदिति शाह की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम अपने काम पर विश्वास करें और लगातार मेहनत करते रहें तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है।

0: और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भोजन जो है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। यही हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे स्वास्थ्य को आधार बनता है। शायद यही कारण है कि आज लोग अपने भोजन की गुणवत्ता और उसके स्रोत के बारे में पहले से कहीं अधिक जागरूक हो रहे।
1: बिल्कुल सही कहा दीपा, और इसी जागरूकता के कारण आजकल ऑर्गेनिक या जैविक खाद्य पदार्थों की भी चर्चा बढ़ रही है। कुछ वर्ष पहले की बात करें तो ये उत्पाद सीमित मात्रा में उपलब्ध होते थे, लेकिन आज आप देखो तो फल, सब्जियां, अनाज, दालें, मसाले और कई अन्य खाद्य पदार्थ हैं जो बाजार में आसानी से मिलते हैं।
0: जी हाँ, सही कहा कल्पना। और जैविक खेती में प्राकृतिक तरीकों को महत्व दिया जाता है और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग को कम करने का प्रयास बहुत किया जाता है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों का रुझान इसकी ओर और हो रहा है।
1: अरे वाह, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसकी शुरुआत जो है अपने घर से भी कर सकते हैं। क्यों दीपा, अगर थोड़ी सी जगह हो तो वहाँ पे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च या मेथी जैसे पौधे गमलों में भी उगाए जा सकते हैं। इससे ताज़ी सब्जियाँ, ताजगी और स्वाद के साथ एक अलग संतोष भी हमें मिलेगा। निश्चित रूप से ये ऑर्गेनिक जो फूड है उसके प्रति बढ़ती जो रुचि है, ये हमें याद दिलाती है कि स्वस्थ जीवन और प्रकृति के साथ संतुलन दोनों ही हमारे लिए जरूरी
0: हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसलिए भारत सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY भी जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिले। याद रखिए, प्रकृति के करीब लिया गया हर हमारा छोटा कदम बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक सार्थक कदम बन सकता है।

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44। और देखो दीपा, हमारे बहुत से श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमें ईमेल भी भेजे हैं। सुनील जी हैं, सुदर्शन मुखी जी हैं, इन लोगों ने हमें भेज रखे हैं ईमेल, इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और हमारे एक श्रोता ने हमारे प्रश्न का उत्तर भी लिखा है, पढ़कर बताओ ना क्या लिखा है।
1: इन्होंने लिखा है कि आप दोनों बेटियों को राम राम, बुढ़ापे में थोड़ी कमी तो आ जाती है लेकिन फिर भी इंसान कोशिश करे तो लक्ष्य कोई भी हो यानी कि अच्छा होना चाहिए। ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आते हैं, उस पर हमें कायम रहना चाहिए। बच्चे अगर बात माने तो ठीक है, नहीं तो हमें खुद को बदलना चाहिए, उसी में खुशी महसूस होगी। शुक्रिया गौरी शंकर नागरी।
0: गौरी शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए हम बहुत अच्छी जानकारी अब देने वाले हैं। जानकारी क्या, आप हमें दोबारा से ईमेल करेंगे क्योंकि हम बात करने वाले हैं गर्मी की छुट्टियों की। जी हाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए वर्ष का सबसे आनंददायक समय होती हैं, बड़ों के लिए भी होती हैं
1: और जिसका सबको इंतज़ार रहता
0: बिल्कुल
1: है।
0: और जब परीक्षाएँ समाप्त होती हैं तो छुट्टियों का इंतज़ार शुरू हो जाता है। इस दौरान बच्चों को खेलने, घूमने और नई नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलता है। हम सभी भी बचपन की गर्मियों में जाते थे जब नानी के घर या फिर कहीं घूमने, तो उसकी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। तो दीपा जी, आपकी कोई याद है तो बताओ ना।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं कल्पना, मैं बताती हूँ। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि जब हम छुट्टियों में गए थे तो उस रात में बिजली चली गई। हम सभी घर की छत पर बैठे और नाना जी से पुरानी कहानियाँ सुनी। उन्होंने अपने बचपन के कई रोचक प्रसंग सुनाए कि कैसे वो स्कूल जाने से घबराया करते थे और छुट्टियाँ होते ही खुश होते थे। और नानी जी ने तो उस रात हमें कई भजन सुनाए और तब हमें पता चला कि नानी कितना अच्छा गाती हैं। तो हमने उन्हें कहा भी कि नानी आपको तो सिंगर होना चाहिए था, और इस बात पर नानी बस मुस्कुरा दी। अब तुम बताओ अपना कोई किस्सा।
0: अच्छा, क्योंकि मेरा जो घर है वो गांव में था तो हम मतलब खुद कहीं नहीं जाते थे, लेकिन हमारे घर बहुत सारे लोग आते थे और हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता था दीदी और उनके बच्चों के आने का। जैसे ही वे आते थे हम दिन भर आम के बाग में आम खोजते रहते थे, कभी जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ते थे और खजूर के लिए तो हमारे बहुत झगड़े होते थे, कभी तालाब में पैर डालकर बैठते थे तो कभी ट्यूबवेल की हौदी में भी हम खूब मस्ती से नहाया करते थे, बहुत मज़े करते थे। बगीचे का हर पक्षी हमारा दोस्त होता था और हर पशु हमारा साथी, यानी हम परिवार के साथ प्रकृति के साथ का भी आनंद लिया करते थे।
1: नहीं नहीं बिल्कुल सही, तुम जो बातें बता रही हो मुझे सब याद आ रही हैं। और तब कल्पना देखा जाए तो तब हमें ना गर्मी की फिक्र होती थी और ना ही धूप से काले हो जाने की। और हमारे श्रोताओं के पास भी हम जानते हैं बहुत रोचक किस्से होंगे, तो जल्दी से हमें ईमेल कर दीजिए अपने रोचक किस्से fmgoldga@gmail.com पर।
0: और इस अच्छी सी जानकारी के बाद अपने दोस्तों को सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत रोटी फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: और कल्पना, अब क्या इरादा है, कुछ खाने की बातें हो जाए?
1: बिल्कुल होनी चाहिए भाई, देखो घर आंगन कार्यक्रम है तो फिर खाने की बात तो होनी चाहिए।
0: दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम को फलों का राजा कहा जाता है और इसकी मिठास का आनंद लेना भला किसको पसंद नहीं होता। और बाजारों में आजकल बहुत आम भी आए हुए हैं, ऐसे में क्यों ना आम से बनने वाली एक ऐसी मिठाई की बात या मीठे की बात की जाए जो खाने में स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी। तो आज हम अपने श्रोताओं को बताते हैं आम्रखंड के बारे में, जैसे श्रीखंड होता है उसी को कैटेगरी में आएगा आम्रखंड।
1: बिल्कुल, और ये बहुत ही स्वादिष्ट एक मीठा होता है। तो दीपा जी, आइए जानते हैं कि इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। और श्रोताओं, आप या तो इसको रिकॉर्ड करो या फिर अपने डायरी पेन से नोट करो, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 कप हंकड़, यानी कि अच्छी तरह छाना हुआ दही, 1 कप आपको चाहिए ताज़ा आम का गूदा, 2 बड़े चम्मच आपको पिसी हुई चीनी, 1/2 कप बारीक कटे हुए आम के आपको टुकड़े लेने हैं, और इसको सजाने के लिए आपको थोड़ा सा पिस्ता या बादाम लेने हैं, वो भी छोटे छोटे से कटे हुए।
0: और दोस्तों, अब इसकी विधि भी जान लेते हैं। हंकट, आम का गूदा और चीनी को अच्छी तरह से फेंट लें। जब मिश्रण एकदम मुलायम और क्रीमी हो जाए तब उसमें कटे हुए आम के जो टुकड़े हैं उनको मिला दें। अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। परोसते समय ऊपर से कटे हुए पिस्ता और बादाम जो भी आपकी इच्छा अनुसार हो डाल दें, तो आपका ये जो आम्रखंड देखिए कितनी जल्दी बन जाता है और स्वादिष्ट भी बहुत होता है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों देखो, दही में जो है वो होता है प्रोटीन और कैल्शियम, वो बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, जो हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। साथ ही दही जो है वो पाचन में भी हेल्प करता है, और अगर आप इसको खाएंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो बिल्कुल, आप इस फायदे के लिए भी इसे खाएं।
0: और बिल्कुल कल्पना, वही कहते हैं कि आम में विटामिन ए, विटामिन सी और कई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी माने जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दीपा, तो हम अपने दोस्तों से यही कहेंगे कि भाई, जब तक आम का मौसम है, आपको इस स्वादिष्ट और पौष्टिक आम्रखंड को घर पर बना कर रखना चाहिए, खाना चाहिए
0: और खिलाना भी चाहिए।
1: देखो, मेहमान आए तो उनको अगर आप खिलाएंगे तो ये एक नई चीज हो जाएगी उनके लिए। फिर वो आपसे पूछेंगे कि भाई आपने इसे कैसे बनाया, तो फिर आप उन्हें बताओ कि भाई हमने इसको ऐसे बनाया है।
0: और सुना कहाँ पर?
1: रेडियो पर, घर आंगन कार्यक्रम में। आंगन कार्यक्रम, तो आप जरूर बताइएगा और उनको भी बोलिएगा कि भाई घर आंगन कार्यक्रम आपको भी सुनते रहना है। तो दीपा, देखो हमने इतनी मीठी मीठी सी रेसिपी बताई है, तो अब दोस्तों को सुना देते हैं एक मीठा मीठा सा गीत।
0: हाँ, और ये गीत है, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे। गायक हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, और फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ मुझे यानी कल्पना को और मुझे यानी दीपा को दे अनुमति। नमस्कार।
1: आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति

0: मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi arrived at Pahadpur in Odisha's Mayurbhanj district today. He was received by Odisha Governor Dr. Hari Babu Kambapati and Chief Minister Mohan Charan Manchi. Earlier, President Draupadi Murmu had reached her village Pahadpur to celebrate her 68th birthday in the presence of the Prime Minister. The two leaders are scheduled to offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit the Skill Development Center and Paharpur School, highlighting initiatives aimed at empowering tribal communities through education and skill development. Later in the day, the President and the Prime Minister will participate in a public program at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Orissa government. Developmental projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. Both the President and the Prime Minister will also address a large public gathering on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrah in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dhunagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep water hydrographic operations, while INS Agrah is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal defense. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Pashchim Bongo Diwas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India. The Vice President said that on this day in 1947, a historic decision paved the way for the creation of West Bengal as an integral part of India. He said that West Bengal occupies a special place in the country's civilizational and national life. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce, and social reform. The National Testing Agency or NTA has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test or NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. International Yoga Day 2026 or ITY 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. As part of the celebrations, the Ministry of Culture will organize special International Day of Yoga events at 100 iconic locations across the country. Former senior IIS officer Dipankar Mukhopadhyay passed away in Kolkata last night after a brief illness. He was 76. Mr. Mukhopadhyay served in various media units at the Ministry of INB and in News Services Division of All India Radio. He also served as AIR Special Correspondent in Singapore. He survived by his wife and daughter. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Brazil had come into the game under pressure after being held to a draw by Morocco in their opening Group C fixture. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
3: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विज़ीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट।

0: बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट हूँ दोस्त प्रीति त्यागी, कार्यक्रम एक ही फिल्म में। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम एक ही फिल्म जिसमें हम आपके लिए चुनकर लाते हैं समय के पहिए से एक फिल्म, और आज उस पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाएंगे और चलेंगे उस साल में जब आई सिनेमा घर में एक ऐसी फिल्म जिसने अपनी सादगी, अपने बेहतरीन संगीत और अपनी खूबसूरत वादियों से सबका दिल जीता। जी हाँ, साल सन 1971 यानी कि 1971। और आज हम बात करेंगे निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की सदाबहार फिल्म बन फूल की। जी दोस्तों, बन फूल नाम सुनते हमारे सामने जंगल, हरे भरे जंगल दिखते हैं, चहचहाते पक्षी और नेचर का जो एक अछूता रूप है हमें वो नज़र आता है। और इस कहानी का भी इसी तरह से एक यूनिक पॉइंट है। जी हाँ, जिस तरह से बनफूल हमने नाम सुना और हमें पहाड़, जंगल और वहाँ की खूबसूरती याद आई, वैसे ही इस फिल्म में इसकी जो प्लस पॉइंट था वो थी इस फिल्म की कहानी, और उससे भी बड़ी बात इस फिल्म की स्टारकास्ट। करेंगे इस फिल्म से जुड़ी हुई बातें, किस्से और गाने, लेकिन करते हैं शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ किशोर कुमार की आवाज़ में।

जी दोस्तों, वन फूल आज की फिल्म कार्यक्रम एक ही फिल्म में। हमने आपको बताया कि इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का स्टार कास्ट। अगर हम इस फिल्म के सितारों की बात करें तो इस फिल्म में थे सदाबहार अभिनेता जितेंद्र, जंपिंग जैंग, बेहद

खूबसूरत बबीता उनके साथ, और उनके साथ थे विलन के रूप में अपनी थाक जमाने वाले शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन इस फिल्म में जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनका अंदाज थोड़ा सा अलग था। और इस फिल्म की अगर हम संगीत की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के खूबसूरत से संगीत ने इस फिल्म को और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों, इस फिल्म के बारे में और भी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं खूबसूरत से गीत मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में।

जी दोस्तों, फिल्म बन फूल, इस फिल्म की एक खास बात आपको बताती हूँ कि इस फिल्म में जितेंद्र साहब का जो लुक था, जो उनका कैरेक्टर था, वो उनके उस वक्त जो उनकी फिल्मों में इमेज थी उसके बिल्कुल अलग था। जी हाँ, उस वक्त जितेंद्र जी मशहूर थे अपने जंपिंग जैक वाले शहरी इमेज वाले लड़के के रूप में, जो कि सफ़ेद कपड़े सफ़ेद जूते पहनते थे। लेकिन इसके इतर इस फिल्म में उन्होंने बिल्कुल एक सीधे साधे गांव के लड़के का कैरेक्टर निभाया है, जो कि मासूम जानवरों से प्यार करता है और पूरी तरह से वो जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके करीब है। लेकिन जैसा कि इस फिल्म का नाम है बन फूल, यानी कि जंगल का फूल, अब जंगल की पृष्ठभूमि पर यह फिल्म बनी है तो जानवरों का होना तो लाजमी है। और इस फिल्म में जो जितेंद्र साहब का कैरेक्टर है वो दिखाया गया है कि वो जानवरों के बहुत करीब था। लेकिन आपको पता है इस फिल्म की शूटिंग के दौरान असली हाथी और भालुओं का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, और जितेंद्र साहब को उन जानवरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए शूटिंग से काफ़ी वक्त पहले वक्त निकाला और उसके साथ में उन्होंने थोड़ी सी दोस्ती की उन जानवरों के साथ, ताकि स्क्रीन पर जो उनकी दोस्ती है वो बिल्कुल असली लगे।

जी दोस्तों, जितेंद्र और बबीता की जो जोड़ी है वो इस फिल्म में कमाल की रही है। वैसे ये जोड़ी पहले भी फर्ज नाम की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम कर चुकी थी और इस फिल्म में इन दोनों के चुनाव के पीछे भी एक यही वजह थी, क्योंकि जितेंद्र साहब को विजय भट्ट जी ने ये सोच करके लिया कि भाई जो उनकी एक इमेज है उससे अलग उनको बनाना है, और वो कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते थे और उन्हें एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो कि मासूम भी दिखे और उस पर जो दर्शक हैं वो भी भरोसा कर सकें। और जितेंद्र साहब से ज़्यादा मासूम उस वक्त तो कोई नहीं होगा, और इसी तरह से उन्होंने बबीता जी का चुनाव किया इस फिल्म के लिए। और वैसे भी बबीता कपूर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी और एक उनकी एक बबली और एक मॉडर्न इमेज थी, और इन्होंने इस फिल्म में भी शहर से आई एक लड़की का किरदार है जो कि शहर से गांव में आती है और वहां गांव में जो लड़का है एक गांव का उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती हैं, उससे प्यार करने लगती हैं। और ये जो फिल्म है, इस फिल्म में जब बबीता जी को साइन किया गया था तो उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा हिट फिल्में दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा उनका जो करियर था वो ऊँचाइयों पर था। लेकिन इस फिल्म में जब उनको साइन किया गया उसके बाद में, उस वक्त उनकी जो शादी की बातें चल रही थी रणधीर कपूर जी के साथ में और फाइनल थी ऑलमोस्ट, और यही वजह थी कि विजय भट्ट साहब चाहते थे कि बबीता फटाफट से उनकी फिल्म में काम करे, टाइम से पहले वो हो जाए ताकि उनकी फिल्म इफ़ेक्ट ना करे उनकी शादी की बात से। और वही हुआ, क्योंकि ये जो फिल्म थी वो बबीता के करियर की आखिरी दौर की फिल्मों में से एक थी, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने फिल्में छोड़ दी और ये उनकी शादी से कुछ वक्त पहले की ही फिल्म है।

सीधे साधे गांव के कपड़ों में नजर आई। डायरेक्टर विजय भट्ट ने उस दौर की सबसे ग्लैमरस जोड़ी को बनपूर बनाकर पूरी तरह से कुदरत के रंग में रंग दिया था। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म के तीसरे कैरेक्टर यानी कि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में, तो उनके लिए तो मतलब क्या कहें, उनकी तो आवाज़ इतनी दमदार है और विलेन के किरदारों से वो सुपरस्टारों को भी टक्कर देते थे। इस फिल्म में भी उन्होंने अजय नाम के लड़के का किरदार निभाया जो कि बबीता के प्यार में पूरी तरह से पागल है। और इस फिल्म में कई शॉट ऐसे भी थे जब शत्रुघ्न सिन्हा डायलॉग डिलीवरी करते थे तो वो इतने कड़क अंदाज में, उनके तेवर इतने कड़क होते थे कि सेट पर जो लोग होते थे जो कि शूटिंग देख रहे होते थे या बाकी लोग होते थे वो उनकी खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी को देखकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। यहाँ तक कि खुद जो विजय भट्ट जी हैं वो भी यही उनका भी यही कहना था कि विलन होने के बाद बावजूद भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब में एक अलग तरह का आकर्षण था और शायद यही वजह थी और यही रीज़न है कि उनकी ये दमदार पर्सनालिटी की वजह से वो हमेशा सुपरस्टार्स हीरोज़ वगैरह सबसे ऊपर हो जाते थे।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। कल्याण मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले के साथ। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार के साथ। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगला संदेश आया दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमन नवाज, हसन, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज और बीबी चाहत के साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो संदेश है इसको भेजने वाले जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा के साथ। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है, इसको पहुंचाने वाले हैं अजित भावसर जी, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी जो बातें हैं, जानकारी हम तक पहुंचाई हैं। और लिखते हैं कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म हाथी मेरे साथी ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी और इसी वजह से जितेंद्र की सादगी से भरी फिल्म वन फूल का रिलीज होना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन शानदार संगीत और कहानी ने सबको चौंका दिया और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। और भी बहुत अच्छी इन्होंने हम तक जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता गीता हमारे साथ जुड़े हुए, सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वयाल, प्रथमेश, सर्वद, प्रणाली, सानवी, हर्षदा देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से

एस नवानकर, निर्मला और विशाल नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केयर ऑफ ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ जुड़े हैं। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू हमारे साथ जुड़े हैं। और गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंदसोलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चंदसोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ हैं संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये संदेश उन्होंने भेजा है मॉडल टाउन करनाल से। तो दोस्तों, ये थे वो संदेश जिनके ज़रिए हमारे सभी श्रोता हम तक जुड़े। और कार्यक्रम एक ही फिल्म जो हम आपके लिए लेकर आए हैं यादों के इस कार्यक्रम में, बनफूल फिल्म की ये छोटी सी दास्तान थी जो हम आप तक लेकर आए। सादगी, संगीत और सच्चे जज्बातों से सजी हुई फिल्म, और ये फिल्म हमें बताती है कि सुकून आखिर कुदरत और मासूमियत में ही छिपा है। उम्मीद है आज का सफ़र आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपके दिल को छुआ होगा। और आप मुझे यानी प्रीति को दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी सादगी को हमेशा संभाल कर रखिए। तो चलिए, छोड़ जाती हूँ आप सभी के लिए खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से। नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज ओडिशा विच मयूरभंज जिले के पहाड़पुर पहुंचे ने। वह अज 47,000 करोड़ रुपए तो वध दे विकास प्रोजेक्टां दा उद्घाटन करनगे अते नींह पत्थर रखणगे। नैशनल टैसटिंग एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 की मुड़ प्रीख्या दी तैयारियां दे हिस्से वजों अज देश व्यापी मॉक ड्रिल कर रही है। सेबी ने बाजार समर्था वधाउण, पालणा दीआं जरूरतां नूं आसान बनाउण अते नेमबंद ढांचे नूं मजबूत करन लई कई सुधारां नूं प्रवानगी दे दित्ती है। ते क्रिकेट च भारत ते अफगानिस्तान विचकार तीजा ते आखरी एक रोजा मैच अज चेन्नई च खेडिया जा रहा है। ते हुण खबरां

0: विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज ओडिशा विच मयूरभंज जिले के पहाड़पुर पहुंच गए ने। ओडिशा के राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंबमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उन्हां दा निग्गा स्वागत किया। इस तो पहला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपना 68वां जन्मदिन मनाने लई अपने पिंड पहाड़पुर पहुंचे सन। दोवें उत्थे पवित्र संथाली जहीरा अते हो जहीरा दे बागां विच पूजा करनगे। वह हुनर विकास केंद्र अते पहाड़पुर स्कूल का भी दौरा करनगे। इस तो बाद राष्ट्रपति अते प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 साल मुकम्मल होने के मौके ते राय रंगपुर च एक विशाल जनसभा च शामिल होंगे। ਉਹ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਚ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नूं उन्हां दे जन्मदिन दीआं वधाईआं दित्तीआं ने। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू दी सादगी निमरता अते लोक सेवा प्रति वचनबद्धता देशवासियां नूं प्रेरित करदी रहेगी। उन्हां ने राष्ट्रपति मुर्मू दी लंबी उमर ते तंदरुस्त जीवन दी कामना कीती। गृह मंत्री अमित शाह ने अज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नूं उन्हां दे जन्मदिन ते वधाईआं दित्तीआं ने। सोशल मीडिया उत्ते अपने संदेश विच श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू दे कार्ज काल दौरान देश ने औरतां दे सन्मान ते लोक भलाई दे खेतर च अनेकां प्राप्तियां कीतियां ने। कल दुनिया भर विच अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विशा सेहतमंद जिंदगी लई योग ए। यह विशा हर उम्र च योग की अहमियत नूं उजागर करता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके ते सभ्याचार मंत्रालय देश विच 100 थावां ते खास प्रोग्राम करवा रहा है। इन्हां च भारत की खुशहाल विरासत अते योग परंपरावां दा विखाला कीता जावेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भलके मध्य प्रदेश के जबलपुर विच अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के संबंध विच करवाए जाने वाले प्रोग्राम च मुख मेहमान वजों शिरकत करनगे। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੈਰੀਸਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਬਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਗੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਰਮੂ ਰਾਣੀ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ 36ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 की मुड़ प्रीख्या दी तैयारियां दे हिस्से वजों अज देश व्यापी मॉक ड्रिल कर रही है। यह अभ्यास सवेरे 9 बजे शुरू होया अते सारा दिन जारी रहेगा। देश भर के प्रीख्या केंद्रां च कीते जा रहे इस अभ्यास विच 2.5 लाख तो वध सुरक्षा मुलाजम हिस्सा लै रहे ने। इस दौरान NTA ने कहा है कि वह कल होने वाली नीट UG 2026 की मुड़ प्रीख्या के सुचारू निरपक्ष अते पारदर्शी संचालन लई पूरी तरह तैयार है। एक बयान विच NTA ने कहा है कि यह प्रीख्या भारत के 551 शहरां अते विदेशां दे 14 केंद्रां विच 2,79,000 तो वध उम्मीदवारां लई करवाई जाएगी। एजेंसी ने कहा कि अबजरवर कोआर्डीनेटर पुलिस बल अते प्रशासकां समेत 2 लाख तो वध मुलाजम तैनात किए गए ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उप राष्ट्रपति CP राधा कृष्णन अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज पछमी बंगाल दिवस के मौके ते इस सूबे दे लोकां नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਏ @AIR_RNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਏ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਏ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਏ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 12 ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ।
1: पिछले 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈਟੈਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ

0: शुरू किया गया सी। इस लिए 76,000 करोड़ रुपए का वड्डा बजट रखा गया। इस योजना तहत सिलिकॉन फैब कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूनिट असेंबली अते टेस्टिंग सहूलतां अते चिप डिजाइन लिए 50% तक की माली सहायता प्रदान की गई सी। साल 2026 विच सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2 शुरू किया जिस लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सनअतां दे सहयोग नाल खोज ते सिखलाई केंद्र स्थापित करना, नवीं टेक्नोलॉजियां विकसित करना ते भविख लिए हुनरमंद मनुखी स्रोत तैयार करना। इस दे नाल ही भारतीय पुलाड़ नीति 2023 ने भी निजी कंपनियां नूं पुलाड़ खेत्र विच पूरी तरह काम करन दी इजाजत दिती है। हुण निजी संस्थावां रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण ते संचालन, डेटा इकट्ठा करन ते वंड अते ग्राउंड स्टेशनां वर्गियां गतिविधियां कर सकदियां ने। इस नीति दे बाद भारत विच स्पेस स्टार्टअप दी गिनती 2014 च सिर्फ 1 तों वध के अज 400 तों वध हो गई है। इस नाल देश दी निजी पुलाड़ आर्थिकता नूं भी नवीं गति मिली है। सेमीकंडक्टर मिशन दीआं प्राप्तियां अते तेजी नाल वध रहे निजी पुलाड़ खेतर राही भारत एक विकसित राष्ट्र बनन वाल लगातार अगे वध रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल जलंधर तों आकाशवाणी खबरां लई मैं चंचल शर्मा।
1: सेबी ने बाजार समर्था वधाउण, पालना दीआं जरूरतां नूं आसान बनाउण अते नेमबंद ढांचे नूं मजबूत करन लई कई सुधारां नूं प्रवानगी दित्ती ए। कल मुंबई विच सेबी दी 214वीं मीटिंग च सेबी ने मृतक निवेशकां दे शेयरां दे आसानी नाल तबादले दी सहूलत नूं आसान बनाया ए। छोटी रकम दे दावियां दे निपटारे लई तेज ट्रांसफर प्रक्रिया लागू करन दा फैसला कीता गया ए। सेबी बोर्ड ने कुछ मामलिआं च स्थाई खाता नंबर दी जरूरत नूं हटाउण अते तसदीक नूं सौखा बनाउण लई QR कोड योग मौत प्रमाण पत्र स्वीकार करने का भी फैसला किया है। बोर्ड ने इस साल 1 अगस्त तो सोधिया हुई समा हदां अते सख्त पालना नियमों के नाल खुले बाजार शेयर खरीद नूं मुड़ शुरू करने नूं प्रवानगी दे दित्ती है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकां, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां अते कर्जदारां दरमियान मिली भुगत उत्ते गंभीर चिंता प्रगट कीती है। सर्वोच्च अदालत ने माड़े कर्जियां दे हल दी प्रक्रिया उत्ते भी सवाल कीते। चीफ जस्टिस सूर्याकांत अते जस्टिस वी मोहन दे बेंच ने कहा कि बैंक टैक्स अदा करन वालियां दे पैसे उधार दे रहे ने पर असरदार रिकवरी उपाय लागू नहीं कीते गए। विदेश मंत्रालय की तत्थ जांच इकाई ने सोशल मीडिया उत्ते प्रसारित उन्हां दावियां नूं खारिज कर दिता है जिन्हां च कहा गया सी कि कुछ मीम्स नूं लैके विरोध दर्ज करवाउण लई चीन ने भारत दे राजदूत नूं तलब कीता सी। मौसम विभाग ने अज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर अते लद्दाख विच गरज चमक नाल तेज़ हवावां चलण दी संभावना प्रगट कीती है। भारत अते अफगानिस्तान दरमियान तीजा अते आखरी एक रोजा क्रिकेट मैच अज चेन्नई दे एम ए चिदम्बरम स्टेडियम विच खेडिया जा रहा है। ए मैच हुण तो थोड़ी देर पहला 1:30 बजे शुरू होया। अफगानिस्तान ने टास जित के पहला बल्लेबाजी करन दा फैसला कीता है। खास खबरां एक बार फिर सुन लो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज उड़ीसा च मयूरभंज जिले दे पहाड़पुर पहुंचे। ਉਹ ਅੱਜ 47,000 करोड़ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੇਮਬੰਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕੇਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਚੇਨਈ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
2: ਆਦਾਬ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਖਾਨ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हमराह उड़ीसा में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन FDC अद्वियात की तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर पाबंदी आयद कर दी है। इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कल मुनाकिद होने वाले नीट UG के दोबारा इम्तिहान से कबल मुलगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर कल तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने हेती को 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर पहली जीत हासिल की।

अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के आबाई गांव पहाड़पुर का दौरा किया और सदर जमहूरिया के साथ उनकी सालगिरह की तकरीब में भी हिस्सा लिया। वहां पहुंचने पर उड़ीसा के गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति और वज़ीर-ए-आला मोहन चरण मांझी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने संथाली जहेरा गोशानी पीठ और हो जहेरा जाकर प्रार्थना की और गांव के अहम इदारे देखने गए, जिनमें हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज और पहाड़पुर स्कूल भी शामिल हैं। मोहतरमा मुर्मू ने हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक मरकज में तलबा के साथ बातचीत भी की। बाद में सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने एक अहम आवामी प्रोग्राम में शिरकत की, जो मोहन चरण मांझी की ज़ेर क़यादत उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के सिलसिले में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में 47,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा और उनका इफ्तिताह किया जाएगा। इन प्रोजेक्टों में तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनती बुनियादी ढांचा, आबपाशी और पीने के पानी वगैरह समेत कई दूसरे प्रोजेक्ट शामिल हैं। सरकार ने 16 तरह के फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC अद्वियात की इंसानी इस्तेमाल के लिए तैयारी, फरोख्त और तकसीम पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। अद्वियात के तकनीकी सलाहकार बोर्ड की जानिब से कायम करदा माहरीन की एक कमेटी की रिपोर्ट का

सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लेने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन अद्वियात में दाफे अमराज का कोई उनसुर नहीं पाया जाता और ये सेहत के लिए खतरा साबित हो सकती है। जिन अद्वियात पर पाबंदी लगाई गई है उनमें एंटीबायोटिक पर मबनी कुछ अद्वियात, दर्द से राहत देने वाली अद्वियात और कुछ डर्माटोलॉजिकल अद्वियात शामिल हैं। भारत ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोज़ा मीटिंग का एहतमाम करेगा जो पीर से शुरू होगी। इस मीटिंग की सदारत कौमी सलामती के सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के कौमी सलामती के सलाहकार और वफदों के सरबराह दुनिया को दरपेश गैर रिवायती सिक्योरिटी चैलेंजों के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 के कल फिर से होने वाले इम्तिहानात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल कर रही है। यह सिलसिला सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और पूरे दिन जारी रहेगा। मुल्क भर के इम्तिहानी मराकज में इस तरह की ड्रिल हो रही है जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी अमले के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली कैंट और अशोक विहार फेज 2 के इम्तिहानी मराकज में इस मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। इम्तिहानात को साफ, शफाफ और खुश असलूबी से कराने की खातिर ये मश्क कराई जा रही है। एनटीए ने बताया है कि मुल्क भर के 551 और दूसरे मुल्कों के 14 शहरों में इम्तिहान मुनाकिद होगा जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। एजेंसी ने यह भी बताया कि मुनसिफाना और साफ सुथरे इम्तिहान को यकीनी बनाने की खातिर कई मरहलों वाली सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। इसमें सीसीटीवी के जरिए निगरानी और आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक शामिल है। इसके अलावा पुलिस मुहाफिजत में इम्तिहानी साजो सामान पहुंचाने के लिए जीपीएस की सहूलत से लैस गाड़ियां भी शामिल हैं। कल ये इम्तिहान 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में रियासती सतह के बैनुल-अक़वामी योग प्रोग्राम में मेहमान खसूसी होंगी। ये प्रोग्राम सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। सदर जमहूरिया आज शाम भारतीय फिजाइया के खसूसी तैयारी से जबलपुर पहुंचेंगी। हवाई अड्डे पर गवर्नर मंगू भाई पटेल उनका खैर मकदम करेंगे। सदर जमहूरिया योग के प्रोग्राम के बाद रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जाएंगी जहां वो यूनिवर्सिटी की 36वीं जलसे तकसीम इसनाद में मेहमान खसूसी होंगी। इस तकरीब में रियासती गवर्नर भी शामिल होंगे। सदर जमहूरिया के दौरे से पहले जिला इंतजामिया ने डुमना एयरपोर्ट, गैरिसन ग्राउंड, सर्किट हाउस और रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के 15 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन गुब्बारों और पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी है। योग का बैनुल-अक़वामी दिन 2026 कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस साल योग का 12वां बैनुल-अक़वामी दिन सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग के मौजू के तहत मनाया जा रहा है जो हर उम्र के अफराद के लिए योग की अहमियत को उजागर करता है। इस सिलसिले की तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क भर के 100 तारीखी और नुमाया मकामात पर खसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे और योग की रिवायत को

योग का बैन अवी दिन 2026 कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस साल योग का 12वां बैन अवी दिन सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग के मौजू के तहत मनाया जा रहा है, जो हर उम्र के अफराद के लिए योग की अहमियत को उजागर करता है। इस सिलसिले की तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क भर के 100 तारीखी और नुमाया मकाम पर खसूसी प्रोग्रामों का इनका करेगी, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे और योग की रिवायत को

and news on AI Wrap. And with that, we end the midday news.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में

0: रणपुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की

0: अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट

0: कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्ला

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

उषा मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं 1975 की रिलीज हुई सुपर डुपर और ब्लॉकबस्टर फिल्म जय संतोषी माँ में संतोषी माता का मुख्य किरदार निभाने वाली अनीता गुहा पर फिल्माया गया ये गीत।

दोस्तों, अनीता गुहा जो कि हमारी आज की कलाकार हैं, और जब ये फिल्म जय संतोषी माँ रिलीज हुई थी तो बहुत सारे लोग उन्हें असल जिंदगी में देवी मानकर पूजा करने लगे थे। जी हाँ, ठीक उसी तरह से जैसे कि भगवान श्री राम का किरदार अरुण गोविल साहब ने निभाया था और लोग उन्हीं को भगवान राम समझकर पूजा करने लगे थे। दरअसल संतोषी माता का ये जो किरदार उन्होंने निभाया था, ये उस दौर में सबसे प्रतिष्ठित और धार्मिक किरदार था जिसने उनको देशव्यापी पहचान दिया। और

उन्होंने पर्दे पर सीता का रोल भी निभाया है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी हुई ना, लेकिन ये सच है। दरअसल कई बड़ी धार्मिक फिल्मों में, जैसे कि संपूर्ण रामायण जो कि 1961 में रिलीज हुई थी, इसके अलावा श्री राम भरत मिलाप 1965 में आई थी, और तुलसी विवाह, ये फिल्म 1971 में

देख कबीरा रोया 1957 में और संजोग 1961 में आई थी। इन सभी फिल्मों में भी उन्होंने शानदार काम किया, यादगार काम किया। और आज हम उनको क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी पुण्य तिथि है। जी हाँ, अनीता गुहा का जन्म 17 जनवरी 1939 को हुआ था और उनका निधन 20 जून 2007 को हुआ था। आज 20 जून है, उनकी पुण्यतिथि है, इस मौके पर हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी फिल्मों के बारे में भी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको उनकी एक और सुपरहिट फिल्म आई थी आराधना, जो कि 1969 में रिलीज हुई थी और राजेश खन्ना साहब के किरदार के तक मां की भूमिका अनीता गुहा ने निभाई थी। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले हम आपको इसी फिल्म यानी आराधना फिल्म से सुनाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

इसी बीच आपके संदेश भी हमारे पास चले आ रहे हैं और ये एक संदेश आया है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, इन्होंने लिखा है कि आपका बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए शुक्रिया। हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बेहद पसंद आ रहा है जी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणीश कुमार के साथ।

ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से संदेश आया है उदय भानपाल, जय हिंदपाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और इनके परिवार वालों का। और इन्होंने लिखा है कि सादर नमस्कार, आप का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं जो कि अनीता गुहा जी पर आधारित है और आप इस कार्यक्रम के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, अनीता जी के फिल्मों के गाने सुनवा रहे हैं, वो हमें बेहद पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ। और आज की हमारी कलाकार हैं बीते जमाने की जानी मानी अभिनेत्री अनीता गुहा। और उनका जन्म बंगाल के एक परिवार में हुआ था और उनके पिता एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में भी उन्होंने केवल 15 साल की उम्र में एक ब्यूटी और टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता था। और इसी के बाद साल 1953 में एक बंगाली फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की। और अगर बात करें हिंदी फिल्म की, तो हिंदी फिल्म में उनकी शुरुआत हुई, एक फिल्म आई थी तांगा वाली 1955 में। इस फिल्म के जरिए ही अनीता गुहा ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। तो आगे बढ़ने से पहले इसी फिल्म तांगा वाली से एक बेहतरीन सा नगमा आपको सुनाते हैं, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरुनूर, गुरलाल और अविराज सिंह का संदेश आया है कि वे कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें बेहद पसंद आ रहा है।

वीरम गाम गुजरात से संदेश आया है अजीत भावसार, प्रमिला भावसार का, और इन्होंने अनीता गुहा जी के बारे में अच्छी रिसर्च की है और उनकी पर्सनल लाइफ यानी निजी जिंदगी के बारे में भी हमें संदेश भेजा है कि उनकी शादी अभिनेता माणिक दत्त से हुई थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे, और अनीता गुहा का जो जीवन है उसका जो अंतिम समय है वो बेहद दुखद और गुमनामी में बीता। जी बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दौर ये भी था जब अनीता गुहा को लगने लगा था कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वे उन्हें सिर्फ भक्ति से जुड़ी हुई भूमिकाएं ही देना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कई पौराणिक फिल्मों में काम किया, जैसे कि कवि कालिदास, जय द्वारकादेश और कृष्णा कृष्णा। जय संतोषी माँ के अलावा उन्होंने संगीत सम्राट तानसेन, कान कण में भगवान और वीर भीमसेन जैसी ऐतिहासिक फिल्मों में भी काम किया। और फिर उन्होंने प्रोड्यूसर्स को समझाया कि भाई, वो भक्ति से ओत प्रोत किरदार निभाने के अलावा और दूसरे किरदार भी निभाना चाहती हैं। और तभी उनको फिल्म मिली आराधना, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना की दत्तक माँ की भूमिका निभाई थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है, और अब उनकी एक और फिल्म से आपको एक प्यारा सा नगमा सुनाते हैं, और लता मंगेशकर जी की आवाज़ है, और वो भूली दास्तां फिर याद आ गई। बहुत ही प्यारा सा गीत, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आइए सुनते हैं।

साल 1961 में आई फिल्म संजोग और लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ये बेहद ही भावुक कर देने वाला गाना है और ये गाना फिल्माया गया था प्रदीप कुमार और अनीता गुहा पर।

और इसी बीच आपका एक संदेश हमारे पास आ गया है, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह, जसवीर, सीता और गीता का। और इन्होंने लिखा है कि आप अनीता गुहा जी की फिल्मों के बारे में जो बता रहे हैं और उनकी जो गाने सुनवा रहे हैं वो बेहद हमें पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अनीता गुहा जी के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताऊं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने जय संतोषी माँ, ये जो फिल्म आई थी जिससे उनकी एक अलग पहचान बनी थी, शुरुआती दौर में उन्होंने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। और फिर किस तरह से इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने उनको कन्विंस किया, तब जाकर उन्होंने इस फिल्म में काम करना स्वीकार किया। और एक बात और भी है इस फिल्म से जुड़ी हुई कि जय संतोषी माँ, इस फिल्म का बजट था केवल 5 लाख रुपए, लेकिन इस फिल्म ने उस दौर में 5 करोड़ रुपए कमाकर एक तरह से इतिहास रच दिया था, क्योंकि ये फिल्म शोले के बाद 1975 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। तो आगे बढ़ने से पहले एक और फिल्म उन्होंने की थी जिसका नाम था शर्मिली। हालांकि इसके अलावा उन्होंने अनुराग, झूम उठा आकाश, नागिन जैसी कई फिल्मों में भी वो नजर आई, लेकिन मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपको फिल्म जय संतोषी माँ का गाना सुनवाया था, क्योंकि इसी फिल्म के जरिए उनकी किस्मत बदल गई, उनकी पहचान बदल गई और वो रातों रात देश और विदेश में प्रसिद्ध हो गई। तो अब हम आपको इस कार्यक्रम के आखिर में सुनवाते हैं फिल्म शर्मिली से लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक प्यारा सा नगमा।

एक और संदेश आया है बिल्कुल अभी अभी गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार और प्रमोद कुमार का। इन्होंने लिखा है एक ही कलाकार में आज आप अनीता गुहा के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि हमें बेहद पसंद आ रही है। गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपकी प्रस्तुतिकरण तो बेहद ही शानदार है। ये बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम को और हमारे इस चैनल को

दोस्तों अब हमें भी आपसे बिछड़ना होगा क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हम आपको अलविदा कहें। और इसी के साथ अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत। फिर होगी जल्द मुलाकात इसी चैनल पर किसी न किसी कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, ब्रज माधुरी।

0: माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति बुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। वंदना,
1: हाँ जी जी,
0: देखो गर्मी को मौसम आए गयो है।
1: हाँ,
0: और गर्मी के मौसम में ऐसा लगे कि घर के बाहर भी कहीं निकलो ना तो ऐसा लगे है कि सघन वनन की छांव में बैठ जाओ कहीं नेक सीसी देर सीरक में और सांस ले लो।
1: जो की बात कह रही हो जी जी,
0: जो हमारो ब्रज क्षेत्र है वो तो वन उपवनन ते आच्छादित रहवे है।
1: हाँ जी जी, साची कह रही हो आप जी बात तो। और देखो हर वन उपवन के पीछे एक कथा हुआ है।
0: और चूंकि कान्हा और राधा की यानी राधा माधव की जो लीलाएं हैं वो काऊ न काऊ वन उपवन ते जुड़ी भई हैं। और ब्रज क्षेत्र में तो वन उपवन इतने हैं कि 12 तो वन हैं बड़े और 24 उपवन हैं।
1: हाँ जी जी,
0: तो ऐसे ब्रज क्षेत्र में तो सोचो के हर वन उपवन में एक लीला है।
1: हाँ जी जी, देखो लीला तो हते हैं, पर चुनाए ऐसो करें और बात कर देते पहले हम अपने श्रोतान को एक बढ़िया सौ लोकगीत या भजन सुनवाए दे।
0: मुकु तो पहले ही बतोई कि तुम तो पहले लोकगीत सुनवाओगी, बाकी सारी बात अन्य बाद में करोगी।
1: चौकी बात पहले करनी चाहिए ना जी जी।
0: हाँ।
1: देखो फिर हमारे श्रोतन को तो मन बिन पेट को, जैसे आपको गर्मी में छा चाहिए वैसे ही उनको मधुर स्वर चाहिए।
0: तो आज चौना हम अपने श्रोतान को बंसी भट्ट की ही कछु कथा सुनाए दे में एक लोकगीत के माध्यम से। तो आओ सुने हैं जगदीश ब्रजवासी के स्वर में जे

0: श्रोताओ, अभी आपने जगदीश ब्रजवासी के सुर में या लोकगीत को आनंद लियो। हाँ जी जी, अब बताओ का कह रही तुम।
1: देखो वंदना, हम बात कर रहे हैं ब्रज क्षेत्र के वन और उपवनन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रज क्षेत्र के 84 कोस की परिधि में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलांते जुड़े भए हैं वो 12 प्रमुख वन हैं और 24 उपवन

0: स्थित हैं और इनमें प्रमुख हैं मथुरा और वृंदावन, और भी इनके आसपास के जो इलाके हैं वाक क्षेत्र में जो वन उपवन है इनको बड़ा महत्व है।
1: हाँ जी, देखो द्वादश वनन में ते एक मधुवन है जो सबते प्राचीन वन है, जहाँ श्री कृष्ण ने मधु दैत्य को वध कियो हो।
0: और वृंदावन, यहाँ श्री कृष्ण ने गोपीन के संग महारास किया और कई दिव्य लीलाएं करी।
1: हाँ जी, और जो तालवन है तो है ना, ताल की पेड़न ते प्रसिद्ध है, जहाँ पे बलराम जी ने धेनु को असुर राक्षस को वध की ना।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो, और या की कथा तो ब्रज 84 कोस परिक्रमा में जब वन दिखा में है तो वहां में हुआ वह है। और या के अतिरिक्त एक और वन है कुमुद वन, ये यमुना के पूर्वी तट पर स्थित है और ये जो वन है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुगंधित फूलन के ताई जानियो जाए है।
1: हाँ जी, ऐसो एक काम वन है, बाय काम वन हूँ कह मैं, और जी आदि वृंदावन है, यहाँ पे विमल कुंड और 84 खंभा मंदिर प्रसिद्ध है।
0: और जहाँ पे श्री कृष्ण ने बहुला नामक गाय की परीक्षा लई ही और शेर को सद्बुद्धि दई हती, वो वन जानो हो कौन सा है? वो है बहुला वन।
1: और जी, खदरवन की बात बताऊं,
0: हाँ बताओ।
1: यहाँ पे कृष्ण और बिन के सखा गई है चरामते,
0: और महावन,
1: और महावन में बाल कृष्ण की माखन चोरी, पूतना को वध, और संगी जसोदा जी को ब्रह्मांड दर्शन की लीला को वर्णन है।
0: और देखो वंदना, जो भांडीर वन है ना, यहाँ पे वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण बलराम ने वकासुर राक्षस को वध किया हो। और भांडीर वन एक और बात के ताई प्रसिद्ध है, कहवे हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण को विवाह
1: विवाह
0: संपन्न
1: रचाया।
0: कराया हो।
1: हाँ जी, और एक भद्रवन है जी, जे शांत और घनो वन है, जीवन यमुना के पश्चिमी तट पे स्थित है।
0: और लोवन,
1: हाँ जी, यहाँ पे बाल कृष्ण ने लोहासुर को वध की ना, और ग्वाल बालन के संग में गई है चराई।
0: और एक और वन है जाकू कहवे हैं बेलवाना या बिलवन, जे बेल के वृक्ष को वन है। यहाँ पे बेल के वृक्ष ज्यादातर मिले हैं और यहाँ पे देवी लक्ष्मी ने कृष्ण के संग रासलीला में शामिल हुए वे के ताई तपस्या करी ही। और या के अतिरिक्त वंदना, ब्रज में 24 उपवन हूँ हैं जहाँ पे कृष्ण अपने सखान के संग गैया चरायो करते, खेलो करते। और वो उपवन कौन कौन से हैं?
1: हाँ जी, गोवर्धन उपवन में देखो कुसुम सरोवर हुआ है, मानसी गंगा हुआ है, और वाके संग संग आसपास बरसाना उपवन है, संकेत वन, घेवर वन और पीली पोखर वन है।
0: और या के अतिरिक्त हैं चमेली वन, कोकिला वन, कदम्ब वन और श्याम
1: श्याम वन।
0: वन। तो देखो हमने अपने श्रोतान को ब्रज क्षेत्र में उपस्थित वन और उपवनन की जानकारी तो दे दी है, पर अब चौना हम अपने श्रोतान को एक वार्ता हूँ सुनवाई दे में।
1: हाँ जी, सुनवाओ ना।
0: तो श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाई बजाए रहे हैं एक वार्ता श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति की प्रतीक मीराबाई, और या के वार्ताकार हैं पंडित मदन मोहन शर्मा।
1: तो श्रोताओ आओ सुने हैं जी वार्ता।
2: नीलांबुजनेन सकाशं सौभाग्यं सुमनोहरं कदम बिट्वारूढ़ प्रभु कृष्णं नमाम्यहं वृषभान सुतां देव्यां वृंदावन बिहारिणी वंदे नरचंद्रसुता तुल्यां श्रीराधां शुभदर्शनी। यात्रा भगवान श्री कृष्ण 5-4 वर्षन ते अधिक भारतीय और विश्वलोक जीवन को अपनी लीलान एवं प्रेम भक्ति ते सभी को भावमयी आध्यात्म रस सागर में डूबते चले आ रहे हैं। उनकी यश और भी समस्त भूमंडल में फैलती भई सबको आनंदित कर रही है। यही सो पाश्चात्य देशन में हूँ श्री कृष्ण आराध्य और वंदनीय होते चले आ रहे हैं। प्यारे कृष्ण के जन्म और लीला स्थली ब्रजभूमि के रसगण प्रेम भक्ति ते मिले भये गोपी चंदन बन गए हैं, जिनको मस्तक और हृदय ते लगाए हुए ताई देश विदेश के प्रेमी भक्त श्रद्धालु या ब्रज में हर पल भ्रमण और रमण करते रहे। यही श्रृंखला में अनेक प्रेमी भक्तन ने युगल स्वरूप को अपनो सर्वस्व मान के दर्शन प्राप्त किए हो। इनमें श्री गोस्वामी वल्लभाचार्य, सूरदास, श्री तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, नागरी दास, हरिदास, हरिराम व्यास, नरसी आदि रहे, जिन्हें प्यारे मुरली मनोहर को अनेक रसमय भावन ते समझाए हो। जैसे

कटोरा और जागो लाल भयो है होरा, बंदी जन द्वारे गुन गा में गाय दोहन को गाउ बला में, सुख सामरो देख सुख पावे लीला ललित लाल की गावे। परंतु भक्त हरिराम व्यासी ने तो कबीरदास के ज्ञान सिद्धांत के कशी शिकायत है तब हरवंश जी जब करी तो हरिराम व्यास ने ध्यान में प्रिया प्रीतम न्याय आए तब बड़े भाव से कहवे लगे कि तुमने भक्त को अपराध कर दियो हो, या प्रकार से आराध्य को ध्यान में लानो बड़ो कठिन है। वैसे कबीरदास जी से जाके क्षमा मांगी है और स्पष्ट कर दियो हो कल में सांचो भक्त कबीर, या प्रकार को स्पष्ट कियो हो, या प्रकार से आराध्य को ध्यान लायो ऐसो न्याय होना चाहिए। हरिराम व्यास जी ने कबीर से क्षमा मांगी और बोल उठे कल में सांचो भक्त कबीर। यह सुन के कबीर ने कही हाँ हमारे भावन में रस ना है पर प्रभु को कहलावे सोई बोलेंगे, यही बात को 12 पुराण में स्पष्ट कियो है। श्री कृष्ण ने शंकर जी कहो है तुम चरुद्र महाभाव मोह शास्त्राणी कार्यत अति ध्वनि अति मति दर्शस्व महाभुज प्रकाशम कुरु चात्मानम प्रकाशम च भावक है। हे रुद्र जी तुम मोह शास्त्र की रचना करो, सत्य के ताई असत्य को श्रेष्ठ बताओ, अपने अहंकार को प्रकाश करो और मेरे स्वरूप को अप्रकाश करो, यही कारण सो शंकर जी शंकराचार्य बन के जग में आए हैं। श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति से ओतप्रोत है के मीराबाई साक्षात प्रतीक बन गई है। जब उनकी आयु 7 साल की तब एक दिना वो माँ के संग कथा प्रसंग में गई, जहाँ भागवत की कथा है रही, वहाँ जाके श्री कृष्ण को प्रसंग सुनकर के आंखों में से आंसू आए हुए लगे। उन्होंने जो श्लोक पढ़े सुने कि ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नेक न विसरहो मोय नंद बाबा किया, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गो प्रजोक साम, यन मित्रों परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। यह प्रकार के भावन को देख करके कथावाचक के सामने पहुंची, संत के शरण स्पर्श किए, पूछने लगी कि महाराज मुझे कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। यह बात को सोच करके वो संत कथावाचक आश्चर्य में पड़ गए, जो बात मेरे समझ में नहीं आई वो आज ही 7 वर्ष की कन्या मुझसे पूछ रही है। इन बातों को देख करके महाराज उनके चरण में गिर पड़े और प्यारे गिरधर लाल ठाकुर जी की मूर्ति उनको दे दी थी। वही सेवा को वो मुराजी करते रहे, उनके संग रहनो, उनके संग में खानो, उनके संग भोजन करनो, यह प्रकाश और भाव बन गए हो। वो उन्हें सच्चिदानंद रूप में माने ही और निश्चित कर लियो है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पथ सोई, संतन ढंग बैठे बैठे लोक लाज खोई, अब तो प्रेम बैल फैल गई आनंद फल होई। मीरा जब 8 वर्ष की जब हुई तो एक दिन माँ के संग में बारात देखने चली गई। वह बारात में जाकर के माजा लौट के आई तो कहवे लगी बेटी काउ दिन तेरो भी दूल्हा आवेगो और यह प्रकार से बारात सजा के तो को यहाँ से ले जाएगो। बेटी मीरा बोलने लगी मैया मैंने तो गिरधर लाल के संग में फेरा पार लिए हैं, वही मेरे सांचे प्रीतम बन गए हैं, अब ये शरीर तन मन धन सब उनके लिए है। यह प्रकार से मीरा के वचन सुन करके मैया को बड़ो अचंभव भयो। मीरा बाई को जन्म सम्मत 1498 से लेके 1540 तक मान्यो जाए। इनको जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के मेड़ता गांव में राठौड़ वंशी राजा रतन सिंह के यहाँ भयो हो। जो मूर्ति गिरधर गोपाल की वहाँ से संत से प्राप्त भई उनको सेवा में हमेशा वो रखे और जब उनके महाराज समय आयो सेवा शादी को वाई समय जाकर के माता पिता ने बहुत सो दहेज इनको दियो। इनके साथ जाकर के अपने दूल्हे भोजराज के साथ जब जाए लगी, जब कन्यादान को समय आया तो कन्यादान में बहुत सा सामान दियो हो। माता पिता ने दहेज में सब कुछ देने के पश्चात ये रोवे लगी मेरे गिरधर गोपाल को दे दो। मैया ने जाकर के गिरधर गोपाल दे दिए, माँ मेरे प्राण जीवन गिरधर लाल हैं। यह प्रकार से उनको संग लेकर ससुराल आ गई। जब पति ते मिलन भयो तो स्पष्ट कह दियो मैंने तो गिरधर के संग अपने विवाह कर लियो है, वही मेरे प्राण है, वही मेरे जीवन है, वही मेरे पति है, उनके अलावा मेरे संसार में कोई ना है। यह सुनकर के भोजराज सन्न रह गए हैं और बिना इनको तन स्पर्श किए वहां से हट गए हैं। या प्रकार गिरधर लाल की मूर्ति में कछु चमत्कार दिखाई देवे लगे। सास ने कुल देवी कुल देवतान की पूजा कराई लेकिन इन्होंने पूजा करने से मना कर दियो और कहवे लगे मेरे हाथ तो गिरधर लाल की पूजा ही कर सके और मेरो मस्तक श्री गिरधर लाल के सामने झुक झुके है और कहो देवता के सामने मैं प्रणाम नहीं कर सकूं। या प्रकार से कहवे लगी मेरो तो जन्मभूमि और झूमे हित नैन लागे, पगे गिरधारी लाल पिताही धाम में, राना ते सगाई भई करी ब्याह सामा नई,
गई सुत बूढ़ वा रंगीले घन श्याम में, भामरे परत मन सामरे स्वरूप माझ, और तामरे से आमे चलवे को पति गाम में।

यह सुनकर के सभी ससुराली जन सास ननद ससुर आदि दंग रह गए और अपमान को घूंट पी करके रह गए। मीरा को अनेक प्रकार से दुख देवे लगे, यहाँ तक कि अलग निवास दे दियो, वहां में किसी प्रकार को कोई व्यवस्था नहीं। श्री मीराबाई गिरधर को श्रृंगार करें, लाड़ लड़ावें, बात करें, संतन को मंडली बुलाकर कभी जब

सास ननद ससुर आदि दंग रह गए और अपमान को घूंट पी करके रह गए। मीरा को अनेक प्रकार से दुख देवे लगे, यहाँ तक कि अलग निवास दे दियो हो, वहाँ में किसी प्रकार को कोई व्यवस्था नहीं। श्री मीराबाई गिरधर को श्रृंगार करें, लाल लड़ाई बात करें, संतन को मंडली बुलाकर कभी जब कीर्तन करें, पर यह सब इनकी ननद उदा भाई को ना सुहावे हो। वाने मीरा से कही, भाभी ये तुम्हारी इन बातन सो और पूजा पाठ साधु संगत की कीर्तन थे

सास ननद ससुर आदि दंग रह गए और अपमान को घूंट पी करके रह गए। मीरा को अनेक प्रकार से दुख देवे लगे, यहाँ तक कि अलग निवास दे दियो हो, वहाँ में किसी प्रकार को कोई व्यवस्था नहीं। श्री मीराबाई गिरधर को श्रृंगार करें, लाल लड़ाई बात करें, संतन को मंडली बुलाकर कभी जब कीर्तन करें, पर यह सब इनकी ननद उदा भाई को ना सुहावे हो। वाने मीरा से कही, भाभी ये तुम्हारी इन बातन सो और पूजा पाठ साधु संगत की कीर्तन थे हमारी समाज में बड़ी निंदा है रही है, वासो हमें बड़ो लज्जित होना पड़ रहे हो। जैसे आए के ननद कही गहे किन चेत भावी, साधुन सो हेत ये कलंक लागे भारी है, राणा देशपति लागे और बाप कुल रीत उगत, तान तीजे मत बैनी संग ये विचारी है, लागे प्राण साथ संत पावत यासो सुख अनंत, जाहु दुख हो ताको जल्दी कर ठारी है, सुन के कटोरा भर गरल पे वाय दियो और लियो कर मैं मोहन बध गये जा।

आया बन गए। राणा ने गुप्त चरण थे यह बात पता लगायो कि ये मीरा अपनी कोठरी में कौन थे बातचीत करे है। पर गुप्त जर जब वहां पहुंचे तो मीरा गिरधर से बात कर रही और सब बात हल्की हल्की करते हुए सुन करके वो हक्के बक्की रह गए। मेरे तो गिरधर के संग नाचू, मैं तो गिरधर के संग न जाऊं, गिरधर प्यारो साचो प्रीतम वह देख देख सुख बाहू, प्रेम भरी रस की बतियां कहवत मैं सक चाहूं। या प्रकार के भावन से जाकर के उन भावनाओं को प्रकट कर रही गुप्त चरण ने ये बात जाकर के राजा को बताई। सो बोले प्रेमा भक्ति में हिलोरे राजाऊ लेवे लगे। एक बार एक कामी नीच पुरुष साधु के वेश में आए के मीरा ते बोलो हो कि मोको गिरधर प्यारे ने तुम्हारे पास भेजो है

0: प्रेमी तानसेन को साथ लाकर के उनके दर्शन की अभिलाषा से वहां चले आए और वहां भक्ति और गिरधर लाल के प्रेम को देख करके निहाल रह गए और अमूल्य मणि मुक्तान की गिरधर को पहना करके चले गए। एक बार मीरा वृंदावन पहुंच करके जब पतो लगे कि श्री जीव गोस्वामी कहो स्त्री को मुख देखे ना है, तो बोल उठी वाह कैसो भाव है, या वृंदावन में श्री गिरधर कृष्ण के अलावा तो कोई पुरुष ही नहीं है, बाकी सब स्त्रियां निवास करें, पुरुष तो केवल वही प्यारे गिरधर है। या बात को सुनकर जीव गोस्वामी ने अपनो यह प्रण सदा को टाल दियो और वे स्वप्न में गोपी सखी सहचरी भाव देखने लगे। रूप की निकाई भूप अकबर मन भाई, ये ले संग तान सेने देखे वे क्यों आयो है, निरख निहाल भयो छवि गिरधारी लाल, पद सुख जाल एक तभी ही चढ़ायो है, वृंदावन आई जीव गोस्वामी मिली जाल ही, तिया मुख देख वे को पनहू हटायो है, देख कुंज कुंज लाल तुम्हारी सुख पुंज, प्यार भरी और माज आय देश गायो है। राणा और पति भोजराज की द्वेष बुद्धि को देख करके मीराजी द्वारका चली आई और यहाँ बस गई। गिरधर लाल उनके संग प्रतिक्षण रहती रहीं, उनकी सेवा में उनको पूरा भाव देखे हो, पूरा समय व्यतीत करते हुए उनको निवास कराते रहे। या बात कुराला ने सोचो कि गिरधर लाल के साथ मीरा चली गई और वहाँ जब घर महल में किसी प्रकार की शोभा दिखाई नहीं दी तो रावण जाकर के राणा ने पश्चाताप कियो और ब्राह्मण भेजे कि द्वारका ते मीरा को लेवा के लिया। मीरा जी ने वहाँ जैवी को तैयार नहीं भई, लेकिन ब्राह्मण वहीं विराजमान रहे, वो जावे को नाम न लेवे लगे। तभी मीरा जी ने देखो कि प्रेम प्यारे ब्राह्मण जो आए हुए हैं वो मैं इनके संग जाऊं, ऐसा कहकर के रण छोड़ लाजी के विदा ले जाऊं, ये भाव से जाकर संग में ससुराल चलूंगी। यह कहते हुए रणछोड़ लाल जी के से विनती करवे लगी और वहीं पाद पद गायबे लगी। सारी रणछोड़ लाल ते लिपट गई और वही प्रतिमा में लीन है गई। यह बात काहू को नहीं मालूम पड़ी, केवल सारी पकड़ी रही वह भी रणछोड़ में समाई गई। याली स्पष्ट है सुने गुने सज्जन मन लाई, कलिका लिख नहीं तन लपटाई, अनुपम भक्ति बढ़े मन माही, छूट है पाप दुसह दुख नाही, सत्य ईश केवल जग माही, बिन हर्षण गहे सुख नाही, हर नर जीवन इत लाभ सुभीता, अंत समय हर पद सुच प्रीता। या प्रकाश मीरा जी की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति की सांची प्रतीक रही है या में किसी प्रकार को संदेह ना है, उनने ही बात सुन रखी है कि ब्रज वृंदावन गिर नदी पशु पक्षी किन के संग, ये सब किन को त्याग हूँ, ये हैं मेरे अंग। उन्हें देख लियो ब्रज में श्री प्यारे श्याम गिरधर के साथ में यमुना नदी गिरिराज पर्वत पशु वहाँ के पक्षी बंदर मोर सब कृष्ण के अंग सखाए। इन बात को लेकर के प्यारे श्याम सुंदर की लीलान को आनंद प्राप्त कर रही, या से उनकी प्रीति और बढ़ी और भक्ति बढ़ी, या प्रकाश उनको संसार में नाम भयो हो।
1: श्रोताओ अभी आप पंडित मदन मोहन शर्मा थे श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति की प्रतीक मीराबाई पे जी वार्ता सुन रहे हैं और अब चलते चलते आओ सुने हैं जी प्यारा सो लोकगीत
2: और यह लोकगीत को स्वर दियो है मदन मोहन ब्रजवासी ने।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, नाटक डॉक्टर खुद यहाँ बीमार हो गया।
1: आइए सुनते हैं नाटक डॉक्टर यहाँ खुद बीमार हो गया। लेखक कमल कुमार वर्मा, निर्देशन काजल सूरी,

0: आहा, से हो गई। बाल अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, अब ठीक है। ले ले।
1: यस डॉक्टर।
0: बताओ आज मैं कैसा लग रहा हूँ?
1: डॉक्टर महेंद्र सर, अरे सारे शहर में आप जैसा कोई नहीं। आज पेशेंट से आप डबल फीस भी मांग सकता है।
0: ले ले, हम जानते हैं तुम हमारा नर्स बनने से पहले ब्यूटी पार्लर में काम कर चुकी हो, इसीलिए डॉक्टर होने के बावजूद हम तुम्हारा प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है ताकि पेशेंट पर हमारा अच्छा इम्प्रेशन पड़ सके। यू नो लेडी, पर्सनालिटी डू मैटर।
1: यस डॉक्टर, यस। पर एक सजेशन है, अगर आप माइंड ना करें तो।
0: बोलो बोलो लेडी, गो अहेड।
1: यू नो, हमारा फिल्म इंडस्ट्री के एक सदाबहार हीरो का ना एक स्पेशल स्टाइल था, वेरी स्पेशल। उनका लेफ्ट साइड का एक दांत आधा टूटा हुआ था और इसीलिए कई नौजवान भी अपना वही दांत आधा तोड़वा लिया था।
0: अच्छा,
1: आप चाहें तो मैं भी आपका आधा दांत तोड़ सकती हूँ। यू विल लुक मार्वेलस एंड वेरी वेरी ग्रेट लाइक हिम सर। लाऊं हथौड़ी?
0: ले ले, डोंट बी सिली। सारा शहर मुझे डॉक्टर मोहिंदर के नाम से जानता है, जिसके पूरे 32 दांत सलामत हैं। जरा सोचो, अगर हमारे 31.5 दांत होंगे तो हमारे दांतों के मरीजों पर हमारा क्या इंप्रेशन पड़ेगा? यू शुड बी अ रोल मॉडल फॉर योर पेशेंट।
1: ओके, सॉरी सर, सॉरी, यू आर राइट। आप तो बिल्कुल डॉक्टर के साथ साथ एक हीरो, साइड हीरो और कैरेक्टर का रोल भी कर सकते हैं, यानी 4-in-1।
0: और एक विलेन भी लग रहा है लिली।
1: यस डॉक्टर, यस। लेकिन आजकल तो फिल्मों में कोई कोई विलेन तो हीरो से भी ज्यादा पेमेंट लेता है।
0: पॉइंट टू बी नोटेड, थैंक यू लिली।
1: डॉक्टर आज सुनिए ना, लगता है कोई शिकार यानी मेरा मतलब पेशेंट आया है। आप बैठिए ना अपने सिंहासन पर।
0: यस लिली, उसे पेश किया जाए।
1: ओके,
0: अब हम शिकार करेंगे। मेरा मतलब है उसका वो करेंगे वो क्या होता है वो लिली?
1: ओ डॉक्टर, आपका मतलब उसका डायग्नोसिस करेंगे?
0: यस यस यस लिली, अब हम डायग्नोस करेंगे।
1: अच्छा, तो मैं अभी उस शिकार को लाता है, मेरा मतलब पेशेंट को लाता है।
0: ओके लिली, हुक्म की तावील हो
1: जी।

0: आइए आइए ना।
1: थैंक यू।
0: अपना इस्मे शरीफ बताइए।
1: क्या इस शरीफ? हाँ मैं शरीफ आदमी हूँ। क्या मुझे पुलिस से क्लीयरेंस लेके आना पड़ेगा?
0: ओह नो नो नो, मेरा मतलब आपका शुभ नाम क्या है?
1: ओह अच्छा, आप ये पूछ रही हैं। मुझे चंद्र प्रकाश कपूर कहते हैं। मुझे डॉक्टर मोहिंदर से मिलना है।
0: ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, अब आप उनके डायग्नोस्टिक सेंटर पर हैं और जाहिर है कि आप डॉक्टर महेंद्र से मिलेंगे, पर एक्चुअली फर्स्ट 500 रुपया कंसल्टेशन फी दीजिए।
1: फीस वो एडवांस में?
0: ऑफ कोर्स मिस्टर कपूर, आप जब किसी शादी में जाता है तो शगुन का लिफाफा पकड़ाता है ना।
1: हाँ।
0: इसीलिए फीस भी पहले ही दी जाती है डॉक्टर को।
1: ओके सिस्टर, आपकी बात में लॉजिक तो है। ये लीजिए 500 रुपए।
0: थैंक यू।
1: तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, यह तुम ही संभालो ये दुनिया।
0: थैंक्स मिस्टर कपूर, ये लीजिए फॉर्म, इसे भरकर अपने सिग्नेचर करके दीजिए।

0: sleep, heart nervous.
1: Oh, very serious. Sister, इनका वो
2: यस डॉक्टर, यस इनका डायग्नोस करना है ना?
1: हाँ, यस यस यस, वही सब कुछ करो सिस्टर।
2: ओके ओके डॉक्टर, मैं बस अभी ब्लड प्रेशर की मशीन लाती हूँ। हाथ आगे करो मिस्टर कपूर।
0: क्यों?
2: तुम्हारा ब्लड प्रेशर देखने का।
0: अच्छा, ये लीजिए।
2: गुड
1: सिस्टर, check temperature also.
2: Oh, okay, doctor. Okay, yes. I will immediately do. ये लीजिए थर्मामीटर, मुंह खोलिए। निकाल दिया।
1: Let me check. Close your eyes. हार्ट भी ठीक है, बीपी भी ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है। Now you can open your eyes, Mr. Kapoor. Now. Tell me, what do you do when you are in tension?
0: I go to devotional places, doctor.
1: Good, good. You go for prayer. Smart boy. What is your problem, Mr. Kampfer?
0: Doctor, I don't get sleep in the night.
1: What is your profession?
0: I am a storyteller.
2: Oh, आप कहानी सुनाता, ये तो बड़ा अच्छा profession है।
0: Thank you, sister.
1: What type of stories you tell?
0: I tell Hindi stories. So no story in English, only Hindi.
2: Okay.
1: It's interesting.
0: तो doctor, कहानी चार प्रकार की होती है। नंबर एक, short story, एक लाइन की कहानी।
1: You mean सबसे छोटी story? An example?
0: Example. एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी।
2: हाँ, ये कहानी तो हम कभी कभी सुना करते थे।
0: दूसरी टाइप की कहानी होती है पुनर्जन्म की कहानी।
1: अच्छा, ये कैसी कहानी होती है? एग्जाम्पल से बताओ।
0: एग्जाम्पल, ये पति पत्नी की कहानी हो सकती है।
2: कैसे?
0: जैसे पत्नी ने पति को पुकारा, अरे सुनते क्यों नहीं, मर गए क्या? पति, हाँ बोलो क्या बात है, आ गया।
1: पति मर भी गया और वापस भी आ गया।
0: जी,
1: पुनर्जन्म।
0: और तीसरी तरह की कहानी होती है दर्द भरी कहानी। सुनिए ये कहानी। चार दोस्त अमेरिका घूमने गए। वहां बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इन्हें 60वीं मंजिल वाले होटल में 60वीं मंजिल पर कमरा मिला।
1: अच्छा।
0: और सारा दिन शहर घूमने के बाद रात को 8 बजे वापस होटल में आए। ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट में खाना खाया और वापस कमरे में जाने के लिए लिफ्ट पर चढ़े, लेकिन तभी अचानक पावर चली गई, लिफ्ट बंद हो गई और इन चारों को सिक्योरिटी वालों ने लिफ्ट का दरवाजा खोलकर वापस निकाला।
2: थैंक गॉड।
0: और उनको बताया कि लिफ्ट 2 घंटे में ठीक होगी। तब तक यहां इंतजार करें या फिर सीढ़ियों से अपने कमरे में जाएं।
1: अच्छा, तो फिर क्या हुआ?
0: उन्होंने तय किया कि सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और चारों दोस्त मिलकर फैसला करते हैं कि बारी बारी सभी एक एक कहानी सुनाते चलेंगे ताकि थकावट ना हो और अपने कमरे में पहुंच जाएं।
1: गुड आइडिया।
0: तो पहले दोस्त ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई जो उसकी मम्मी उसे सुलाते हुए सुनाती थी।
2: अच्छा।
0: इस कहानी को सुनते सुनते वो लोग 15वीं मंजिल तक पहुंच गए।
2: अरे वाह।
0: फिर दूसरे को कहानी सुनाने को कहा तो उसने कहा, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है, मैं सबके बाद अपनी कहानी सुनाऊंगा, मेरी कहानी सुनकर आप सबकी आंखों में आंसू निकल आएंगे, इसलिए मैं आखिर में अपनी कहानी सुनाऊंगा।
1: अच्छा
2: अच्छा अच्छा।
0: इसी तरह बाकी दो दोस्तों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई और तब तक वो लोग सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते 50वीं मंजिल तक पहुंच चुके थे।
2: ग्रेट।
0: तो तीनों दोस्तों ने दूसरे वाले दोस्त को उसकी दर्द भरी कहानी सुनाने को कहा, तो उसने कहानी सुनाई।
1: क्या सुनाया, क्या सुनाया?
0: चार दोस्त अमेरिका घूमने आए, वहां ऊंची इमारतें हैं, इन लोगों को 60वें मंजिल होटल में 60वीं मंजिल पर कमरा मिला। अगले दिन सारा शहर घूमने के बाद चारों दोस्त रात को 8 बजे होटल पहुंचे। ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट में रात का खाना खाया और जब लिफ्ट में जाने लगे तो लिफ्ट बंद हो गई। पहला दोस्त बोला, अरे ये तो तुम हम लोगों की कहानी बता रहे हो, इसमें दर्द कहां है, इसमें हमें रोना कहां आएगा? तो दूसरा दोस्त बोला, वही तो बता रहा हूं कि बहुत गहरा दर्द होने वाला है क्योंकि हमारे कमरे की चाबी रेस्टोरेंट में रह गई है।
1: ओह
2: माय गॉड।
0: तो तीनों

0: दोस्तों ने उसे बुरा भला कहा और कहा, हम यही रुक रहे हैं और तुम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर चाबी लेकर फिर से सीढ़ियां चढ़कर यहां तक आओ, फिर हम ऊपर चलेंगे। और तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि चाबी नीचे रह गई है?
1: हाँ।
0: इसलिए अब इस दर्दनाक कहानी का अंत तुम पर ही होगा। जाओ चाबी लेकर आओ।
2: अरे ये तो वाकई बहुत दर्दनाक कहानी हो गई उन दोस्तों के लिए।
0: और चौथी और अंतिम कहानी होती है सबसे लंबी कहानी, जिसे सुनने पर सबको नींद आ जाती है।
1: अच्छा तो फिर तुम उस कहानी को सुनकर खुद क्यों नहीं सोते हो?
0: डॉक्टर साहब, यही तो खास बात है इस कहानी की, कि कहानी सुनाने वाले को नींद नहीं आती, क्योंकि सुनाने वाला इस कहानी को पहले से जानता है। ये कहानी केवल सुनने वालों को ही नींद दे सकती है।
2: तुम्हारा मतलब है कि अगर हम ये कहानी सुनेगा तो हम भी सो जाएगा?
0: बिल्कुल, आप भी ये कहानी सुनकर सो जाएंगे। आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसे ये कहानी सुनकर नींद ना आई।
1: तो चलो फिर हमें सुनाओ वो कहानी, फिर देखते हैं तुम्हारी कहानी में कितनी सच्चाई है।
0: तो लीजिए डॉक्टर साहब और सिस्टर, सुनिए ये कहानी और सोने के लिए तैयार हो जाइए।
2: अच्छा चलो सुनाओ ये कहानी, पर हम भी देखते हैं कैसे लोग इसे सुनकर सो जाते हैं।
1: हाँ।
0: ये बड़े पुराने जमाने की कहानी है। एक राजा ने घोषणा की कि मैं कोई महाभारत की कहानी सुनना चाहता हूँ जो सबसे लंबी हो और पूरे 24 घंटे तक कम से कम समाप्त ना हो।
1: ठीक है,
0: जो भी कोई ऐसी कहानी सुनाएगा उसे मैं 1000 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा।
2: ओह माय गॉड।
0: तो कई लोग अपनी अपनी कहानी लेकर आए।
2: हाँ।
0: लेकिन कोई भी इतनी लंबी कहानी सुना नहीं पाया। अंत में एक 12 साल की लड़की आई।
1: हाँ।
0: और राजा से बोली कि मैं इतनी लंबी कहानी सुना सकती हूं जो 10 दिन तक भी समाप्त नहीं होगी।
1: वाओ।
0: तो उसकी बात सुनकर राजा और उसके सभासद उस लड़की का मजाक उड़ाने लगे। तो लड़की ने कहा, मुझे मौका तो दीजिए कहानी सुनाने का।
2: अच्छा तो फिर उसने सुनाई कहानी?
1: बताओ, हम भी सुनना चाहेंगे वो कहानी।
2: हाँ
0: तो जरूर। तो लड़की ने अपनी कहानी शुरू की। महाराज, कुरुक्षेत्र में एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के पास ही एक पानी का तालाब भी था। उस पेड़ पर पक्षी आते थे और जाते थे। पेड़ के नीचे एक सेठ ने उन पक्षियों के लिए 10 बोरी अन्न के दाने रखवा दिए और कहा, अभी कुछ बोरियां अन्न और भी भिजवा देगा। पहली बोरी का मुंह खोल दिया ताकि पक्षी आकर दाना खा सके।
2: अच्छा फिर क्या हुआ?
0: एक पक्षी पीपल के पेड़ से उड़ा, नीचे आया, बोरी से दाना चुगा, तालाब के पानी में डुबकी लगाई और फुर।
1: ये फुर मतलब?
0: फुर मतलब पक्षी उड़ गया।
1: समझा। अच्छा फिर क्या हुआ?
2: हाँ।
0: राजा ने भी लड़की से यही पूछा था। लड़की ने कहा, फिर क्या होना था? दूसरा पक्षी पीपल के पेड़ से नीचे आया, बोरी में से दाना चुगा, तालाब के पानी में डुबकी लगाई और फिर फुर।
2: फिर क्या हुआ?
0: राजा के वजीर ने राजा को कहा, लगता है लड़की आपको मूर्ख बना रही है, मैं इससे बात करता हूं। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। तो वजीर ने उस लड़की से पूछा, पेड़ पर कितने पक्षी हैं? तो लड़की ने कहा, आपने शायद ध्यानपूर्वक नहीं सुना, मैंने क्या कहा था, पीपल के पेड़ पर पक्षी आते थे और जाते थे, तो ये कैसे बताएं कि कितने पक्षी आए और कितने गए?
1: हाँ,
0: मैं आपसे बात कर रही थी तब तक एक और पक्षी नीचे आया, बोरी में से दाना चुगा, तालाब के पानी में डुबकी लगाई और वो भी
1: फुर।
0: और इस तरह दाना खाते और पानी में डुबकी लगाकर फुर होते होते बहुत से पक्षी चले गए। तो राजा ने लड़की से पूछा, अच्छा अभी कितनी बोरी अनाज की समाप्त हो गई? तो लड़की ने फिर कहा, महाराज अभी तो पहली ही बोरी चल रही है, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे कहा था पेड़ के नीचे 10 बोरी अनाज के दाने थे और कुछ बोरियां खुले में भी पेड़ से अलग पड़ी थी।
2: हाँ।
0: जो सेठ ने भिजवाई थी। जब पेड़ के नीचे की पहली बोरी समाप्त होगी तो दूसरी बोरी का मुंह खोलकर पेड़ के नीचे रख दिया जाएगा और ऐसे ही एक के बाद एक बोरी का मुंह खोला जाएगा, फिर एक पक्षी नीचे आएगा, बोरी में से दाना चुगेगा और फुर। वजीर ने पूछा, तुम तो बता रही थी कि दाना चुगने के बाद पक्षी तालाब के पानी में डुबकी लगाने के बाद फुर होता है, तो फिर ये पक्षी बिना तालाब के पानी में डुबकी लगाए कैसे फुर हो गया? तो लड़की ने कहा, हो सकता है उस पक्षी का नहाने का मन नहीं था,

0: या उसे ठंडे पानी से नफरत हो, इसलिए वो केवल दाना खाकर ही हो गया फुर। लो, आपसे बात करते करते चार पांच पक्षी और फुर हो गए। अनगिनत पक्षियों को दाना खाते, तालाब के पानी में डुबकी लगाकर फुर होते देखते राजा और वजीर भी नींद में डूबने लगे। तो वजीर के कहने पर राजा ने 1000 सोने के सिक्के लड़की को दिए और अपने अपने बिस्तर में दुबक गए। अन्य दरबारी भी तब तक सो गए थे। डॉक्टर, सिस्टर, कहानी खत्म हो गई। डॉक्टर, सिस्टर, अरे आप कितनी देर से सो रहे हैं, अभी तो 1/4 कहानी भी समाप्त नहीं हुई। हेलो
1: हेलो, मैं चांदनी बोल रही हूँ जोरबाग से। आप डॉक्टर महेंद्र डायग्नोस्टिक सेंटर से ही डॉक्टर महेंद्र बोल रहे हैं ना?
0: जी, मैं डॉक्टर मोहिंदर डायग्नोस्टिक सेंटर से तो बोल रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर नहीं, मैं चंद्र प्रकाश कपूर बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब तो सो रहे हैं।
1: सवेरे सवेरे ही डॉक्टर सो रहा है, सिस्टर है क्या?
0: नहीं मैडम, सिस्टर भी सो रही है।
1: डायग्नोस्टिक सेंटर आज बंद है क्या, जो सभी लोग दिन में भी सो रहे हैं और एक हम है जो नींद ना आने से परेशान है?
0: नहीं नहीं मैडम, सेंटर खुला है, आप बताइए क्या काम है, मैं डॉक्टर साहब को बता दूंगा।
1: दरअसल मुझे एक प्रॉब्लम है भाई, मुझे रात को नींद नहीं आती है। वैसे मैं भी एक कहानी वाचक हूँ और इतनी अच्छी कहानी सुनाती हूँ कि लोग मेरी कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि औरों को तो मैं कहानी सुनाकर सुला देती हूँ लेकिन खुद नहीं सो पाती हूँ। क्या करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट चाहिए ना मुझे।
0: अरे वाह, मैं भी एक स्टोरी टेलर हूं और मेरी कहानी सुनते हुए भी लोग सो जाते हैं, लेकिन आजकल मेरी कहानी सुनने वाले लोग बहुत कम है, कोई नहीं सुनता। शायद हम दोनों की मंजिल एक ही है और हम दोनों एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं।
1: वाह चंद्र प्रकाश जी, यही है ना आपका नाम, चंद्र?
0: हाँ
1: प्रकाश।
0: हाँ, सही सही।
1: आपके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा।
0: आप मैडम एक काम कीजिए, आप मुझे अपना एड्रेस और फोन नंबर भेज दीजिए तो मैं 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा। चांदनी जी बताया ना नाम आपने?
1: हाँ, हाँ, चांदनी।
0: अरे लगता है डॉक्टर साहब की नींद खुल रही है, 1 मिनट। डॉक्टर साहब, हाँ अरे जाग गए डॉक्टर साहब। फोन है आपके लिए डॉक्टर साहब, कोई पेशेंट होंगे, देखिए।
2: डॉक्टर महेंद्र हियर। Yes, ma'am. Oh, ma'am. We are sending our representative, Mr. Moonlight Camphor. Chandra Prakash Kapoor at your place. And you can pay him ₹500 as a fee. Good day, ma'am. Mr. Camphor, you already know her problem. You go there as our representative and get ₹500 as your fees. Best of luck.
0: Thank you, doctors.
2: Sister, sister, get up. आप बहुत देर से सो रही हैं। देखिए, शायद बाहर कोई पेशेंट आया है।
1: बहुत दिनों बाद इतना अच्छा नींद आया है डॉक्टर। मैं देखती हूँ पेशेंट को। डॉक्टर, वो पहला पेशेंट चंद्र प्रकाश कपूर किधर है?
2: सिस्टर, अब वो हमारा पेशेंट नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है।
1: क्या?
2: और हमने उसे एक असाइनमेंट पर भेजा है।
1: ओह,
2: आई विल टेल यू द डिटेल्स लेटर ऑन, फर्स्ट यू अटेंड द अदर पेशेंट आउटसाइड।
1: ओके डॉक्टर, ओके अभी लाए। आपका नाम?
3: जी प्रवीण वैष्णव।
1: जी प्रवीण वैष्णव।
3: जी नहीं मैडम जी, प्रवीण वैष्णव नहीं, सिर्फ प्रवीण वैष्णव।
1: ओ जी, सिर्फ प्रवीण वैष्णव।
3: ओहो सिस्टर, आपने तो मेरा नाम ही बिगाड़ के रख दिया, पहले प्रवीण वैष्णव से जी प्रवीण वैष्णव और अब जी सिर्फ प्रवीण वैष्णव। लाइए, फॉर्म मैं खुद ही भर देता हूँ।
1: ओके ठीक है, आप ही फॉर्म भर दीजिए ना।
3: नाम प्रवीण वैष्णव।
1: आपको ये कपड़े टेस्ट करवाने के लिए पहनने पड़ेंगे, कोई शिकायत?
3: आपसे ना, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, इतनी सुंदर और अच्छी वली दिखती है आप।
1: नहीं बाबा नहीं, आपको यहाँ लिखना है कि आपको किस रोग के लिए टेस्ट करवाना है।
3: कमजोर नजर, घुटनों में दर्द, ऊंचा सुनता हूँ और भूलने की आदत है।
1: भूलने की आदत कब से?
3: क्या कब से?
1: आदतें।
3: कौन सी आदतें?
1: अरे बाबा ये सब छोड़ो, हाल ही अपने हस्ताक्षर कर दो यहाँ पर, और हाँ फॉर्म मुझे दे दो, साथ ही 500 रुपए भी।
3: 500? 200 में काम नहीं चलेगा।
1: अरे ये कोई दुकानदारी नहीं है यहाँ, यहाँ फिक्स रेट है। और ये लीजिए कपड़े, और कमरे में जाकर दूसरे कपड़े पहन लीजिए।
3: क्यों, मेरे कपड़ों में क्या दिक्कत है? वो गंदे हैं क्या? अभी मैंने कल ही तो खुशबूदार साबुन से धोए हैं।
1: अरे जनाब आपके कपड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, टेस्ट के रिजल्ट में अंतर भी आ सकता है।
3: आए? ऐसा तो कभी नहीं सुना मैंने।
1: सुनोगे कैसे, आप तो ऊंचा सुनते हो ना, आपने खुद फार्म में लिखा है।
3: अरे इतनी इंक्वायरी तो आधार कार्ड में भी नहीं होती, और आपने ये भी लिखा है कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। अरे क्या मुझे ये फॉर्म नोटरी पब्लिक से अटेस्ट भी कराना पड़ेगा?
1: जी नहीं, आप फिलहाल अपने हस्ताक्षर कर दो, बाकी हम देख लेंगे। और हाँ अपने कपड़े खुद संभाल कर रखना, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं होगा।
3: ऐसा क्यों, यहाँ कपड़ों के चोरी होने का कोई खतरा है क्या?
1: आपने बसों में लिखा हुआ देखा है ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी।
3: तुम्हारी बात में लॉजिक तो दिखता है, चलिए लीजिए लीजिए अपना फॉर्म।
1: हाँ।
3: और ये रहे 500, देख लीजिएगा कोई डिस्काउंट का स्कोप हो तो, और हाँ टेस्ट बढ़िया से करिएगा अच्छे से।
1: ओके ओके, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, जाइए कपड़े बदल कर अंदर से जल्दी आइए, डॉक्टर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, सारे टेस्ट वो ही करेंगे।
3: ठीक है आता हूँ।
1: हाँ आइए। अरे वो आ गया है कपड़े बदलने, बस आता ही होगा।
2: दो इसका फॉर्म मुझे दो।
1: ये लीजिए फॉर्म, और ये 500 रुपया
2: मुझे दो। ये सारी डिटेल्स भर दी है ना इसमें?
1: जी
2: ठीक है। हाँ आइए आइए अंदर आइए। वेलकम टू आवर डायग्नोस्टिक सेंटर।
3: डॉक्टर साहब मेरा नाम प्रवीण वैष्णव है, अब इंग्लिश में बोले तो एक्सपर्ट वेजिटेरियन है।
2: वाह वेरी नाइस नेम।
3: इफ यू लाइक यू कीप इट, आई विल टेक सम अदर नेम।
2: गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आई लाइक इट। अब बैठिए, आपके टेस्ट करते हैं हम। मुखलिए अपना। हाँ टंग तो ठीक है। सिस्टर टेम्परेचर देखो इनका।
1: ओके ओके, ये लीजिए अपने टंग के नीचे रखिए। हाँ, आराम से, अब बोलिएगा नहीं।
2: हार्ट बीट भी ठीक है। लाइए दिखाइए मुझे कितना टेम्परेचर है।
1: ये लीजिए डॉक्टर।
2: ठीक है सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है सब। आँख दिखाइए, ठीक है। कान इधर कीजिए अपना। हाँ यहाँ भी सब कुछ ठीक है। एक मिनट आप खड़े हो जाइए। हाँ आपको दिक्कत हो रही है खड़े होने में, बट जी सिस्टर इनके घुटने में प्रॉब्लम लग रही है मुझे। सिस्टर मुझे रिफ्लेक्स हैमर दो। ये तुमने क्या किया, हाथ मार कर रिफ्लेक्स हैमर मुझे ही मार दिया मेरे ऊपर। अब जाइए आपके टेस्ट होगा सारे।
1: सिस्टर
2: वापस भेजा नहीं। मुझे लेकर चलो, किसी डॉक्टर के पास लेकर चलो मुझे।
4: अभी आप सुन रहे थे नाटक डॉक्टर यहाँ खुद बीमार हो गया, जिसके लेखक थे कमल कुमार वर्मा और निर्देशन काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे किशोर सहजानी, माला कुमार, अनुराग अरोरा और अपूर्व गुप्ता।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए आपको जानकारी देते हैं आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे और साथ ही में कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 30वीं किश्त भी जारी करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the

0: Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow. Truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed. India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है. और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं. और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी. और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी. तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है. और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी. और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई. और अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं. तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है. क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है.
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country. We have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information and Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country, in the district and block levels and gram panchayat levels, with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है. और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री

0: आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
1: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni Ki Chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, brethren, we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947. Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है, और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government, which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025. And initially,

0: see the Honourable Prime Minister, so excited to see their Chief Minister, and so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true, and the Honourable Prime Minister getting up from his seat, along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
1: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय, और प्रधानमंत्री जी के साथ
2: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी,
1: और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी,
2: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
1: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए, और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए,
2: और मिठाई रसगुल्ला यानी
1: रसोगुल्ला, और वह बंगाल का जो रसोगुल्ला है

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त

0: का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, more than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting this direct transfer, this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is, on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. Manch par virajman, Rajpal R.N. Ravi ji, yahan ke lokpriya aur urjavan Mukhyamantri, Shubhendu Adhikari ji, anya sabhi mahanubhav, और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं।

साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए, उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज

इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को

पाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया,

आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जनकल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट मानी शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधामोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्री स्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने

पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झारग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार

0: मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

0: साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड की। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हॉकी पर। हॉकी में हम बात करेंगे FIH नेशंस कप इंडिया वर्सेस चिले पर। इसके साथ जानकारी देंगे ISSF जूनियर वर्ल्ड कप पर, दोहा डायमंड लीग पर प्रस्तुत होगी एक रिपोर्ट, और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप स्टेज 2 के बारे में।
1: जी हाँ, तो ये सारी खबरें आज हमारे साथ आप सुन पाएंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं फीफा वर्ल्ड कप में जो आज के जो मैच खेले जाएंगे उसकी प्रीव्यू के बारे में।

0: ह्यूस्टन का एनआरजी स्टेडियम आज एक आकर्षक मैच की मेजबानी करेगा क्योंकि नीदरलैंड और स्वीडन 2026 विश्व कप में आमने सामने होंगे। स्वीडन वर्तमान में ग्रुप एफ में 3 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जिसने टूर्नामेंट के अपने उद्घाटन मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से हराया था। वे तीसरे स्थान पर काबिज नीदरलैंड से 2 अंक आगे हैं, जिसने जापान के साथ दौर से ड्रॉ खेला था। रोनाल्डो कोमैन की टीम ग्रुप एफ में 1 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। इसका मतलब है कि उन पर दबाव है क्योंकि उन्हें स्वीडन की टीम से मुकाबला करना है, जिसने ट्यूनिशिया के खिलाफ अपने टूर्नामेंट के पहले मैच में शानदार खेल दिखाया था। नीदरलैंड्स 25 जून को ट्यूनिशिया के खिलाफ अपना ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेलेगा और अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए 4 पॉइंट काफी हो सकते हैं।
1: जी हाँ, बात करते हैं दूसरे मैच की, जहाँ पे 4 बार के चैंपियन जर्मनी का मुकाबला आयरी कोस्ट के साथ होगा। विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण के दूसरे मैच में सबसे रोमांचक मैचों में से एक 4 बार की चैंपियन जर्मनी का सामना टोरंटो में एक प्रतिभाशाली आयरी कोस्ट टीम से होगा। दोनों टीम ने अपने ग्रुप ई कैंपेन में अलग अलग तरीके से जीत के साथ शुरुआत की। जर्मनी ने कुराकाको में 7-1 से जीत हासिल की, जबकि आयरी कोस्ट ने आखिरी पलों में गोल करके इक्वाडोर को 1-0 से हराया था।
0: अब बढ़ते हैं जापान बनाम ट्यूनिशिया की ओर। जापान ने नीदरलैंड्स के साथ 2-2 से ड्रॉ के शुरुआती मैच में मजबूती दिखाई और दाइशी कामदा और कीटो नाकामुरा के गोल से पीछे होने के बाद 2 बार जवाब दिया। जापान को ट्यूनिशिया की उस टीम का भी सामना करना होगा जो वापसी करना जानती है। स्वीडन से 5-1 की हार के बाद सबरी लामोची के जाने के बाद हर्वे रेनार्ड ने टीम की कमान संभाली है। रेनार्ड के आने से ट्यूनिशिया की टीम में नया आत्मविश्वास आ सकता है। जापान का हालिया इतिहास भी उनके पक्ष में है। हालांकि समुराई ब्लू को 2022 किरीन कप फाइनल में ट्यूनिशिया से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1 साल बाद उन्होंने उत्तरी अफ्रीकी टीम को 2-0 से हराकर जबरदस्त वापसी की।
1: जी हाँ, बात करते हैं अब दिन के अंतिम मैच की, जिसमें इक्वाडोर का सामना होगा कुराकाको से। इक्वाडोर को पहले गेम में निराशाजनक हार मिली। दोनों टीमों इस गेम में 1-1 हार के साथ आ रही है और जो भी हारेगा उसे नॉकआउट स्टेज में पहुंचने का चांस बहुत कम होगा। माइसेस केसडो, पियरे हिनकेम्पी और विलियम पाचो जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर और जाने माने नामों के साथ सिर्फ इक्वाडोर के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के फैंस उन्हें खेलते हुए देखने के लिए उत्साहित है। इक्वाडोर को कुराकाको के खिलाफ ज्यादा स्कोर करने होंगे और जर्मनी के खिलाफ अपने तीसरे मैच से कुछ हासिल करने की कोशिश करनी होगी। हालांकि उनको बहुत अटैकिंग गेम खेलना होगा। दूसरी ओर कुराकाको जर्मनी के खिलाफ मिले नतीजे को पीछे छोड़कर इस मैच में दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी, क्योंकि कुराकाको के पास इस वर्ल्ड कप में खोने के लिए कुछ नहीं है, बस पाने को ही है।
0: अब इसके साथ जानकारी लेते हैं कल हुए मुकाबलों में क्या हुआ। कल हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर 2-0 की आसान जीत के बाद अमेरिका सह मेजबान मैक्सिको के बाद फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट चरणों में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन गई। मॉरिशियो पोचेटिनो की टीम ने लगातार 2 मैच जीतकर 1 मैच शेष रहते हुए क्वालिफाई कर लिया और 1929 के बाद विश्व कप में लगातार 2 जीत दर्ज की। पैराग्वे पर 4-1 की शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने के बाद सह मेजबान टीम ने उत्साहित घरेलू दर्शकों के सामने एक और विश्वासपूर्ण प्रदर्शन किया। कैमरून बर्गेस के अपनी ही टीम के खिलाफ लिए गए गोल और एलेक्स फ्रीमैन के वीएआर द्वारा किए गए हेडर गोल ने अमेरिकी टीम को राउंड ऑफ 32 में पहुंचने के लिए पर्याप्त साबित हुए और घरेलू मैदान पर उनकी बढ़ती साख को रेखांकित किया। इस परिणाम के बाद अमेरिका ग्रुप डी में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 3 अंकों पर बना हुआ है और अब उसे क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को जीवित रखने के लिए पैराग्वे के खिलाफ सकारात्मक परिणाम की आवश्यकता होगी।
1: जी हाँ, बात करते हैं कल के दूसरे मुकाबले के, जिसमें तुर्की का मुकाबला था पराग्वे के साथ। तुर्की का वर्ल्ड कप कैंपेन बहुत ही निराशाजनक तरीके से खत्म हुआ, जहां

0: उन्हें ग्रुप डी के मैच में ज्यादातर समय हावी रहने के बावजूद पराग्वे से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। मैच शुरू होने के सिर्फ 64 सेकंड में मैटियास गलेडजा का शुरुआती गोल पराग्वे के लिए अहम साबित हुआ और उनकी क्वालिफिकेशन की उम्मीदें जिंदा रही। तुर्की के लिए यह जानी मानी समस्या का एक निराशाजनक दोहराव था। उन्होंने मौके बनाए, कब्जा कंट्रोल किया, ज्यादातर गेम में फ्रंट फुट पर, लेकिन एक बार फिर से मौके को गोल में बदलने में नाकामयाब रहे। दूसरे हाफ में पराग्वे का काम और भी मुश्किल हो गया जब मेगुएल एल्यूरन को रेड कार्ड दिखाया। पूरे मैच में पराग्वे को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा, फिर भी तुर्की गोल करने में सफल नहीं रही। यह हार तुर्की की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती हार की तरह थी और एक और ऐसा मैच जिससे उन्होंने कई मौके बनाए लेकिन उन्हें भुनाने में असफल रहे।
1: अब चलते हैं ब्राजील बनाम हैती के मुकाबले की ओर। ब्राजील ने एक आसान जीत हासिल की जिससे हैती की अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई। इस जीत के बाद ब्राजील गोल अंतर के आधार पर ग्रुप सी में मोरक्को से आगे निकल गया। इससे 20 मिनट से अधिक का समय लगा, लेकिन एक बार जब उन्होंने लय पकड़ ली तो 5 बार के चैंपियन को रोकना असंभव हो गया। विनिसियस जूनियर ने एक ऐसा शॉट लगाया जिससे जॉनी प्लासिड पकड़ नहीं पाए और इस तरह पहला गोल संभव हुआ। मैथियस कुना सही समय पर सही जगह पर मौजूद थे और उन्होंने नजदीकी रेंज से आसानी से गोल दाग दिया। महज 13 मिनट बाद वही तालमेल सेलेकाओ को फिर से फायदा पहुंचाने में कामयाब रहा। मिडफील्ड में गेंद पर कब्जा करने के बाद विनिसियस जूनियर ने कुन्हा को पास दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड ने गेंद को ऊपरी कोने में मारकर ब्राजील की बढ़त को 2 गुना कर दिया। दक्षिण अमेरिकी टीम ने पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में 3रा गोल दागा। विनी जूनियर ने प्ले मेकर से गोलकीपर की भूमिका निभाई। लुकास पेक्टा के पास को नियंत्रित करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे प्लासिड के नीचे से गेंद को गोल में डाल दिया। दूसरे हाफ में सेलेकाओ ने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा और अधिक गोल करने के अवसर तलाशे। दूसरे हाफ में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए गैब्रियल मार्टिनेली ने एक शानदार गोल को क्रॉसबार ने रोक दिया और एंड्रिक ने गोल दागा, लेकिन सहायक रेफरी के झंडे के कारण उनका जश्न अधूरा रह गया। टूर्नामेंट में अपना खाता खोलने के लिए हैती ने जमकर संघर्ष किया, लेकिन एलिसन को हरा नहीं सका। इस हार के साथ कैरेबियन देश का 1974 के बाद फीफा विश्व कप में पहला सफर 24 जून को मोरक्को के खिलाफ उनके मैच के बाद समाप्त हो जाएगा। उसी दिन मियामी में ब्राजील का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा।
0: अब बात करते हैं कल के एक और मुकाबले की, जहां वेस्टर्न स्टेडियम में मोरक्को ने स्कॉटलैंड पर शुरुआती बढ़त हासिल की, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अटलांस लायंस का एकमात्र गोल इस्माइल सैबरी के सौजन्य से आया, जो स्कॉटिश रक्षा पंक्ति को पार करते हुए आगे बढ़े, ब्राहिम डियाज के सटीक पास को नियंत्रित किया और गेंद को एंजस गन को पछाड़ते हुए नेट के ऊपरी हिस्से में पहुंचा दिया। सैबरी का फिनिश रिकॉर्ड तोड़ था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक का सबसे तेज फिनिश और वैश्विक प्रतियोगिता में मोरक्को का अब तक का सबसे तेज फिनिश। इस जीत के साथ मोरक्को 4 अंक लेकर ग्रुप सी में शीर्ष पे पहुंच गया।
1: तो श्रोताओं, अब रुख करते हैं क्रिकेट की ओर।
0: जी हाँ, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट की बात कर रहे हैं। कल खेले गए सबसे पहले मुकाबले की बात करना चाहेंगे। कल का मुकाबला न्यूजीलैंड का मुकाबला आयरलैंड के साथ था। जैसा आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन है। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड को 4 रन से हरा करके महिला टी20 विश्व कप का खिताब बचाने की थोड़ी सी उम्मीद जिंदा रखी है। इससे पहले खेले गए दोनों मैच में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था, जब न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका और वेस्टइंडीज से हार गई थी। पिछले दोनों मैच में न्यूजीलैंड की प्रदर्शन की बात किया जाए, अभिषेक, तो उसकी फील्डिंग बहुत ही खराब रही थी और न्यूजीलैंड की स्थिति इतनी खराब थी कि 10 रन पे उसके 3 विकेट आउट हो गए थे। लेकिन न्यूजीलैंड के उसकी वजह से सोजी बेट, जो न्यूजीलैंड की एक बेहतरीन बल्लेबाज मानी जाती है, उन्होंने आखिरी बॉल पे छक्के लगाए, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम 140 रन 6 विकेट के नुकसान पे बनाने में सफल रही। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज बी एलिंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 विकेट लिया। उन्होंने 18 रन देकर के 1 विकेट हासिल किया, लेकिन आयरलैंड के कप्तान गेबी लुइस और ऑर्ली पेंटन ने उनका और जो जेस केयर के साथ साथ देते हुए 18वें ओवर तक 110 रनों की भागीदारी की। उन्होंने आयरलैंड को 19 रन से हार के बाद ऐतिहासिक पहली विश्व कप जीत के करीब पहुंच गया था, लेकिन पेंडर्स गार्ड 59 रन बनाकर बाउंड्री के पास कैच आउट हो गए। हालांकि लुइस अगले और 19वें ओवर तक 58 रन बनाकर क्रीज पर बनी रही, जब उन्होंने कवर पर बैट्स को कैच दे बैठा। इसके बाद आयरलैंड को जीत के लिए आखिरी ओवर में 15 रन की जरूरत थी, लेकिन बेट्स ने केवल 10 रन दिए और आयरलैंड को 136 रन पर 4 विकेट पर रोक दिया।
1: इसके साथ ही अभी मुकाबला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड पर। आलोक, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: जी, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का मुकाबला चल रहा है। इस समय नीदरलैंड की जो स्थिति है, 80 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही बड़ा स्कोर बनाया है। क्या कितने रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने? 200 से अधिक रन उन्होंने।
1: 219 रन 6 विकेटों पर। और इस वक्त की अगर स्थिति पर बात करें तो नीदरलैंड को 46 गेंदों में 140 रन चाहिए, जो कहीं ना कहीं थोड़े मुश्किल। अगर कोई करिश्मा हो जाए, अगर स्टेर कैलिस और बेबेते दे लीड्स की टीम, मतलब उनकी जोड़ी जम जाए और कुछ करिश्मा हो जाए, तो ये मुकाबला वो अभी भी जीत सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक ये मुकाबला अभी ऑस्ट्रेलिया के पाले में दिख रहा है।
0: जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मजबूत टीम मानी जाती है अगर वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो। और नेदरलैंड के लिए भी एक मौका है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा वो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, और देखना है कि कहां तक पहुंच पाती है नेदरलैंड की टीम।
1: ठीक, वहीं बात करते हैं अगर प्रीव्यू पे, तो पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तान महिला और बांग्लादेश महिला टीमों के बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, जिसमें दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत करने की कोशिश करेंगी। दक्षिण अफ्रीका से मामूली अंतर से हारने के बावजूद पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया से मिली करारी हार के बाद नीदरलैंड्स पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करते हुए जोरदार वापसी की। इस मुकाबले के कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। लोग क्या कहते हैं आप, सेमीफाइनल का टिकट है एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश?
0: जी बिल्कुल, अब देखना है कि किस तरह का प्रदर्शन करती है। पाकिस्तान भी आप बात करेंगे तो भारत के साथ पहले मुकाबले में उनकी हार हुई थी, वही बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कारी हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना है कि ये जो मैच है कहां पहुंचती है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है। अब बात करते हैं कल के खेले गए एक और मैच है आज, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। उस मैच की बात करें तो इंग्लिश महिला टीम का सामना स्कॉटलैंड महिला टीम से होगा, जो पूरी तरह से ब्रिटिश टीमों का मुकाबला है। चोटिल कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने ना होने के बावजूद इंग्लैंड आत्मविश्वास से भरी हुई, वही स्कॉटलैंड टूर्नामेंट में अपनी ऐतिहासिक पहली महिला टी20 विश्व कप जीत से उत्साहित होगी। इंग्लैंड अभी भी जीत की प्रबल दावेदार है, लेकिन स्कॉटलैंड ने भी मुकाबले को टक्कर बनाने के लिए पर्याप्त जुझारूपन दिखाया है।
1: वहीं अगर बात करें भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच तीसरा ओडीआई खेला जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान की टीम,
0: जी ये जो भारत और अफगानिस्तान की मैच की आप बात कर रहे हैं, ये तीसरा एक दिवसीय मैच है भारत और अफगानिस्तान के बीच, और ये 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है। और अफगानिस्तान की टीम ने 218 रन बनाए हैं 44.2 ओवर में, और भारत को जीत के लिए 219 रन। इससे पहले खेले गए दोनों ही ओडीआई मैच में भारत ने जीत दर्ज की थी, तो देखना है कि भारत क्या क्लीन स्वीप कर पाती है कि नहीं। हालांकि अफगानिस्तान की बैटिंग को देखा जाए तो उसकी तरफ से शहीदी ने 102 रन बनाए 131 गेंद पर, 13 चौका 1 छक्का लगा, जबकि उमर जाई ने 50 रन बनाए 56 गेंदों पर, 5 चौका 2 छक्का लगाए उन्होंने अपने अपने इस पारी में। जबकि भारत की तरफ से बात किया जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.2 ओवर में 2 मेडन तकते हुए 23 रन देकर के 5 विकेट हासिल किए।
1: हाँ, पंजा कह सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के पंजे में फंस गई है अफगानिस्तान की पूरी टीम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और हालांकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अगर बात किया जाए तो। और जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम खास करके कप्तान शुभम गिल जिस तरह से प्रदर्शन करते आ रहे हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, तो ये टारगेट जो है शायद भारतीय क्रिकेट टीम अच्छे से अचीव कर सकती है।

0: अब रुक करते हैं एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप की ओर, जो दिल्ली में जिसका आयोजन हो रहा है भारत मंडपम पर। इसमें पेश है हमारे सहयोगी अजय।
1: हमारे सहयोगी अजय सिंह की ये खास रिपोर्ट।
2: एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप्स 2026 के दूसरे दिन आज कई बड़े सितारे मैदान में उतरे और इसमें सबसे बड़ा नाम था भवानी का, जो ओलंपियन है और फेंसिंग में एक बहुत बड़ा नाम मानी जाती है। उनका रैंक है 23, सेबर वुमेन इंडिविजुअल में उन्होंने भाग लिया। बहुत अच्छी फेंसिंग उन्होंने आज की, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भाग्य के साथ उन्हें नहीं मिला और वो कोरियाई प्रतिद्वंदी से 15-14 यानी कि केवल 1 पॉइंट से वो हार गई। और ये बहुत अच्छा खेली थी भवानी, क्योंकि 14 पॉइंट भवानी ले चुकी थी लेकिन कोरियाई प्रतिद्वंदी 15 पॉइंट पहले करके इस मुकाबले को जीत गई। वहीं दूसरी ओर श्रेया गुप्ता, उसके अलावा जे जानी और श्रुति जोशी, ये खिलाड़ी भी मैदान में थी लेकिन राउंड ऑफ 32 के आगे कोई भी भारतीय फेंसर नहीं जा पाया। वहीं दूसरी ओर मेंस एपी टीम में राजेंद्रन ने अपनी शुरुआत की लेकिन वो भी राउंड ऑफ 32 के आगे नहीं पहुंच पाए। शांति मौली श्रीजिन, वो भी राउंड ऑफ 32 तक ही पहुंच सके। इसके अलावा ए कोवक्कल, वो भी राउंड ऑफ 32 तक पहुंचे और बेनेट जोसेफ का सफर भी राउंड ऑफ 32 पर ही खत्म हुआ। तो कुल मिलाकर कोई भी भारतीय फेंसर राउंड ऑफ 32 से आगे नहीं पहुंचे। हमने बात की फेंसिंग की उभरती हुई खिलाड़ी श्रेया गुप्ता से।
3: श्रेया, आकाशवाणी पर आपका स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच सर।
3: श्रेया, कैसा रहा टूर्नामेंट?
4: ये टूर्नामेंट मिक्स्ड ऑफ इमोशंस था। आज जैसे मैं टेबल ऑफ 32 में हारी तो मुझे बहुत अच्छा लगा खेल के, क्योंकि हम जितने भी एशिया के बेस्ट फेंसेज हैं उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं। और सेम टाइम पे मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं

0: और मेहनत करूं और अगली बार अपने देश के लिए मेडल लाऊं।
1: शीला, कुछ समय से फेंसिंग बहुत पॉपुलर हुई है, अब लोग जानने लगे हैं फेंसिंग को, पहले काफ़ी कम लोग जानते थे। बहुत पुराना है भारत में तो परंपरा रही है तलवारबाजी की, लेकिन अब जब वो एज ए स्पोर्ट्स के रूप में प्रमोट हो रहा है तो कितनी चीज़ें आप देखते हैं कि अच्छी हो रही हैं या और होनी बाकी हैं?
0: अभी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हम 10 साल पहले देखेंगे तो उतने लोग नहीं खेलते थे, बट अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। और जैसा कि फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडिया में एशियन चैम्पियनशिप होस्ट किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी ऑडियंस हैं उनको भी पता चलेगा कि बाकी गेम्स के अलावा भी फेंसिंग भी है जो कि खेली जा रही है इंडिया में, और लोगों को अवेयरनेस आएगी कि अपने ही देश में एशियन चैम्पियनशिप जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है।
2: के बाद हमने बात की करण सिंह से, जो फेंसिंग में एक बड़ा नाम माने जाते हैं और पिछली बार ओलंपिक क्वालिफाई करने से बस जरा सा ही चूक गए थे। उन्होंने क्या बताया फेंसिंग के बारे में, आइए सुनते हैं।
1: दोस्तों, आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान, फेंसिंग के सुपरस्टार करण सिंह। करण, कैसी रही अभी तक चैंपियनशिप?
3: सर, अभी मेरा इंडिविजुअल इवेंट हो गया कल, इंडिविजुअल इवेंट ठीक था। मैं 32 में हारा हूँ जो अपने कोरिया के ओलंपिक चैंपियन हैं उनसे 11-15 से। मैं खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, बट पार्ट ऑफ गेम। अभी कंपटीशन ख़त्म हो गया, बट मैं अभी रेडी हूँ अपने टीम कंपटीशन के लिए, 22 को है, सो टीम के साथ रेडी हैं एंड आई विल गिव माय बेस्ट टू इन टीम कंपटीशन।
1: करंट, जिस तरह से आपने बताया कि राउंड ऑफ 32 में आप हारे, वहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो कई सारे आप मैचेस खेल के राउंड ऑफ 32 तक पहुँचते हैं, उसके बाद तो बस एक दो मुकाबले होते हैं, उसके बाद आप बहुत आगे पहुँच जाते हैं और आप हारे उस प्लेयर से जो एक बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है फेंसिंग में। तो जब आप उसके साथ खेल रहे थे और आपने स्कोर भी अच्छा बना लिया था, तो कहीं ना कहीं ये था कि आज मुझे इसको हराना है?
3: हाँ सर, मन में तो चल ही रहा होता है, या मतलब मैच से पहले भी मन में ऐसा था कि क्योंकि मैं उसके साथ ऑलरेडी 3 या 4 बार खेल चुका हूँ, एक बारी मैं उससे जीता हूँ, बाकी 3 बारी मैंने उससे लॉसेस लिए हैं, बट वो बहुत ही क्लोज मैचेस थे मेरे आज तक, 13-15, 14-15। तो मुझे ये था कि इंडिया में हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मेरे सपोर्ट में हैं, लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे, तो मुझे ये था कि हाँ कहीं ना कहीं आज मैं ये बाउट जीतूँगा और मुझे ये बाउट जीतना है। एज ए फेंसर वो भी काफ़ी बड़ा नाम है, अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके नाम पे, बट वो भी एक फेंसर है, मैं भी एक फेंसर हूँ, तो मेरे मन में तो यही था कि मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है और मैच जीतना है, बट कुछ चीज़ें मेरे फेवर में नहीं थी तो शायद मैं वो मैच हार गया, बट अभी कोच के साथ उस पर काम करेंगे और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है, उन पर काम करेंगे।
2: दिल्ली के भारत मंडपम से मैं अजय तोमर, आकाशवाणी के लिए।
4: अब सुनते हैं फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी राजीव मेहता के साथ हुई हमारे सहयोगी शाहिद आजमी की विशेष बातचीत।
5: क्या खास है, पहली बार भारत आयोजन कर रहा है एशियन चैंपियनशिप की, क्या कुछ खास अगले 5 दिन तक हम देखेंगे?
6: देखिए, आपको अच्छा लगेगा जब आप 5 दिन कवर करेंगे फेंसिंग। ये लेटेस्ट सिस्टम है जो हमारा यहाँ हमने अडॉप्ट किया है, चाहे हमारा कैमरा हो, चाहे GPRS सिस्टम हो, चाहे दूसरे सिस्टम हो, जो जितने हमने सिस्टम अडॉप्ट किए हैं सब लेटेस्ट सिस्टम है, और दूसरे लोग भी जो आ रहे हैं वो भी इसको देख रहे हैं, तो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर द फेडरेशन ऑल्सो।
5: कितने बड़े प्लेयर्स को, कितने देशों को लाने में कामयाब रहे, और क्या जो पिछले एशियन चैम्पियनशिप है उससे क्या अलग?
6: देखिए, पिछली चैम्पियनशिप जो अब यहाँ कराई थी हमने, वो एक हल्द्वानी कराई थी, एक दिल्ली में कराई थी, तो उसमें एक्सपोजर कम था और खिलाड़ी कम आए थे, इस पर फुल स्विंग में खिलाड़ी आए हैं और उनके नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा कंपटीशन होगा, और मैं सोचता हूँ होपफुली 24 तारीख तक हमें अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे।
5: पिछले मैंने नेशन चैम्पियनशिप देखी थी, यहाँ एशियन चैम्पियनशिप देख रहा हूँ, भारत में युवा पौध काफ़ी दिख रही है, बच्चों में उत्साह मैंने देखा, काफ़ी बच्चे जो थे घूम रहे थे फेंसर, तो क्या नई पौध कैसी आ रही, क्या भविष्य लग रहा है?
6: बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, तभी मैंने कहा कि आपको बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट यहाँ मिलेंगे इंडियन टीम की तरफ से।
5: कितने पदक यहाँ मिलेंगे, कितने बच्चे पोडियम
6: पे? 3 या 4 पदक यहाँ इस बार आएंगे।
5: सबसे अहम सवाल, आखिरी सवाल, एशियन गेम्स करीब है, इसका कितना बेनिफिट मिलेगा और कितना चांस वहाँ पर पदक का कैसे
6: देखें? बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा जो अभी ये लोग बच्चे खेल रहे हैं, और इनको ये इसके रिजल्ट के बाद जब एशियन गेम में जाएंगे कंपटीशन में, इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा और अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा वहाँ पे भी।
7: जी आप बात करते हैं एथलेटिक्स से, एथलेटिक्स से कर...

0: अच्छी खबर है, भारतीय टीम ने एशियन रिले 4x100 मीटर मिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत की टिगरी प्रणव गुरव, तमन्ना अनिमेश खजूर, स्नेहा एसएस ने मिक्स 4x100 मीटर में चौकरी ने 41.47 सेकेंड का समय निकाल करके एशियन मिक्स रिले टीम में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा बात करते हैं हॉकी की, FIH नेशंस कप में, जिसमें भारतीय टीम ने आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नॉर्थ हार्बर नेशनल हॉकी सेंटर में सेमीफाइनल में चिली को एकतरफा मुकाबले में 6-0 से हरा करके FIH महिला नेशंस कप 2025-26 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नवनीत कौर ने भारत की तरफ से 2 गोल किए, उसने 6 मिनट में और 13 मिनट में गोल किया, जबकि दीपिका ने 14 मिनट में और 18 मिनट में 2-2 गोल किए, जबकि नेहा 32वें और ऋतुजा पिशल ने 36वें मिनट में भारत के लिए गोल किए। विश्व रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम की बात किया जाए तो 9वें स्थान पर है। भारतीय कप्तान सलीमा टेटो को उनके हर फॉर्मूला खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत का सामना रविवार को FIH नेशंस कप फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड से होगा। आज न्यूजीलैंड ने अमेरिका को हराया था, तो अब देखना है कि भारतीय टीम कल होने वाले इस मैच में किस तरह का प्रदर्शन करती है। मैच कल भारतीय समय अनुसार दोपहर के 12 बजे शुरू होगा।
1: धन्यवाद आलोक। अब आगे बढ़ते हैं शतरंज की ओर। हांगकांग में आयोजित फिडे विश्व रैपिड टीम्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में भारतीय टीम MZD1 खिताब बचाने से बेहद करीब पहुंचकर चूक गई। टीम को उपविजेता रहकर संतोष करना पड़ा। अर्जुन एरिगेसी की अगुवाई वाली टीम MZD1 ने 12 राउंड के बाद 18 अंक जुटाए। दिलचस्प बात यह रही कि चीन की ड्रैगन चिलिंग और हिंग्स माइंड चेस टीम ने भी 18-18 अंक हासिल किए। ऐसे में विजेता का फैसला टाई ब्रेक के आधार पर हुआ। ड्रैगन चिलिंग ने बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के दम पर पहली बार खिताब अपने नाम किया, जबकि MZD1 दूसरे स्थान पर रही। अंतिम टीम MZD1 को हेक्सा माइंड के खिलाफ 3.5-2.5 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे खिताबी दौड़ को और रोमांचक बना दिया। हालांकि इसके बाद टीम ने शानदार वापसी करते हुए भारतीय टीम चेस गुरुकुल को हराया। फिर Endgame.ai के खिलाफ मुकाबले में अर्जुन एरिगेसी और निहाल सरीन ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आखिरी दौर में MZD1 ने कजाकिस्तान के बारिश टीम को 5-1 से हराकर खिताब की उम्मीदें जिंदा रखी, लेकिन चीन की ड्रैगन चिलिन ने भी इंटरस्टेलर क्लब को उसी अंतर से हराकर अंक तालिका में बराबरी कर ली और बेहतर टाई ब्रेक के कारण चैंपियन बन गई। व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो चेस गुरुकुल के आर प्रज्ञानंद ने शीर्ष बोर्ड पर शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक जीता। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजद को रजत और भारत के अर्जुन एरिगेसी को कांस्य पदक मिला। MZD1 के निहाल सरीन ने बोर्ड नंबर 2 पर कांस्य पदक जीता, जबकि अरविंद चिदम्बरम ने बोर्ड नंबर 3 पर कांस्य हासिल किया। लियोन ल्यूक मेंडोंसा ने लगातार दूसरे वर्ष बोर्ड नंबर 5 पर स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। वहीं टूर्नामेंट की सबसे चर्चित टीमों में शामिल WR चेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। मैग्नस कार्लसन, फेबियानो कारुआना और वेस्ली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से सजी ये टीम 5 मुकाबले हारकर 18वें स्थान पर रही।
0: जी, अब बात करते हैं अगली खबर की, बैडमिंटन की। मकाऊ ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में भारत की अस्मिता चलिहा का शानदार सफर खत्म हो गया। दुनिया में 63वें नंबर की खिलाड़ी अस्मिता को सेमीफाइनल मैच में दुनिया की 61वें नंबर की खिलाड़ी पार्क गा यून से हार का सामना करना पड़ा। यह मैच सिर्फ 38 मिनट तक चला, स्कोर रहा 21-17, 21-9 का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टूर्नामेंट में अस्मिता अच्छा प्रदर्शन करेगी।
1: अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं दोहा डायमंड लीग की ओर। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने चोट के बाद मैदान पर वापसी की है। हालांकि दोहा डायमंड लीग मीट वह अपने नाम नहीं कर सके। कल हुए इस मुकाबले में नीरज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 85.69 मीटर रहा। ये उनका इस सीजन का पहला मुकाबला था। पिछले साल सितंबर में टोक्यो विश्व चैंपियनशिप के दौरान उन्हें पीठ में चोट लग गई थी। इसके बाद वे कई महीनों तक प्रतियोगिता से दूर रहे। इलाज और अभ्यास के बाद उन्होंने अब फिर से मैदान पर वापसी की है। मुकाबले की शुरुआत नीरज के लिए अच्छी नहीं रही। उनका पहला प्रयास फाउल रहा, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने 82.77 मीटर दूर भाला फेंका। इस थ्रो के साथ उन्होंने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए तय क्वालिफाइंग दूरी भी पार कर ली। तीसरे प्रयास में नीरज ने और बेहतर प्रदर्शन किया और 85.69 मीटर का थ्रो किया। इस समय तक वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे, लेकिन मुकाबले का रोमांच अभी बाकी था। श्रीलंका के युवा खिलाड़ी रुमेश थरंगापथिराज ने चौथे प्रयास में 88.68 मीटर का शानदार थ्रो कर सभी को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद नीरज चौथे स्थान पर खिसक गए। इसके साथ ही पथिराज ने प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.38 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन ने 85.9

0: मीटर का थ्रो कर तीसरा स्थान हासिल किया। हालांकि नीरज इस बार चैंपियनशिप अपने नाम नहीं कर सके, लेकिन चोट के बाद उनकी वापसी उम्मीद जगाने वाली है। इसी दोहा डायमंड लीग मीट में पिछले वर्ष नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, जहां उन्होंने पहली बार 90 मीटर का बैरियर पार करते हुए 90.23 मीटर का थ्रो किया था। अच्छी बात ये भी है कि उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जरूरी दूरी पार कर ली है। अब खेल प्रेमियों की नजरें राष्ट्रमंडल खेलों पर होंगी, जहां नीरज चोपड़ा से एक बार फिर बड़े प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।
1: जी आप बात करते हैं बॉक्सिंग की ओर।
0: दीपक पुनिया ने पुरुषों के 70 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंचने के लिए यूरोपियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मकान त्रको को 5-0 यूडी से हराया। ज्योति ने महिलाओं के 48 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंचने के लिए फातिमा हेरर को 3-2 से हराया। तो साथियों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी अभिषेक कपिल को मेरे सहयोगी
1: चंद्र आलोक के साथ
0: और हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत।
2: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में 3रे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government in the presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship. Addressing the public gathering, Prime Minister Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.
1: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, the Prime Minister arrived in West Bengal for a two-day visit. He took part in Paschim Bongo Divas celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi participated in a grand function to celebrate the State Day. Along with Chief Minister Shubhendu Adhikari, he launched, dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. The Prime Minister will commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata tomorrow, designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers. The vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur of worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said the Sri Ambabai Temple, located in the historic city of Karvir, is a major centre of faith for devotees.

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा आयोजित कार्यक्रम और पुस्तक लोकार्पण। 15 जून सोमवार को राष्ट्रीय मीडिया सेंटर सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में आयुष मंत्रालय द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के बारे में संवाददाताओं को बताया।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। यह विषय वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक को संबोधित करता है। बढ़ती आयु के साथ स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से सशक्त जीवन जीने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के समन्वय से विश्व भर में भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों द्वारा लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये यही दर्शाता है कि योग आज भारत की सांस्कृतिक विरासत से आगे बढ़कर संपूर्ण विश्व के साझा स्वास्थ्य आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। इसी क्रम में मुझे यह घोषणा करते हुए भी अत्यंत खुशी हो रही है कि 14 जून को मुख्य आयोजन के पूर्व आयोजित एक विशेष योग कार्यक्रम में 4,00,000 से अधिक लोगों ने एक साथ लाइव योग सत्र में भाग लेकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत में योग के प्रति जन भागीदारी किस प्रकार निरंतर नए आयाम स्थापित कर रही है। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी। साथियों, IDY 2026 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक राजधानी कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इससे पहले IDY 2026 की तैयारी के अंतर्गत देश भर में विभिन्न काउंटडाउन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक भी आयोजित किए गए हैं। नई दिल्ली में 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम हुआ, महाराष्ट्र के लोनार में 75 दिवसीय कार्यक्रम, हैदराबाद के कान्ना शांतिवनम में 50 दिवसीय आयोजन तथा खजुराहो में

0: 25 दिवसीय काउंटडाउन ने देश भर में योग के प्रति अभूतपूर्व उत्साह पैदा किया है। इसी क्रम में 13 जून से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर गंगा तट योग यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। गंगोत्री, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, हुगली और गंगा सागर तक यह विशेष अभियान योग पर्यावरण संरक्षण, नदी संस्कृति और जन भागीदारी को एक सूत्र में जोड़ने का काम करेगा। कोलकाता में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोलकाता में आम नागरिकों को मुख्य आयोजन से जोड़ने और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष योग कार्निवल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आकर्षक ड्रोन शो तथा हुगली नदी पर 500 नौकाओं पर सामूहिक योग प्रदर्शन जैसे विशेष आयोजन भी किए जा रहे हैं। मैं सभी नागरिकों से यह आग्रह करता हूं कि यदि आप घर से इस आयोजन में जुड़ रहे हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग करते हुए अपनी एक सेल्फी ले, उसे सोशल मीडिया पर साझा करें और पूरे विश्व को यह संदेश दे कि भारत योग को केवल अपनाता ही नहीं बल्कि उसे जन जन का उत्सव बनाता है।
1: 15 जून सोमवार को वरिष्ठ राजनीतिज्ञ बापू देवदास आप्टे के 92वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके प्रेरक जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित पुस्तक देवदास आप्टे बापू भारत एक अनकही कहानी का लोकार्पण पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ राजनीतिज्ञ डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी द्वारा किया गया। इस आयोजन में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा,
2: इस अवसर पर जो उनका जीवन वृत्त प्रकाशित हो रहा है पुस्तक के विमोचन के इस अवसर पर, ये आशा करता हूँ तो आप पढ़ेंगे ऐसी जीवनी है जिसका अधिक से अधिक लोगों तक प्रसार होना चाहिए।
1: इस पुस्तक के लिए राजीव श्रीवास्तव ने आवरण चित्र की परिकल्पना की और उसे फोटोग्राफ किया। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में पुस्तक की लेखिका तुलिका भटनागर ने बताया,
3: करीब हमें 2 वर्ष पूरे लगे हैं पे रिसर्च करने में। बहुत लोगों के साक्षात्कार किए हैं, बहुत लंबी बातें करी हैं, क्योंकि हर एक फैक्ट को हमें वेरीफाई करना बहुत जरूरी था। 1800s तक हम पीछे गए हैं, हर एक फैक्ट को, भारत की जो अनकही कहानी है, जो इतिहास है, उन सबको निकाला है। भारत के, विदेशों के हर तरह के आर्काइव्स को हमने रिसर्च करके ये निकाला है। सबसे खास तो बापू का जेल कांड मुझे बहुत रुचि देता है, क्योंकि उन्होंने जेल में जो चिंतन किया है, जो उनके अनुभव रहे हैं, हालांकि हमने जो सीखा है, सुना है, वो हमेशा यही सुना है कि जेल में जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, लेकिन इंटरनल रेवोल्यूशन क्या हुआ है, इंटरनल फ्रीडम के लिए हमने क्या किया है, उसके बहुत ही अच्छे अनुभव बापू ने हमारे साथ साझा किए हैं। ये मुझे अच्छा लगता है। और एक और मुझे बहुत अच्छा अनुभव लगा जब उन्होंने भारत इंडिपेंडेंस के बारे में बताया।
1: 16 जून मंगलवार को रफी मार्ग स्थित CSIR मुख्यालय सभागार में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और BND लोकार्पण का आयोजन राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा किया गया। इस आयोजन के संदर्भ में आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशक प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता ने बताया,
4: आज 4 तरह तरह के टेक्नोलॉजी हमने रिलीज किए हैं। एक है बेहतरीन आगे बढ़कर लाइक जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो बोलते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजीज में, इसमें हम एक क्वांटम इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसर एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए है, और दूसरा हमने एनवायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए जो यूज होगा तो ये इसके लिए एयर सैम्पलिंग PM2.5 सैम्पलर एक हमने रिलीज किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। और तीसरा है ये वेस्ट टू वेल्थ, जो अपना टैबलेट पैकेजिंग होता है उससे हम मेटल और प्लास्टिक कैसे हम रिसाइकिल करें और इसको रीयूज भी करें, तो इस टेक्नोलॉजी को भी हमने ट्रांसफर किया है। और DRDO को हमने 5 वेपर सेल्स जो बोलते हैं रुबीडियम वेपर सेल्स हमने बना के दिए है, सो ये फैसिलिटी भी हमने CSIR NPL में शुरू किया है। 5वां भारतीय निर्देशक द्रव्य, ये सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स हैं, ये CSIR का ट्रेडमार्क है। BNDs हमने रिलीज किया है, 8 BNDs जो सिद्धा और आयुष मेडिसिन जो हमारा भारतीय सांस्कृतिक मेडिसिन है तो उनके लिए काम होगा। ये फाइटोकेमिकल से, प्लांट से बना हुआ मेडिसिन है, तो वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए सर्टिफाई करने के लिए ये यूज होगा। और एक गैस BND है, तो अपने हम CNG पेट्रोल पंप में गया या इसका प्योरिटी क्या है कैसे चेक करेंगे, इसका भी एक रेफरेंस मटेरियल हमने BND गैस BND प्रोपेन का हमने रिलीज किया है। और गोल्ड BND हॉलमार्किंग के लिए ये बहुत जरूरी पड़ेगा, तो ये भी हमने आज ट्रांसफर किया है।
5: डॉक्टर विनोद करार है, चीफ साइंटिस्ट सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी

0: हमने एंटी ग्लेयर डिवाइस का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। जो हमारा डिवाइस है ये किसी भी ग्लेयर सोर्स को ट्रैक करता है और अकॉर्डिंगली ट्रांसमिशन को कंट्रोल करके ग्लेयर को ऑप्टिमाइज करता है। तो जो ड्राइवर है उसकी आंखों पर चकाचौंध नहीं पड़ती है और उसको सामने का दृश्य आराम से दिखता है। सिमिलरली आप सुबह के टाइम अगर जाओगे पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में जाओगे शाम को, तो उस सूरज की रोशनी को ये बिल्कुल मध्यम कर देता है, उससे आपको सामने का दृश्य देखने में दिक्कत नहीं आती। इस टेक्नोलॉजी को अभी जैसे हमने आज ट्रांसफर किया है, हम कोशिश करेंगे इसको जैसे बड़े जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसको अपनी कारों में एज अ स्टैंडर्ड आइटम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे।
1: मनीष अग्रवाल हूं और हमने CRRI से पैचफिल टेक्नोलॉजी ली है। CRRI ने एक टेक्नोलॉजी बनाई पैचफिल के नाम से, ऑटोमेटेड पेवर है जिसको में सिर्फ आपको ये फीड करना होता है कि कितना बड़ा अप्रोक्सीमेट पॉटहोल है। मशीन अपने आप से सारी उसके कंपोनेंट्स को मिक्स करती है, उसके अंदर डालती है। जो प्रोसेस नॉर्मल मैन्युअल वे में 15 से 20 मिनट लेती है, ये 3 से 4 मिनट के अंदर करके आगे मूव कर जाती है। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि गड्ढों की वजह से होने वाली मौत, जैसे कि उसकी वजह से होने वाला फ्यूल लॉसेस या फिर उसकी वजह से होने वाले डिलेज, उन सबको बहुत जल्दी फिलअप करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कारगर है।
2: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यही संपन्न होता है।
3: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह ओडिशा राज्ये 6,47,000 करोड़ रुपयकाणां परियोजनानां उद्घाटनम् अकरोत्। सर्वकारः सार्वजनिक हिताय 16 निश्चित मात्रा औषध संयोजनानां निर्माणं विक्रयणं वितरणं च निषेधितवान्। श्वः निर्धारितायाः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायाः प्राक् NTA इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्याभ्यासः आयोज्यते। ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किमस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। अपि च फीफा विश्वकप इति क्रीडायां ब्राजील देशः हैति देशं 3-0 पराजय्य प्रथमवारं विजयम् अलभत। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य ओडिशा राज्यस्य प्रगतेः प्रशंसा कृता, यत्र मुख्यमन्त्रिणः मोहन चरणमाझिनः नेतृत्वे राज्येन वर्षद्वयं पूरितम्। सः अवदत् यत् एतत् राज्यं द्रुतगत्या विकासस्य मार्गे अग्रे गच्छति तथा च पूर्वी भारतस्य विकासाय महत्वपूर्णं योगदानं प्रददाति। मयूरभंज जनपदस्य रायरंगपुरे जनसमूहं संबोधयता प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रपतेः जन्मदिनस्य शुभाशयाः प्रदत्ताः। तस्याः पैतृकग्रामे पहाड़पुरे आगमनं सौभाग्यम् अस्ति इति उक्तवान्। सः अघोषयत् यत् पहाड़पुरं सूर्यग्रामरूपेण अथवा सौरग्रामरूपेण विकसितः भविष्यति, यत्र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संरचनाः आधुनिक सार्वजनिक सेवाः च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री बहुविध क्षेत्रेषु प्रायः 47,000 करोड़ रुपयकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। सः अवदत् यत् केन्द्रस्य पूर्वोदय दर्शनस्य उद्देश्यं पूर्वी भारतस्य द्रुतगत्या विकासस्य माध्यमेन भारतस्य विकासं प्रवर्तनीयमिति।

0: तम उपहिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किम राज्यस्य च पृथक पृथक स्थानेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रदत्तास्ति। ऋतु विभागेन दिने केरल माहे तमिलनाडु पुदुचेरी करैक्कल प्रदेशेषु पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् अस्ति। हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब दिल्ली उत्तराखंड पूर्वी मध्य प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेशेषु च विद्युद्योतनेन सह मेघगर्जनस्य संभावना ऋतु विभागेन प्रकटिता। बिहार आंध्र प्रदेश उत्तरांतरिक कर्नाटक तेलंगाना विदर्भ अंडमान निकोबार द्वीपेषु च आगामी दिनद्वयोः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। ब्राजील देशः अद्य फिलाडेल्फिया क्रीडांगणे हैति देशस्य उपरि 3-0 इत्यंकैः सहजतया विजयं प्राप्य फीफा विश्वकप क्रीडायां स्वस्य प्रथमं विजयं अभिलिखितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार है, तो आपको सुनने को मिलेगा आपका मनचाहा कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज 20 जून है और आज के दिन मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। इसका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में शरणार्थियों की परेशानियों के प्रति जागरूकता हो और जहां वे शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, वहां उन्हें सम्मान दिया जाए। इसके अलावा इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक शरणार्थी संकट का समाधान ढूंढना, विस्थापितों को सुरक्षित स्थान प्रदान करना और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा एकजुटता प्रदर्शित करना है।
1: बिल्कुल शशि भाई, विश्व शरणार्थी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर के शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये दिवस उन लोगों के अधिकारों, जरूरतों और सपनों पर प्रकाश डालता है जो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। मानव अधिकारों के उल्लंघन, हिंसा और विभिन्न प्रकार के संघर्ष के कारण ही लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ता है। 20 जून 2001 को पहला विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था।
0: इस साल विश्व शरणार्थी दिवस हम सभी के लिए एक साझा सुरक्षा उपाय के रूप में सुरक्षा की तलाश करने के अधिकार पर केंद्रित है। सुरक्षा की तलाश का अधिकार हम सबके लिए 75 साल पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक वादा किया था। जिन लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, उन्हें सुरक्षा और संरक्षण पाने का अधिकार है। ये कुछ ही लोगों के लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए था।
1: बिल्कुल, और जब तक हमारे बीच सबसे कमजोर लोग सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, तो हम सभी की इसमें भूमिका होती है। शरणार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना समुदायों को मजबूत बनाता है, स्थिरता को बढ़ावा देता है और जीवन बचाता है।
0: तो बहन भाइयों, ये तो आपने जाना विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में। और देखिए नीलम बहन, हमारे गांव में रहने वाले बहन भाई चाहते हैं कि उनकी जो बिजली का बिल है वो आए ही नहीं, तो इसके लिए सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री में बिजली प्रदान करना है। इसके लिए भारत सरकार सोलर पैनल की लागत पर सब्सिडी और कम ब्याज पर आसान लोन देती है।
1: बिल्कुल, और जो भी

0: और वेंडर की डिटेल पोर्टल पर सबमिट करें। इसके बाद सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगी। तो बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की। और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, सचिव जी को नमस्कार। इस हाल से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ। सचिव
0: नमस्ते जी। सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: पूनम जी को सुनना चाहूंगा आज के कलाकार, और बनवारी लाल यादव जी गामड़ी से, और शमशेर जी द्वारका से, और राहुल सैनी साथ में जी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
2: शशि भाई जी, राम राम।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आई पूनम को सुनवा देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे मेरे साथ।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: भाई राम राम जी।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं चंद्रपाल सिंह जाखड़ बोल रहा हूँ जी।
0: चंद्रपाल जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: पूनम को सुनवा दो जी, कुछ नाम है दो चार।
0: हाँ बोल दीजिए।
3: देवेंद्र चौधरी, नीरज मोटा और विनोद मास्टर जी, वंचित जाखड़ जी। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं गांव पनियारचक से विनोद बोल रहा जी।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: पूनम की सुना दियो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: बच्चों के नाम जी, साहिल, रोहित, कविता, ममता। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
5: इंद्रवीर तेवतिया।
0: तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है। आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: पूनम की गाई हुई बढ़िया जी को राग में सुनवाना, कुछ नाम लेने चाहूँगा
0: जी।
5: अमित तेवतिया, प्रेम प्रपक्ष निष्कर्ष गाँव मंडोना से है। विक्रम सिंह, राजेंद्र सिंह, खुशियालपुर से शेर सिंह मोदी और पंडित रतनलाल।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
6: सर जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
6: सर दादरी गेट भिवानी से किशन मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
0: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: पूनम को सुना देना सर।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: बच्चों के नाम है सर जी, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
7: सर नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं रामचंद्र बोल रहा हूँ। आज कलाकार है पूनम।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: दो चार नाम देना चाहता हूँ
0: जी।
7: लड़की है छाया, लड़का तरुण, लड़का हर्ष, बेटा प्रदीप, पुत्र वधु मंजू, पोता रोहन और पोते नंदिता, उस्मान, मंजू।
0: हेलो ग्राम संसार।
8: हेलो ग्राम संसार, अशोक कुमार शर्मा, उठावली खुद बुलंद शहर।
0: अशोक भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: आज पूनम जी को सुनना है और साथी में
0: जी
8: रिशु, नीरज, लव शर्मा, देव शर्मा, गर्व शर्मा, गिन्नी शर्मा। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। तो आइए आप सभी भाइयों की पसंद पर सुनते हैं पूनम से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं गांव मिट्टी की ढाणी से शिवराम बोल रहा हूँ जी, जिला भिवानी हरियाणा से जी।
0: आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज मनोज चौधरी को सुनना चाहते हैं जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ नाम है जी, पोता
0: हाँ बोल दीजिए।
1: है जी मोहित, अंकित, नितिन, जतिन, दीक्षांत, दीपांशु और रक्षित। दो पोते हैं जी, पूजा और आरती।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: मैं सोनू गांव डोर जिला में निगुड़ा हरियाणा से बोल रहा हूँ।
0: सोनू भाई आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज मनोज चौधरी को
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: एक नाम है,
0: हाँ बोल दीजिए।
2: मेरी मम्मी फूलवती, मेरे पिताजी अमन बलवा जी, खोटा बोर्डर। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो सचिव भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, विकासपुरी गांव बरहाना जिला बुलंदशहर।
0: महेंद्र भाई आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: मनोज चौधरी की कोई बढ़िया से रागनी सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और मेरे साथ ही आरती भारती स्वाति मैसेज करता देगी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं हरि सिंह सैनी, पशुआ नंगला, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: हरि सिंह जी आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: मनोज चौधरी को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: और कुछ नाम है जी, देवचंद, राकेश, मुकेश, बलेश डॉक्टर है, पोती पोता कुछ, नीतीश, हेमपाल, ललित, चंदन, पुष्पंदर, जीतू, भूमेश, छवि, निशा, कंचन और भंजा मेरा, गोविंद, मनोज, हरिचंद और रिश्तेदार है संजीव, ज्योति, पूरे गांव की फरमाइश। नमस्कार।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार, सचिव भाई राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: जितंदर सोलंकी गांव करपोरा महाराजपुर जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं।

0: जितेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: मनोज चौधरी को सुनना चाहेंगे जी,
0: जरूर सुनवाएंगे
1: नाम बोलूंगा जी।
0: जी
1: लकी संजना अंशका टिंकल कन्नू प्राची प्रतीक्षा सोलंकी वीर सोलंकी पिताजी श्री मेघराज सिंह सोलंकी माताजी श्रीमती निर्मला देवी गांव करपुरा से गजेंद्र सिंह प्रधान जी श्याम चौहान सतवीर सिंह बैद जी कैलाश सिंह ठेकेदार नंगला टोटा बड़ौदा से।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: जी भाई नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: सुरेश चौहान बोल रहे हैं नजफगढ़ से।
0: सुरेश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: बहुत दिन हो गए मनोज चौधरी को नहीं सुना जी हमने।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: और हमारे दो तीन नाम है जी, केजराम कौशिक जी आपका बड़े ध्यान से सुनते हैं प्रोग्राम, नफे सिंह जो मुदगल जी है अपने पपराड़ गाँव से, वो भी पुराने आपके श्रोता है
0: जी। बिल्कुल, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: बबली कुमार प्रजापति मोहल्ला दौजवाला शिकारपुर बुलंदशहर से बात कर रहा हूँ जी।
0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज हमें मनोज चौधरी जी की आवाज में अच्छी सी रागनी सुनवा दो।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: पत्नी पुष्पा देवी, लड़की डॉली कुमारी, लड़का मोनू कुमार, एक लड़की पूजा रानी, लड़का छोटा भीम, शीशपाल अकेला है और अनवर बिहारी जी है। राम राम जी।
0: राम राम जी। तो आइए आप सभी भाइयों की पसंद पर सुनते हैं मनोज चौधरी से ये रागनी, किस्सा रहेगा राजा मोरध्वज का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो शशि भैया, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: जयवीर सिंह को सुना देना जी। कुछ नाम है जी, बाबू अंसारी, मंटू शर्मा, लीलाधर।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्कार सर,
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं मंटू शर्मा बोल रहा हूँ, गांव सेडा से, तहसील भदरा, जिला मनगढ़, राजस्थान से। सर
0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: जयवीर सिंह की आवाज में सर।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी,
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं जगदीश चिंदाड़िया बोल रहा हूँ जी, डाणा निशान, जिला भिवानी जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: जयवीर सिंह को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे
3: जी। बच्चों के भी नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
3: राजवीर चिंदाड़िया, सतीश चिंदाड़िया, ऋतिक चिंदाड़िया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: सही भाई जी, राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: गणगंगा नेवान से बोल रहा हूँ, घनश्याम।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: जयवीर को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: जो नाम ले लूं?
0: हाँ बोल दीजिए।
4: मेरी बहन ज्ञानपति आनंदी है, ज्ञानदास प्रधान जी है, सबको राम राम।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम जना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: जयवीर सिंह को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: कुछ नाम है जी?
0: हाँ नोट कराएं।
5: जयपाल सिंह अध्यक्ष, मास्टर ब्रह्म सिंह, जगदीश मोटा बादलपुर, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, आरव भाटी और गरु गुजर।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार। राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: हिरन सिनेमा रोड, मोती नगर, नई दिल्ली से, आपका पुराना दोस्त गौरव मदान बोल रहा हूँ।
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है और बताइए आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज जयवीर सिंह।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
7: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: मैं गांव चोहलदा बागपत से संजय डींगे बोल रहा हूँ।
0: संजय भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: आज हम जयवीर सिंह को सुनना चाहेंगे, उनकी कोई अच्छी सी रागनी।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
8: हेलो ग्राम संसार, नमस्कार शशि भाई।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
8: मैं जी दौड़ा है, जिला महेंद्र, हरियाणा से, पंडित यादराम पटवारी बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: आज सुनवाओ जी, जयवीर सिंह जी को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
8: और कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
8: सुहानी शर्मा, यश भारद्वाज।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आप सभी भाइयों की पसंद पर सुनते हैं जयवीर सिंह से ये रागनी, हिस्सा रहेगा रामायण का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731, और दूसरा नंबर है 0112346।

0: 3332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
1: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7 बजने ही वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
2: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े

0: सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में दो संपर्क अधिकारियों और एक चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, आज के कार्यक्रम कृषि जगत में सबसे पहले बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की, ताकि हमारे वो किसान बहन भाई जो अभी तक एफपीओ का फायदा नहीं ले पा रहे हैं या इस संगठन से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनको जानकारी मिले, ताकि वो इसका लाभ उठा पाए। किसान बहन भाइयों, किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ आप किसान भाइयों द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संस्था है, जिसका उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और आपकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।
1: बिल्कुल शशि भाई, ये एक पंजीकृत कानूनी संस्था है जो कृषि उत्पादों के सामूहिक एकत्रीकरण, इनपुट की थोक खरीद, बाजार तक सीधी पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से किसान भाइयों को स्केल की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने में मदद करती है।
0: बिल्कुल, हमारे जो सीमांत किसान भाई बहन है और छोटे और भूमिहीन किसान है, उनको एफपीओ के रूप में एकत्रित करने से बाजार संपर्क बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे आप किसान भाइयों की आय और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये संगठन छोटे किसानों को संपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करता है और साथ ही विपणन, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण और खेती के अन्य पहलुओं को कवर करता है।
1: बिल्कुल, एफपीओ एक ऐसी संस्था है जो छोटे किसानों को एक साथ जोड़ती है और एक कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होते हैं। वो अपने सदस्यों की उपज को इकट्ठा करते हैं और सामूहिक रूप से बाजार में बेचते हैं। ये संगठन कृषि आदानों की थोक खरीद करता है। ये कृषि आधारित प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन गतिविधियों में भी शामिल होता है। ये किसानों को ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल, तो हमारे वो किसान बहन भाई जो इस संगठन के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं और साथ ही साथ, जैसा कि आप जानते हैं, खरीफ मौसम की जो फसलें हैं उनकी बिजाई का समय चल रहा है और खरीफ फसलों के लिए हमें बीज की, खाद की आवश्यकता होती है, तो किसान उत्पादक संगठनों द्वारा यानी कि एफपीओज के माध्यम से खरीफ इनपुट यानी कि बीज खाद की सामूहिक खरीद कैसे की जाती है, इसी विषय को लेकर के आपको सुनवाते हैं एक जानकारी दे रहे हैं प्रवीण कुमार सक्सेना, जो कि एक एफपीओ किसान हैं और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार, हम अपने कार्यक्रम में जानकारी के लिए कृषि वैज्ञानिकों को आमंत्रित करते हैं, उसके साथ साथ कभी कभी जो कृषि अधिकारी हैं उनको भी आमंत्रित करते हैं, लेकिन समय समय पर हम अपने कार्यक्रम में ऐसे किसान भाइयों को भी आमंत्रित करते हैं, कृषि उत्पादन संगठन से जुड़े हुए जो किसान हैं उनको भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलता है। आज हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार नरसेना जी, जो कि एक किसान उत्पादक संगठन चला रहे हैं, और इनका ये किसान उत्पादक संगठन क्या है और कहां पर चला रहे हैं, क्यों हम इन्हीं से इसके बारे में विस्तार से जानकारी लें। तो प्रवीण कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार साहब।
2: मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि आपका संगठन में कितने लोग हैं और किस तरीके से काम करता है।
3: हमारा जो संगठन है नरसेना ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, हम लोगों से 597 जो रजिस्टर्ड किसान हैं, तो उनके लिए हम लोग बीज का उत्पादन एवं ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बीज का उत्पादन हम लोग कैसे करते हैं
2: जी।
3: बीज जनरली क्या है, हम कह सकते हैं कि 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, और लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो पांचवा है वो टीएल सीड भी होता है। तो यदि हम किसान भाई सभी मिलकर एक संगठन बनाकर बीज का उत्पादन करते हैं तो इससे हमारे किसान भाइयों को उत्पादन में एक जो इनकम कह सकते हैं, जो आय है, वो उसकी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम जो गवर्नमेंट के जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या विश्वविद्यालय है, तो वहां से हम लोग ब्रीडर सीड परचेज कर सकते हैं, और ब्रीडर सीड परचेज करने के बाद में जो हमारे किसान भाई हैं, जो अपने मेंबर हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें, और ब्रीडर सीड से हम लोग फाउंडेशन सीड बनाए, जिससे कि किसानों की जो इनकम है, जो जनरली खाद्यान्न के लिए लोग जो फसल तैयार करते हैं, उससे ज्यादा हमको बीज बनाने में आय मिलेगी किसान भाइयों को। तो यदि हम फाउंडेशन या सर्टिफाइड सीड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम लेके आते हैं, तो अपने खेत पर हम लोग सर्टिफाइड सीड तैयार कर सकते हैं, जिसको हम आगे चल के अच्छे रेटों में अच्छे मूल्य पर हम लोग उसको बेच सकते हैं। जिस तरह से हमारा किसान संगठन काम कर रहा है, हम बीज उत्पादन के साथ साथ में हम लोग ऑर्गेनिक खाद पर भी काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो काउ यूरिन बेस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स है, यानी कि हम कह सकते हैं केमिकल फ्री फार्मिंग यदि हमें करनी है, यदि हमको केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना या किसी भी जहर का प्रयोग नहीं करना फसल में, तो आखिर हम उसकी जगह पर किस उत्पाद को लेके आए जिससे कि हमारा कीड़ा भी और रोग भी कंट्रोल हो जाए और उत्पादन भी लगभग उतना ही निकलना चाहिए। तो इसके लिए हमारा किसान संगठन ने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में काउ यूरिन डेयरी, गोमूत्र की डेयरी बनाई हुई है, जिनसे हम लोग 10 रुपए लीटर गोमूत्र परचेज करते हैं। इससे क्या होता है, जो किसान भाई है जो दूध के साथ साथ में उन डेयरियों पे गोमूत्र को बेचता है, जिससे कि उसकी इनकम बढ़ जाती है और उस गोमूत्र को हम अपनी यूनिट पे लाके उससे हम दवाई बनाते हैं। जैसे 3 प्रकार की हम लोग दवाई बनाते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है और एक दानेदार फॉर्म में है। और इसका जो माध्यम है बिक्री का, हमारे संगठन ने एक जो सहकारिता विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, उससे हम लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है, जो हर जिले में लगभग किसी जिले में 96 सोसाइटी है, किसी में 167 सोसाइटी। जैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको, बुलंदशहर के अंदर 167 काउंटर हैं, बीपैक सोसाइटी बोलते हैं, सरकार के द्वारा खाद बीज बिक्री जो केंद्र होते हैं। तो हम लोगों ने उनसे एग्रीमेंट किया हुआ सहकारिता से, जिससे कि किसान को ये दवाइयां सस्ते दर पर उपलब्ध हो सकती हैं। हमारा संगठन इन दवाइयों को बनाने के बाद में सहकारिता को सप्लाई देता है, जिससे कि किसान केमिकल जो फर्टिलाइजर है धीमे धीमे उसमें कमी आती जा रही है, लोग लगाना नहीं चाहते। हम किसान अपने मेंबरों को ये भी समझाते हैं कि हम कम से कम केमिकल का प्रयोग करें, क्योंकि केमिकल का प्रयोग करने से जो पौधे की जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर होती चली जाती है। हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद केमिकल का प्रयोग करने से जो कीड़े अथवा रोग के लिए जो हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, इससे क्या पौधे की इम्यूनिटी कमजोर होगी और धीमे धीमे, क्योंकि सिस्टमिक पॉइजन जो होता है 1 महीने तक उसमें पौधे के अंदर उसका असर होता है, वो धीमे धीमे एज ए स्लो पॉइजन वो हमारे अंदर भी आता चला जाता है। तो यदि हम ऑर्गेनिक जो गोमूत्र से बनी हुई दवाई जो हमारे किसान संगठन तैयार कर रहा है और सहकारिता के माध्यम से जो हम लोग बिक्री कर रहे हैं, यदि उनका प्रयोग करते हैं, तो उनका जो प्रोड्यूस पैदा होगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा, जिसका सेवन पूरी मानव जाति करेगी। तो हम कह सकते हैं कि गाय का संरक्षण भी इस मॉडल में है और पूरी मानव जाति की सुरक्षा भी इसी के अंदर निहित है।
2: जी, लेकिन जानना चाहूंगा कि जो बीज का उत्पादन करते हैं, तो बीज तो आपने मान लिया किसी संस्थान, किसी विश्वविद्यालय से लिया, और उसका जब उत्पादन करते हैं वो किसकी देखरेख में होता है और कौन सी कृषि क्रियाएं करते हैं? क्या खास जो एक खाने वाला उत्पादन किया जाता है और एक जब बीज का उत्पादन किया जाता है, उसमें आपको क्या विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है?
3: देखिए, हमारे जो किसान संगठन है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वैरायटी, जैसे DWR करनाल, जो गेहूं का शोधन निदेशालय है करनाल में, या हम पूसा इंस्टीट्यूट से हम लोग ब्रीडर सीड परचेज करते हैं। ब्रीडर सीड परचेज करने के बाद में जो स्लिप होती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सीड सर्टिफिकेशन की एजेंसी है, तो हमारे संगठन के द्वारा वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसकी फीस वहां पर हम लोगों को देनी पड़ती है। जब उसका हम लोग अपने आप प्रोडक्शन करते हैं, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो ठीक रहनी चाहिए। तो वो सबसे पहले सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की देखरेख में होती है, वहां से सीड इंस्पेक्टर आते हैं, तो वो ये देखते हैं कि जो हमने वैरायटी लगाई है, क्या उसमें किसी दूसरी वैरायटी के पौधे तो नहीं आ रहे। यदि दूसरी वैरायटी के पौधे आते हैं

0: हैं तो उस पौधे को उखाड़ कर बाहर फेंकने की क्रिया को हम लोग कहते हैं रोगिंग। तो रोगिंग मस्ट होती है इसके अंदर, यानी जिन पौधों को हम नहीं चाह रहे अनिच्छित जो पौधे हैं उनको उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वेराइटी है, जो पौधे हैं, वो 100% जेनेटिक प्योर है। तो ये सब हम सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा हम लोग सर्टिफाइड कराते हैं। उसके बाद में एक जगह मिक्सिंग का सिस्टम होता है, जब उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग करते समय भी हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो थ्रेसर होता है जो दूसरी वैरायटी को निकाल के आता है तो उसको हम लोग साफ कर लें। दूसरा एक मिक्सिंग का चांस होता है, जो बैग्स होते हैं उनमें भी पुरानी वैरायटी जो होती है, जो पहले हमने हार्वेस्टिंग की थी उनके दाने लगे होते हैं, तो उनको हम ठीक तरह से झाड़ लें। झाड़ने के बाद में उस सीड को हम पैक कर सकते हैं और प्रोसेस करके भी हम लोग, या यदि हमारा संगठन काम कर रहा है, प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट नहीं है उनके पास में, तो भी हम लोग मैनुअली उसको साफ करने के बाद में अपने किसान भाइयों को सस्ते दर पर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस वैरायटी को। और जैसा कि आपने कहा कि जो खाने वाली जो फसल है उसमें तो क्या डिफरेंस है, जो खाने वाली फसल है उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको धान के रूप में बताता हूँ कि हर किसान को जब खाने के लिए भी हम लोग तैयार करते हैं, मंडी के लिए भी तैयार करते हैं, तो जो बांगरू कहते हैं, जिसको जंगली पौधे कहते हैं, धान में हमने देखा गया कि उसमें जंगली पौधे उसमें आ जाते हैं। तो प्रत्येक किसान भाइयों को खाने के लिए भी बनाते समय जो जंगली पौधों को उखाड़ के बाहर फेंक देने चाहिए, क्योंकि यदि जंगली जो पौधा उसके अंदर आ जाएगा तो मंडी में उसके रेट कम मिलते हैं, और यदि हम लोग उसकी जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रखते हैं तो मंडी में जब लेके जाएंगे, जब प्योर सीड होगा एक जैसा दिखाई देगा तो उसके हमें रेट अच्छे मिलेंगे। इस तरह से जो हमारा किसान संगठन है उससे वो इनकम कर सकता है, पूरे संगठन के जो मेंबर्स होते हैं उनको उसका फायदा मिलता है सर।
1: अच्छा, जैसे आपने कहा कि हम इसकी कटाई से लेकर गहाई पैकिंग तक पूरी सावधानी इसमें बरतते हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी उत्पाद उसकी आय जब ही होती है जब उसकी मार्केटिंग ठीक से हो, तो आप मार्केटिंग में क्या सावधानी बरतते हैं और किस तरीके से बीज को किसानों तक पहुंचाते हैं?
0: सर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों ने सीड प्रोड्यूस कर लिया तो सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान संगठनों के सामने आती है कि हम उसकी प्रोसेस कहाँ कराएं। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी लगी होती है। तो हमारा किसान संगठन यदि उस सीड को, क्यों सीड किसान के पास वो हेल्दी जाना चाहिए, जब हम किसान भाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो फसल है वो इतनी बढ़िया नहीं हो पाती जितनी कि उसको हम प्रोसेसिंग करने के बाद में होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग का मतलब है हेल्दी सीड। जैसे कि जो नजदीकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, तो हमारे जो किसान भाई हैं, जो किसानों का संगठन है, एज ए बल्क के रूप में हम लोग वहां लेके जाएंगे और सस्ते दर पर वो हमारे सीड को प्रोसेस कर सकते हैं। संगठन अपने नाम से भी उसको पैक करा सकता है और अपने नाम से उसे बेच सकता है, क्योंकि हेल्दी जो सीड होगा उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी जो जनरेशन आने वाली है वो भी अच्छी जनरेशन होगी, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूस होगा, जो यील्ड आएगी वो अच्छी आएगी और उसको मार्केट में अच्छा रेट हमें मिल सकता है।
1: बिल्कुल, अगर उसको अच्छे तरीके से सफाई करके और सही से पैकिंग किया जाए, और कहते हैं कि जो चीज दिखने में अच्छी होती है वो बिकती है, तो पैकेजिंग पर भी ध्यान दिया जाता है।
0: हाँ, क्योंकि अलग अलग किसान यदि पैकिंग कराए तो किसान के लिए संभव नहीं होता, लेकिन यदि हमने किसान संगठन बना लिया
1: जी,
0: तो हम लोग अपने जो मेंबरों के द्वारा सीड प्रोडक्शन हुआ सर्टिफाइड एज ए बल्क में, हम लोग नजदीक बुलंदशहर में भी हमारा एनएससी की प्लांट यूनिट लगी हुई है, मेरठ में भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में एक यूनिट लगी हुई है, तो कहीं भी हम लोग किराए पर उसको प्रोसेस करा सकते हैं। और पैकेजिंग पे तो ध्यान इसलिए देना आवश्यक है कि जो देखने में सुंदर होना चाहिए, तो यदि मार्केट में लेके जाते हैं तो हमको पैकेट को फाड़ के तो नहीं दिखाएंगे, तो पैकेट भी सुंदर होना चाहिए, उससे भी हमें एक अच्छी इनकम मिलती है, किसान उसे जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश करता है, तो पैकेजिंग का भी अपना एक रोल है पैकिंग के समय में, और उससे भी हमारा किसान संगठन अपनी आय बढ़ा सकता है।
1: जो आप जैविक खाद या आप गोबर गोमूत्र से तैयार करते हैं तो उसकी क्या विशेषता होती है?
0: सर, एक नया फॉर्मूला है, हम इसको अभी यूपी में एक नई परियोजना के तहत कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे पास गोसेव आयोग के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, सहकारिता मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें नए फॉर्मूले के साथ में क्या कि हम लोग सबसे पहले काउ यूरिन बेस्ड जो ऑर्गेनिक इनपुट्स बना रहे हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए गाय का मूत्र एवं गाय का गोबर, क्योंकि जो मूत्र होता है उसकी जो स्पेशलिटी है उसमें एक साइटोकाइनी हार्मोन्स पाया जाता है, जिसका काम है फसल के अंदर फूलों की संख्या बढ़ाना। यह साइटोकाइनी हार्मोन्स और किसी जीव के मूत्र में नहीं पाया जाता, केवल गाय के मूत्र में ही पाया जाता है। साथ में हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, जो सड़कों के किनारे पर हर्ब खड़ी रहती है, तो हम लोगों ने अपनी छोटी सी एक लैब में ये हम लोग रिसर्च कर चुके हैं, किसी में बोरोन की मात्रा ज्यादा है, किसी में जिंक की मात्रा ज्यादा है, किसी में सल्फर की मात्रा ज्यादा है, किसी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, उसी के रेशो को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तीन तरह के तैयार किए हैं, जिसमें गोमूत्र में वो जो हर्ब होती है उसको बॉइल करते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, निकालने के बाद में हम लोग उसको पैकिंग करते हैं, 1 लीटर की पैकिंग। यदि उसका स्प्रे हम लोग किसी भी फसल में करते हैं तो वो 100% चाहे वो इंसेक्ट हो या डिजीज हो उसको कंट्रोल करती है और प्लांट की वो ग्रोथ बढ़ाएगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगी। केमिकल में और ऑर्गेनिक दवाई में यही डिफरेंस होता है कि

0: केमिकल 24 घंटे में अपना असर दिखाई देता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक खाद है उसका 4 से 5 दिन फसल के अंदर उसका असर दिखाई देने लगता है।
1: जो आप खाद तैयार करते हैं गोबर की, गोमूत्र की, और जो भी इससे दवाएं बनाते हैं, तो इनको आप किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, कैसे इसको बेचते हैं, किसानों को कैसे जागरूक करते हैं कि इसका प्रयोग करें?
0: एक तो होता है सर मार्केटिंग, एक होता है मार्केटिंग डेवलपमेंट। तो हम लोगों का जो एग्रीमेंट है सहकारिता के माध्यम से, पहले हमारा संगठन प्राइवेट में उतरना चाहता था, लेकिन प्राइवेट में जो खाद बीज की जो दुकानें होती हैं उनको एक बहुत बड़ा मार्जिन चाहिए
1: जी।
0: जैसे सपोज करिए हमने उनसे किसी रेट तय किया तो कई गुना मार्जिन किसान से लेने की कोशिश करते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संगठन ने सहकारिता से एग्रीमेंट किया, क्योंकि सहकारिता जो होता है, सहकारिता मंत्रालय किसानों के लिए नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करता है। जो हर सहकारिता की हर जिले में अपनी सोसाइटी होती है, जिनको बीपैक सोसाइटी बोलते हैं, खाद बीज की दुकानें होती हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। इसका कंट्रोल एआर कोऑपरेटिव, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होती है एआर कोऑपरेटिव, तो वो उसको कंट्रोल करते हैं। और खाद बीज की सोसाइटी के द्वारा जो किसान को दवाई मिलती है वो सस्ते दर में प्राप्त हो जाती है। और ये हमने बुलंद शहर में एक नया मॉडल सरकार को बना के दिखाया कि इस तरह से हम काम करें, और पूरे राज्य में हम काम करेंगे तो गाय की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और यदि हम केमिकल फार्मिंग की बात करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर को कैसे कम करना, क्योंकि फर्टिलाइजर की एक सबसे बड़ी दिक्कत सरकार के सामने आ रही है, हर सोसाइटी पर लाइन लग रही है, झगड़े हो रहे हैं, पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रही है वहां पर, और खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही ठीक तरह से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती है। इसके लिए यदि हम लोग साथ में इन दवाइयों को हम देते हैं, कि बुलंदशहर में हम लोगों ने इसको सरकार के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और किसान इन दवाइयों से बहुत खुश है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है जो छोड़े हुए हैं, जिनका मकसद है कि जो बीपैक से जो गांव आते हैं, 9 गांव आते हैं, किसी में 10 आते हैं, उन गांव में जाके किसानों की गोष्ठियां करते हैं, उनके यहाँ पर हम लोग डेमो लगाते हैं, डेमो लगाने के बाद में किसानों की फिर मीटिंग करते हैं, उनको दिखाते हैं इस दवाई का इतना प्रभाव है इस पे, साथ में चेक भी लगाते हैं कि जिन खेतों पर केमिकल लगाया जा रहा है और साथ में जिसने हमारी दवाई का डेमो लगाया है उनमें क्या डिफरेंस है, सब मार्केटिंग डेवलपमेंट के विभाग का काम है। ये हम किसानों को अवगत कराते हैं, समझाते हैं कि आप इस दवाई का प्रयोग करें और ये दवाई आपको नजदीकी जो बीपैक्स सोसाइटी है वहां से सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि सस्ते दर में आप लेके इसको यूज कर सकते हैं सर।
1: तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि वो दूसरे तरीके के भी किसान संगठन बना सकते हैं जिससे उनको लाभ मिल सके?
0: देखिए हम लोग गोष्ठियों में जहां पर हमारा संगठन काम कर रहा है उसके बाद में भी हम किसानों को ये बताते हैं किसान संगठन कैसे बनाए जाते हैं और एक किसान संगठन मिलकर कैसे कार्य कर सकता है। यदि हम एग्जांपल बताएं, यदि कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है तो उसको किस तरह से पीजीएस के द्वारा हम लोग सर्टिफाइड कराएं, क्योंकि किसान ऑर्गेनिक कर लिया लेकिन उसका सर्टिफिकेशन नहीं करा पा रहा जिससे कि उसको अच्छा मूल्य नहीं मिलता, तो उनको बताते हैं गोष्ठियों में कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन का एक नंबर मिलेगा, जब इस प्रोड्यूस को आप बेचेंगे मार्केट में लेके जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई इस संस्था के द्वारा हमने इसको सर्टिफाइड कराया, ये हमारी ऑर्गेनिक खाद्यान्न है, तो उससे मार्केट के जो और जो खाद्यान्न का जो मूल्य है उससे डबल भी हमको मिलने के चांस रहते हैं, 100% हमको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, तो इससे किसानों की इनकम बढ़ जाएगी हम कह सकते हैं इसके द्वारा।
1: बहुत से किसान भाई संगठन बनाते हैं कि जो उत्पाद है उसका संस्करण करके उसके उत्पाद बेचते हैं, उसका भी संगठन बनाए हुए हैं, तो उनके लिए आप कह रहे हैं?
0: जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जो किसान भाई अपने सेपरेट कुछ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तैयार करते हैं, जैसे दालें तैयार कर रहे हैं, सरसों का तेल तैयार कर रहे हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की, क्योंकि जो अपना किसान है जो स्वयं अपने प्रोड्यूस पे तैयार करके उसे बेचने में दिक्कत आती है। लेकिन यदि इसी को हम संगठन का रूप दे देते हैं, ऐसे किसानों को मिला के एक संगठन बना देते हैं, तो यदि मिलके काम करें हम लोग, एक ट्रक, दो ट्रक, चार ट्रक, जितना भी माल होता है तो उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट भी हमें सस्ता पड़ेगा और वो कंपनी भी उस प्रोड्यूस को लेने को तैयार हो जाएगी। तो संगठन बना के इस तरह से किसान भाई अपना लाभ बढ़ा सकता है।
1: जी बिल्कुल प्रवीण कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पे किसान भाई इसका फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान उत्पादक संगठनों द्वारा यानी FPOs के माध्यम से खरीफ इनपुट बीज खाद की सामूहिक खरीद, आप सुन रहे थे ये बातचीत। जानकारी दे रहे थे FPO किसान प्रवीण कुमार सक्सेना और इनसे बात कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: और अब नीलम बहन अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं राकेश त्यागी।

0: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे ये उपदेश। कलाकार थे राकेश त्यागी।
1: नीलम बहन, भारत सरकार घरेलू स्तर पर सोयाबीन जैसे तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन चला रही है। ये योजना वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक लागू है, जिसका लक्ष्य खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को कम कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।
0: बिल्कुल शशि भाई, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का उद्देश्य तिलहन फसलों का उत्पादन 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन तक करना है और साथ ही खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता को मौजूदा 57% से घटाकर 28% तक करना है और इसके अलावा जीनोम एडिटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले और अधिक तेल देने वाले सोयाबीन के बीज किसानों तक पहुंचाना है।
1: बिल्कुल, तो नीलम बहन, ये तो हमारे किसान बहन भाइयों ने जाना राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन सोयाबीन के बारे में। और देखिए, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों को बताते चलें कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम के बारे में।
0: कल ग्राम संसार कार्यक्रम में बहन भाई सुनेंगे पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम। इसके साथ ही बहन भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा सुनेंगे और राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना की जानकारी दी जाएगी।
1: और कल के कृषि जगत कार्यक्रम में किसान बहन भाइयों के पत्रों के उत्तर और उनकी पसंद के लोक गीत सुनवाए जाएंगे और साथ ही किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह, इस विषय पर आप चर्चा सुन सकेंगे। तो किसान बहन भाइयों, ये तो जानकारी रही कल प्रसारित होने वाले ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम की, लेकिन आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback

cafenet@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कव्वाली एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम। आरंभ में आइए सुनते हैं वारसी ब्रदर्स की आवाज में ये कव्वाली।

0: आप सुन रहे थे कव्वाली एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कल होने वाली नीट पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त सभी अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का निरंतर प्रयास है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,880 करोड़ रुपए की सीधी सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहयोग किसानों को कृषि संबंधी खर्चों में आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है और उत्पादकता तथा आय वृद्धि में सहायक बन रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्म दिवस के अवसर पर आज दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति का प्रेरणादायक जीवन सफर, विनम्रता और जनसेवा के प्रति समर्पण देशभर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रपति का जीवन संघर्ष से शिखर तक की अनुकरणीय गाथा है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि उनका जीवन नारी शक्ति की प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की शालीनता, संवेदनशीलता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा सभी का सदैव मार्गदर्शन करती रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान क्रांतिकारियों और साहित्यकारों की यह भूमि भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव स्तंभ है। उन्होंने कहा कि बंगाल की नई ऊर्जा राज्य के चहुमुखी विकास और स्वर्णिम भविष्य की प्रतीक बन रही है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बंगाल निरंतर प्रगति, समृद्धि और विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस संगोष्ठी का विषय वर्तमान समय में शास्त्रार्थ का अनुप्रयोग था। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने बताया कि भारतीय सभ्यता की वैचारिक शक्ति का आधार संवाद, तर्क और ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ ने सदियों से विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच सार्थक विमर्श को प्रोत्साहित करते हुए समाज को बौद्धिक दिशा प्रदान की है।
5: लोकतंत्र की जो आत्मा है वो शास्त्रार्थ में बसती है, संवाद में बसती है। संवाद का अर्थ है सकारात्मक दृष्टिकोण से वाद विवाद। आज के युग में स्पीकर के नाते मैं कह सकता हूँ, मैं प्रतिदिन ये महसूस करता हूँ कि शायद संवाद और सहन शक्ति उसमें कमी आ रही है और उसके पीछे का दृष्टिकोण ये है कि सब कुछ राजनीति से प्रेरित अगर हो जाएगा तो फिर सच कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, जो हमारे आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
4: पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भया निधि परियोजना के अंतर्गत नई दिल्ली में निर्भय चेतना पर 3 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
6: मंत्रालय ने कार्यक्रम के दौरान निर्भय चेतना प्रशिक्षण

0: शिक्षण मॉड्यूल भी शुरू किया। मंत्रालय ने कहा कि निर्भय चेतना महिलाओं से संबंधित मुद्दों, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा भी शामिल है, के प्रति पुरुषों के जागरूक करने की एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। पंचायती राज के सचिव विवेक भारद्वाज ने कल सम्पन्न हुए कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और समान भागीदारी सुनिश्चित किए बिना विकसित भारत की परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नीट 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दिल्ली समेत भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने देशभर में मॉक ड्रिल आयोजित की। एनटीए ने कहा कि पुनः परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा के सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसमें CCTV निगरानी, आधार युक्त बायोमेट्रिक सत्यापन, परीक्षा सामग्री के परिवहन के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के साथ GPS सक्षम वाहनों का उपयोग तथा गोपनीय सामग्री को सील बंद प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित स्थानों तक सुरक्षित ढंग से पहुँचाने की व्यवस्था शामिल है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
1: इसी बीच दिल्ली सरकार ने भी पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास जिला प्रशासन की ओर से विशेष कूलिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां अभिभावकों के बैठने और विश्राम की व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, शिकंजी, ORS, चाय और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के बाहर ही छात्रों और उनके परिजनों के लिए प्रतीक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परीक्षा के दिन किसी भी परिवार को परिवहन, गर्मी या प्रतीक्षा से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि नीट अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में आज दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल द्वारा यशोत्सव 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग, अनाथ, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले उन विद्यार्थियों का सम्मान किया गया जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए UPSC, SSC, बैंकिंग, राज्य सेवा, खेल, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यशोत्सव केवल एक सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि संघर्ष, संकल्प और सफलता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि आज सम्मानित हो रहे विद्यार्थियों ने यह सिद्ध किया है कि सही अवसर, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी सपना असंभव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
3: ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग, जो सभी आयु वर्ग के लिए योग के महत्व पर बल देता है। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा देशभर में लगभग 100 स्थानों पर विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। कल दिल्ली सरकार भी योग दिवस के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस आयोजन के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित विशेष योग कार्यक्रम में शहरवासियों के साथ योग करेंगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जिसने आज पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सकारात्मक जीवन का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का विज्ञान है, जो वर्तमान समय की व्यस्त जीवन शैली में व्यक्ति को मानसिक शांति, ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील भी की है। योग कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सेंचुरी परिसर में विकसित भारत नर्सरी का निरीक्षण करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री वहां उगाए जा रहे विभिन्न देशी वृक्षों, पौधों और जैव विविधता संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करेंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
1: इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
5: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं कल तड़के 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर के आज आखिरी दिन लोगों में अधिक उत्साह देखा गया। शिविर में नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। शिविर में लोगों ने राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्ध और विधवा पेंशन, नए जल कनेक्शन, आधार पंजीकरण, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर त्वरित प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने आज पांडव नगर पुलिस स्टेशन में थाना दिवस जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों और शिकायतकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और अपनी शिकायतें, चिंताएं और सुझाव साझा किए। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत अब तक 209 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें से 161 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए। पुलिस ने बताया कि तकनीकी निगरानी और समन्वित जांच से मोबाइल फोन का पता लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में आज भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त अन्नदाताओं के अथक परिश्रम और योगदान के प्रति सम्मान का प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कल होने वाली नीट प्रवेश पुनः परीक्षा के लिए विशेष तैयारियां की। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दिल्ली सहित पूरे विश्व में मनाया जाएगा।

0: साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजे है। अब पेश है मुशायरा।
2: सामीन की खिदमत में कलीम अहमद का आदाब। सामीन, हम सब जानते हैं कि शायरी दिलों को जोड़ने, एहसासात को जगाने और मुआशरे में मोहब्बत व रवादारी को फ़रोग देने का एक हसीन जरिया है। मुशायरे लोगों के दिलों में उखुवत, सुलह आश्ती और एहसास हमदर्दी पैदा करने का एक मुअस्सर वसीला हैं। अखलाकी और समाजी रवैयों को संवारने का काम करते हैं और मुआशरे में अमन, हमाहंगी और इंसानी हमदर्दी को फ़रोग देते हैं। इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए आज की इस महफिल सुखन में हम आपके लिए एक मुशायरा लेकर हाजिर हुए हैं, जिसकी निजामत कर रहे हैं जनाब शकील जमाली।
3: आज की इस नशस्त में जो शोराए किराम हिस्सा ले रहे हैं उनमें मोहतरम जनाब नसीब खान साहेब, जनाब परवेज शहरियार साहेब, आसिफ अमान सैफी और मैं शकील जमाली। तो सबसे पहले एक ताज़ा कार और ख़ूबसूरत लब लहजे के शायर आसिफ अमान के रूबरू चलता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ उनकी शायरी के लिए। आसिफ अमान सैफी।
4: बेहद शुक्रिया। एक ताज़ा गज़ल के चंदाशाह मुलाजा फरमाएं। मतलब, पलकों पे रखे ख्वाब से कुछ हो नहीं रहा, पलकों पे रखे ख्वाब से कुछ हो नहीं रहा, होठों पे इनकलाब से कुछ हो नहीं रहा।
5: बहुत अच्छा, क्या बात है,
3: बहुत अच्छा।
4: कुछ और ही जहां हो ये मेरे हिसाब से,
3: क्या बात है,
5: कुछ और ही
4: जहां हो ये मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं रहा।
3: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
4: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर,
5: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर,
4: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर, जब आपके जवाब से कुछ हो नहीं रहा।
5: क्या बात,
3: बहुत अच्छा।
4: खुद से सवाल कीजिए अपने जवाब पर, जब आपके जवाब से कुछ हो नहीं रहा। अब फिर से माहताब की दरकार है उन्हें,
3: अब फिर से माहताब की दरकार है उन्हें,
4: अब उनका आफताब से कुछ हो नहीं रहा। क्या कीजिए कि खत्म हो अंदर की उजलतें,
5: क्या कीजिए कि खत्म हो अंदर की उजलतें,
4: बाहर की आबो ताब से कुछ हो नहीं रहा।
3: बहुत अच्छा,
4: कुछ सोच कर जनाब नहीं कर रहे हैं कुछ।
3: क्या बात है,
4: कुछ सोच कर जनाब नहीं कर रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं जनाब से कुछ हो नहीं रहा।
5: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा।
4: कुछ सोच कर जनाब नहीं कर रहे हैं कुछ,
3: ऐसा नहीं जनाब से कुछ हो नहीं रहा।
4: हम पर मजीद कहर कोई पड़ना चाहिए,
3: हम पर मजीद कहर कोई पढ़ना चाहिए,
4: बदलाव इस अजाब से कुछ हो नहीं रहा।
5: क्या बात, बदलाव इस अजाब से कुछ हो नहीं रहा।
4: एक गजल के चंद अशआर और देखेगा। मतलब यूं है कि सारे मजहब थे एक आंगन था,
3: सारे मजहब थे एक आंगन था,
4: काबिले फख्र अपना बचपन था।
3: बहुत अच्छा, बहुत
4: अच्छा। सारे मजहब थे एक आंगन था, काबिले फख्र अपना बचपन था, ये खला दोस्त भर नहीं सकते।
3: क्या बात,
5: ये खला दोस्त भर नहीं सकते,
4: ये खला दोस्त भर नहीं सकते, वो खुले दिल से मेरा दुश्मन था।
3: क्या बात, बहुत अच्छा।
4: ये खला दोस्त भर नहीं सकते,
3: बहुत अच्छा,
4: वो खुले दिल से मेरा दुश्मन था। अब उसी बात पर पशेमा है, अब उसी बात पर पशेमा है,
3: क्या बात है,
4: मुझसे जिस बात पर वो बदजन था,
3: क्या बात, क्या बात, क्या बात,
5: अच्छा बहुत खूब।
4: अब उसी बात पर पशेमा है, मुझसे जिस बात पर वो बदजन था, तेरे दर से ही जी नहीं भरता,
3: तेरे दर से ही जी नहीं भरता,
4: तेरे दर से ही जी नहीं भरता, शहर देखें तेरा बड़ा मन था,
3: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
5: अच्छा शेर,
4: तेरे दर से ही जी नहीं भरता, शहर देखें तेरा बड़ा मन था, और शेर देखें शेर आखिर की, एक दूजे के दिल में थे आजाद,
5: मतलब
4: एक दूजे के दिल में थे आजाद, कैसा मजबूत हुआ अपना बंधन था,
3: क्या बात, क्या बात,
5: वाह,
4: बहुत शुक्रिया। एक गजल और
3: जी फरमाइए।
4: यही तावीज का बस फायदा है,
5: यही तावीज का बस फायदा है,
4: यही तावीज का बस फायदा है, तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ है,
5: क्या बात है, बहुत खूबसूरत,
4: तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ है, बस फायदा है,
3: तुम्हारे हाथ का,
4: तुम्हारे हाथ का बांधा हुआ है, हमारे बीच एक रिश्ता बना है,
5: हमारे बीच एक रिश्ता बना है,
4: हमारे बीच एक रिश्ता बना है, तुम्हें भी उसने ही धोखा दिया है,
3: बहुत अच्छा,
4: हमारे बीच एक रिश्ता बना है, तुम्हें भी उसने ही धोखा दिया है, वो रूठा दोस्त वापस आ गया है, वो रूठा दोस्त वापस आ गया है, मगर बेसाख्ता पन जा चुका है,
3: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
4: और शेर बतौर खास के, तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है,
3: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है,
4: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है,
3: क्या बात, अच्छा, क्या बात,
4: तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है, ये रातें नींद से परहेज की हैं,
5: ये रातें नींद से
4: परहेज की हैं, इन्हें सोकर गुजारा जा रहा है,
3: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
5: बहुत खूब।
4: और शेर देखें कि जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, वो उन वक्फों की भाषा जानता है,
3: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
5: क्या क्या नहीं हुआ,
4: जो होते हैं मेरी बातों के दौरान, वो उन वक्फों की भाषा जानता है, चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें, चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें, इन्हें एक ख्वाब अक्सर देखता है,
3: बहुत,
5: वाह वाह,
4: चुराती हैं नजर मेरी ही आंखें, इन्हें एक ख्वाब अक्सर देखता है, तेरी तस्वीर उतारी जा चुकी है, मगर चेहरा वहीं पर रह गया है,
3: बहुत अच्छा, वाह। दोस्तों, ये थे आसिफ अमान सैफी साहब, जिनके कलाम से हम लोग महसूस हो रहे थे। अब हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है कि जो न सिर्फ शेरी सतह पे, बल्कि अगर उनका नसरी काम देखा जाए तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये शख्सियत शेरी सतह पे या नसरी सतह पे, कई असनाफ की हामिल एक ऐसी शख्सियत है कि जिसने अदब की कई असनाफ में तबाजमाई की है और कामयाबी के साथ उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। मैं यहाँ परवेज़ शहरयार साहब की खिदमत में मुल्तमिस होना चाहता हूँ उनकी शायरी के लिए। मोहतरम परवेज़ शहरयार साहब,
6: बहुत शुक्रिया शकील जमाली साहब। मैं अपनी नसीब नज़म पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है गुम हो गई है कोई से। मेरा कयास था कि जीस्त के लम्हात तेरी अंबरी जुल्फों के दाम में गिरफ्तार हुए बगैर भी गुजर जाएंगे,
3: क्या बात है, क्या बात है।
6: मेरा कयास था कि जीस्त के लम्हात तेरी अंबरी जुल्फों के दाम में गिरफ्तार हुए बगैर भी गुजर जाएंगे, लेकिन ये मेरा वाहमा था। तेरी याद किसी मौज दर मौज हल्के गिरदाब के मानिंद उलझती ही रही तमाम उम्र, कभी चैन लेने ही न दिया। सोचा था कि तेरी चश्मे शीरी के मासिवा और भी पुरकशिश राहें हैं,
5: बहुत अच्छा,
6: मरमरी बाहें हैं,
5: बहुत अच्छा,
6: तेरी मरमरी बाहों के सिवा,
3: बहुत अच्छा।
6: लेकिन ये मेरा वाहमा था, यादें तेरी जुल्फ गिरागीर की एक अरसा

0: तलाशी के बाद अब मैं उस मोहतरम शख्सियत के हुजूर चलता हूँ कि जिनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। वो बेक वक्त शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुतरजिम भी हैं, मुदर्रिस भी हैं। तर्जुमे का इतना बड़ा काम है उनका, कई जबानों के आशना मोहतरम नसीब खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उनसे आज इस्तफादा करें, उन्हें सुने और इस खूबसूरत मौके का फ़ायदा उठाएँ। नसीब खान साहब,
1: बहुत शुक्रिया शकील साहब। दो नज़में पेश खिदमत हैं। पहली नज़्म का उन्वान है कच्ची उम्र की दुल्हन।
0: क्या बात।
1: रात ख्वाब में देखा खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा।
0: क्या बात।
1: रात ख्वाब में देखा खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा। चिलमने हैं सतरंगी कच्ची उम्र की दुल्हन और किताब हाथों में गुंजलक पहेली की। दामनों में सफ़ों के बेल और बूटे कुछ मुख्तसर फसाने भी हैं। सरे वरक भी कुछ सरगुजश्त परियों की। तेल और दिया बाती कांपती दुलाई की। मलगजे से कोनों में हैं कशीदा रूसाए।
0: क्या बात।
1: दो कहार एक डोली एक मुश्तैल मरघट। आखिरी वरक पर है नौजवान एक बेवा लाल सुर्ख पैराहन। अहमरी किनारों पर कोपले हैं नौ रुस्ता और दमकता मुखड़ा भी है गुलाल आलूदा।
0: क्या बात।
1: लकड़ियां हैं चंदन की उड़ रहे हैं अंगारे। नौजवान बेवा एक नौजवान है बेवा एक तड़प है बिस्मिल की। डोमनी से जेरे लब बोलती है जाने क्या,
0: क्या बात।
1: और
0: क्या
1: चिता पे चढ़ती है डाल किर्म खुर्दा सी। डोमनी उठाती है और निगाह एक फासिद डालती है बेवा पर।
0: क्या बात।
1: ढेर है कि लकड़ी का राख एक मुट्ठी भर। बेपलक है दो आंखें ढूंढती हैं पलकों ढूंढती हैं नौहागर। डोमनी रुदाली को दूर अलग थलग बैठी तौकदार कुमरी एक भूखती उबलती है। नींद टूट जाती है।
0: बहुत अच्छा।
1: नींद टूट जाती है।
0: बहुत।
1: आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा। आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा। खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा ख्वाब मैंने दोहराया।
0: बहुत अच्छा।
1: मरघटों के सीनों पर हैं अघोर पंथी कुछ। राख से चिताओं की हड्डियां उठाएंगे मस करेंगे गालों से। गर्म राख से अक्सर रकलदार मांजेंगे और नाफ रगड़ेंगे हड्डियों से एड़ी की। बूढ़ा सोच कर बोला कांच की सुराही में नाचता हुआ इंसान बेबसी की शहनाई तालियां बजाएगा। शोभदे कलंदर के है नजूल सहबा का। जिस मुजा के उतरन भी तार हाय सीमो जर होंगे शहद के छत्ते होंगे शहद के छत्ते। रात ख्वाब में देखा।
0: क्या बात है। क्या
2: बात है। बहुत अच्छा। मंजर निगारी का तो कमाल।
1: दूसरी नज्म का उनवान है एक सियाह मर्ज होगा।
0: जी शायद।
1: रात ख्वाब में देखा नीम जान करगस सिक ना उम्मीद कुछ तरसा। तौलता है पर अपने पास गोरकन बूढ़ा नीम जान करगस से जेरे लब मुखातिब है। शाम है जमिस्ता की और दबीज है कोहरा सरमगी सी चादर के। शाम है जमिस्ता की और दबीज है कोहरा सुरमगी सी चादर एक दूर आसमानों से अब उतरने वाली है। माबदों के जीने सब बांग देने वाले हैं। रात मुर्गो माही के खान सजने वाले हैं।
2: क्या बात है।
1: आज तुम यहीं ठहरो शहर में खमोशा के वक्त के सलासिल के मुनहनी से कैदी हो। चाहते हो गर्दिश क्यों राह एक बेगानी। लाल जानवर वहशी मुश्क नाप की खातिर तुमको नोच डालेंगे शहर में खमोशा के आना सहल।

0: कितना है, पर यहां से जाने के रास्ते गुजरते हैं ऊंघते शराबों से, मुस्तरद मकानों से, झाग जिस्म पानी से, कल अदम जमानों से।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: शहर में खामोशा के आना सहल कितना है, पर यहां से जाने के रास्ते गुजरते हैं ऊंघते शराबों से, मुस्तरद मकानों से, झाग जिस्म पानी से, कल अदम जमानों से। राहगीर भी गुमसुम हापते झपटते हैं, शाहिबा सफा हूं मैं, काजिए जहां हूं मैं। बात मान लो मेरी, आज तुम यहीं ठहरो, वरना बाव के झोंके, वरना बाव के झोंके और बगुले शोरीदा, सारी खाक कब्रों की डाल जाएंगे तुम पर, और जमीन की गहराई रास आती जाएगी तेवरों की दुनिया से, दूर एक दुनिया में चोबदारों के दस्ते और संतरी सारे, धारदार कतबों के बेशुमार टुकड़ों से संगसार कर देंगे या कि जबह कर देंगे। आज तुम यही ठहरो शहर में खामोशा के, बस पलक झपकते ही झिलमिलाने लगता है और एक नया मंजर, नीम जान करगस फिर तौलता है पर अपने, अधमरी सी कुमरी एक झूलती है गर्दन में, नीम जान करगस की
1: क्या बात,
0: अधमरी सी कुमरी एक झूलती है गर्दन में, नीम जान करगस की, माबदों के जीने सब बांग देने लगते हैं, नींद टूट जाती है, नींद टूट जाती है।
1: बहुत
0: आओ भाई आओ, तुम बोलो ख्वाब क्या देखा, नीम जान करगस सिख ना उम्मीद कुछ तरसा, तौलता है पर अपने, ख्वाब मैंने दोहराया।
1: बहुत अच्छा।
0: सख्त जहाँ दरिंदे हैं और वो होश जिन्नाती, करवटें तो बदलेंगे दांत कटकटाएंगे, हुक्मरान शेरों के फील्बा सजीले सब सैद होंगे हाथी के, और असीर पंजों के आजमाएंगे जादू, बूढ़ा सोच कर बोला। और गिजा में शेरों की, हाथियों के बच्चों की, ताजियानों के टुकड़े धारदार अनी होंगी, हाथियों के पैरों में आबले पड़े होंगे, जंगलों के राजा को एक सियाह मरज होगा, एक सियाह मरज होगा।
1: बहुत अच्छा।
0: रात ख्वाब में देखा, ये रात ख्वाब में देखा।
1: बहुत अच्छा,
2: बहुत खूबसूरत।
1: दोस्तों ये थे नसीब खान साहब, जो बहुत खूबसूरत नज़मों से हमें नवाज रहे थे। आज की ये नशस्त यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। आज की इस नशस्त में जो शोराए किराम हिस्सा ले रहे थे, उनमें जनाब नसीब खान साहब, जनाब परवेज शहरियार, जनाब आसिफ अमान सैफी और मैं आपका खादिम शकील जमाल ही। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।
3: समय अभी आप सुन रहे थे ये मुशायरा, जिसकी तरतीबों पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। समीन, हम सब जानते हैं कि वक्त के साथ साथ जब मुआशरे में मशीनी ज़िंदगी और मसरूफियात बढ़ रही हैं, ऐसे में मुशायरे दिलों को करीब लाने और मुस्बत सोच को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये इंसान को रोज़मर्रा की दौड़ धूप और ज़हनी दबाव से कुछ लम्हों के लिए सुकून फराहम करते हैं। अब इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान कलीम अहमद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
4: अभी आप सुन रहे थे मुशायरा, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए बेवफा फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं उदित नारायण, गीतकार हैं समीर अंजान और संगीतकार नदीम श्रवण।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म कारवां से। गायिका है लता मंगेशकर। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म एक था टाइगर से। आवाजें हैं के और पलक मुच्छल की। गीत अन्विता दत्त का लिखा है एवं संगीत सोहेल सेन ने दिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं, अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया, कहा वैश्विक संकटों और

0: युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन रूप
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
5: We have been able to achieve that in the first.
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: They are all designed in India now.
4: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
7: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
4: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace.

0: Injured after a portion of a temple structure collapsed in Manvad Taluka of Maharashtra's Parbhani district today. The incident occurred when a large number of devotees had gathered at the temple for darshan. Rescue teams rushed to the spot and launched relief operations immediately. Around 20 to 25 people were rescued from the debris, while nearly 15 injured devotees are undergoing treatment at a nearby hospital. Prime Minister Narendra Modi and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis have expressed their condolences to the families of the pilgrims who lost their lives in the accident. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, here with us on the news at 9. International Yoga Day 2026, IDY 2026, will be celebrated tomorrow to mark the 12th International Day of Yoga, with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of IDY 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the common yoga protocol. More from our correspondent.
1: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
0: Iran's Joint Military Command announced today that the Strait of Hormuz has been closed once again, citing continued Israeli military operations in Lebanon and what it described as U.S. bad faith and a failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. In a statement broadcast on state television, the command warned that further measures have been prepared if what it called aggression continues. In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai today, as Yashasvi Jaiswal smashed an unbeaten century. Chasing a modest 219-run target, India raced to victory in just 28.4 overs, losing one wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls, while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashvani hai. खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत लगातार अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है क्योंकि उसका यह मानना है कि मामलात को जंग से नहीं बल्कि बाहमी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि कबायली तबके भारत की तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 18,000 करोड़ रूपये से ज्यादा मालियत की 23वीं किस्त जारी की। वजीर आजम कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर 2026 के योग के बैन अलावामी दिन की तकरीबात की क्यादत करेंगे। कल नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान सख्त निगरानी में कराया जाएगा। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी का हवाला देते हुए आबनाए हुरमुज को बंद कर दिया है। और क्रिकेट में भारत ने चेन्नई में तीसरे एक रोजा मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज के 3 मैच जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत की यह कहते हुए सताइश की है कि उन्होंने अपनी नजरियासाज हुक्मरानी और आलमी रहनुमाओं के साथ तामीरी राब्तों के जरिए आलमी मंजरनामे पर भारत के वकार और उसके असर व रसूख को नुमाया अंदाज से बढ़ाया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में राय रंगपुर के मकाम पर जनाब मोदी की मौजूदगी में एक बड़े जलसा आम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है। ओडिशा में मोहन चरण माझी सरकार के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया के कई खित्तों में टकराव और गैर यकीनी के हालात हैं, भारत ने सिफारती राब्तों और बाहमी मुफाहमत के जरिए तनाज़ात को हल करने की लगातार वकालत की है। जलसयाम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की पेशरफ्त को यह कहते हुए सराहा कि रियासत तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मशरकी भारत की नशोनुमा में अहम रोल अदा कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मरकज के पूर्वोदय नजरिए का मकसद मशरकी भारत के तेज रफ्तार फरोग के जरिए भारत की तरक्की को रफ्तार देना है।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि उन्हें सदर जमहूरिया के आबाई गांव पहाड़पुर में आने का शर्फ हासिल हुआ है। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली जिले में ताराकेश्वर के मकाम पर पश्चिम बंगा दिवस तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 18,880 करोड़ रुपए मालियत की पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल का योम तासीस मनाने के लिए मुनक्किदा एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। इन शोबों में रेलवेज, ज़राअत, देही तरक्की, माही परवरी और मवेशी परवरी के शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है।
3: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से
4: यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
2: योग का

0: बैनुल अक्वामी दिन कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैनुल अक्वामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैनुल अक्वामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क़यादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब कल सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वहां हजारों लोग शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फ़रोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: सकाफत की वजारत मुल्क भर के 100 सरकर्दा मकामात पर योग की खसूसी तकरीबात का एहतमाम कर रही है, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे, तारीखी मकामात और योगा की रिवायत को मजबूत करना है। इस पहल के तहत 12 सरकर्दा मकामात पर अहम तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। सकाफती राबतों की भारतीय कौंसल के साथ इश्तराक में बैरून मुल्क 210 से ज़्यादा भारतीय मिशन दुनिया भर में तकरीबन 2500 मकामात पर योगा तकरीबात का इनेकाद करेंगे। दिल्ली में अहम आवामी मकामात पर योगा तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिनमें शांति पथ के लॉन, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, CP सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन शामिल हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देंगे। इनमें INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय शामिल हैं। इनका डिजाइन बहरिया के जंगी बहरी जहाजों के ब्यूरो ने तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें तामीर किया है। इसका मकसद मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोज शिकन निजाम को मजबूत बनाना है। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तसव्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
2: गुज़श्ता 12 बरस के दौरान हुकूमत ने मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर ढांचा जाती इकदाम किए हैं। बाख्तियार भारत के 2 सबसे अहम सतून सेमीकंडक्टर इको निज़ाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की ज़बरदस्त तरक्की हैं। 76,000 करोड़ रुपये के बड़े अखराजात के साथ दिसंबर 2021 में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन का आगाज़ किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे मरहले का आगाज़ किया, जिसका मकसद सनत की क़यादत में तहकीक, टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए तरबियती मराकज और मुस्तकबिल के लिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तश्कील पर ज़ोर देना है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मिशन 1.0 ने इस अहम सनत के लिए बुनियाद फराहम की और मिशन 2.0 इको निज़ाम को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा।
3: The first mission was to start the industry in our country. It's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
2: भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त दी गई, जिससे सैटेलाइट को खला में भेजा जाना भी आसान हुआ। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। आकाशवाणी से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर

0: जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्कीयाफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी व सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: अहलियत और दाखिले से मुताल्लिक कौमी इम्तिहान नीट यूजी 2026 का कल दोबारा इम्तिहान होगा। कल होने वाले इस दोबारा इम्तिहान में मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में होगा। इम्तिहान से कबल इम्तिहानात के इनकाद से मुताल्लिक कौमी एजेंसी NTA ने आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल्स अंजाम दी, जिनके तहत सभी सिस्टम जैमर्स, CCTV, अमले की तलाशी और बायोमेट्रिक की जांच की गई। NTA ने कहा है कि वो बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: मुशाहिदीन, राबता करो, पुलिस दस्तों और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज्यादा अहलकारों को महफूज, शफाफ और बिला रुकावट इम्तहान के इनाकाद के लिए तैनात किया गया है। मुनसिफाना और शफाफ इम्तहान को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी तरीक़ेकार को बरवेकार लाया जा रहा है। इसमें CCTV से निगरानी, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक और इम्तहानात से मुतालिक सामान की नकलो हमल के लिए पुलिस हिफाजत के साथ GPS वाली मोटर गाड़ियां शामिल है। NTA भी सरगर्मी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रही है ताकि किसी भी तरह की गलत मालूमात और तौर तरीकों की रोकथाम की जा सके। ये इम्तहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। दस्तावेजी अमल को मुकम्मल करने, उसकी तस्दीक और इम्तहान से मुतालिक दीगर जरूरतों को पूरा करने के लिए इजाफी 15 मिनट फराहम किए जाएंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
2: ईरान की मुश्तरका मिलिट्री कमान ने ऐलान किया है कि अबनाए हुरमुज को फिर से बंद कर दिया गया है। उसने लबनान में इसराइल की फौजी कार्रवाई जारी रहने और लड़ाई के खात्मे के लिए अपने वादों को बरकरार रखने में अमरीका की नाकामी को इसकी वजह बताया है। सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में ईरान की मिलिट्री कमान ने यह तंबीह की कि अगर बकौल उसके जारहियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। आज चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में 3 एक रोजा बैन अल्कामी क्रिकेट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी बनाई और वो नॉट आउट रहे। भारत को जीत के लिए 219 रन का निशाना मिला था, जिसे उसने 28 ओवर्स और 4 गेंदों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जायसवाल ने 86 गेंदों में शानदार 110 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 79 रन स्कोर किए। इससे कबल भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के शुरुआती बल्लेबाजों को आउट करके शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 4 विकेट हासिल किए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत लगातार अमन, मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है, क्योंकि उसका यह मानना है कि मामलात को जंग से नहीं बल्कि बाहमी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 23वीं किस्त जारी की। वजीर आजम कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर 2026 के योग के बैन अल्कवामी दिन की तकरीबात की क्यादत करेंगे। और क्रिकेट में भारत ने चेन्नई में 3रे एक रोजा मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज के 3 मैच जीत लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
4: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
5: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

0: यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955।
1: झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल।
0: सन 1956 में राजा नवाथे की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा और तब जाकर

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये, और दूसरा गाना था ये।

1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर
0: पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे

0: सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे,
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेला।

जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला। जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10,00,000 रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55,00,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह

0: का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे, वीआर, एआर, एक्सआर और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म, क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: पड़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया,
2: फिर कोई
1: फिल्म सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदीप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Shrimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं वारी जाऊं रे तुम पे। द्रुत रचना तीन ताल में है जिसके बोल हैं चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: राग श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसके बोल हैं कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Rag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Rag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: ये था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे

देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सोना नहीं चांदी नहीं मगर जाने तमन्ना। आज पता नहीं क्यों ख्याल आया कि आपसे ये सवाल किया जाए, कि हालांकि बहुत सारे लोग मेरी बात से शायद नाराज़ भी हो जाएं और उन्हें लगे कि आज तलत नहीं क्या बात कर दी। तो चलें, अब कभी कभी ऐसा भी हो जाना चाहिए कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या बात कर दी है। तो बात ये कर दी है कि जनाब, एक पढ़रे पर इश्क है, दूसरे पर दौलत है, और जो तराजू है उसकी जो कमानी है वो इधर है कभी उधर है। तो किसको बराबर करने के लिए क्या चीज़ इधर से उधर रखी जाएगी, या कुछ और उसमें क्या रखा जाएगा कि दोनों पढ़ले बराबर हो जाएं? आप हमें बता सकते हैं ईमेल करके। हमारा ईमेल आईडी है iprediodelhi@gmail.com, iprediodelhi@gmail.com। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ।

तो जी हर बार की तरह इस बार भी सतीश अनेजा जी जो हैं वो सबसे पहले हमारे लिसनर हैं, हमारे सवाल का जवाब देने वाले। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका सतीश जी कि आप सवाल सुनते भी हैं और जवाब देते भी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे और भी लिसनर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, उनमें ज़रूर मेरे सवाल का जवाब भी होगा। अच्छा, जब आप किसी के सवाल का जवाब देते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि आपने उसे जवाब दे दिया है उसकी बात का, उसकी जो क्वेरी थी, जो उसका प्रश्न था, उसका उत्तर मिल गया तो बात खत्म। नहीं, कहीं ना कहीं आप उस जवाब के जरिए खुद को भी कहीं ना कहीं किसी एक डाउट को क्लियर कर रहे होते हैं, आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे होते हैं जब आप किसी को किसी समस्या का हल बता रहे होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन ठहर के सुनेंगे समझेंगे। तो बात सच में यही है कि सवाल के जवाब देते देते कई बार आपके खुद के कई सवाल सुलझ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि सतीश जी हमसे क्या कह रहे हैं। सतीश जी चंडीगढ़ सिटी से हमें मैसेज कर रहे हैं, उनके साथ हैं बिमला अनेजा भी, और आप कहते हैं कि तराजू के एक पलड़े में इश्क और एक में दौलत है। इश्क सुकून देता है, दौलत सुख तो देती है, लेकिन रिश्तों को भुला देती है। इश्क का पलड़ा झुका हुआ रह सकता है जब हम इश्क को इबादत मान लेते हैं। इश्क ही रब की नेमत है जो हमेशा आपको नूर और सुरूर देती है, और दौलत आनी जानी है, उसको गहराई में उसकी गहराई में नहीं जाना चाहिए। आपके ये ख्यालात हैं और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उर्दू का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है आपने, बहुत बेहतरीन बात कही है। ख्यालात भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन लेकिन लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बेटा इश्क से ना पेट नहीं भरता, कुछ वक्त के बाद ये जो पापी पेट है ना उसमें से आवाज़ें आने लगती हैं। पहले हल्की आवाज़ आती है तो आप खुद महसूस करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज़ें तेज़ हो जाती हैं। तो जिससे आप बहुत इश्क कर रहे हैं ना, उस तक भी आपकी आवाज़ जाती है, तब क्या कीजिएगा। तो जवाब आप हमें दीजिए, ज़रूर दीजिए, अपनी फरमाइशें भी भेज रहे हैं आप। मैं मुस्तकिल देख रही हूँ कि हमारा इनबॉक्स जो है वो भरा हुआ है, लेकिन जवाब सिर्फ एक का आया है।

तो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ज़रूरी मैसेज मैं आपको सुना रही हूँ, और उसके सब्जेक्ट में लिखा है आपको प्यार भरा नमस्कार, और ब्रैकेट में लिखा है सिर्फ एक ही मेल। और ये बेहतरीन काम करने वाले हैं हमारे अभिजीत गवहानकर राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश और बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवहानकर, सिद्धांत, अर्जुन गवहानकर और टुक टुक। आपने बहुत ही अच्छा ये किया है कि लिख दिया है कि एक ही मेल, जो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे ख्याल से हमारे सभी साथी अपने सभी साथियों से कहते हैं प्लीज़ एक ही बार मेल भेजें। यासीन अनजान ने हमें मैसेज किया है और आप एक गीत सुनना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप सुन रहे होंगे कार्यक्रम और पसंद भी सुनी होगी। आप झारखंड से हमें मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ बाल किशन सिंह ने हमें मैसेज किया है हरियाणा से, आपके साथ हैं राजेश और सुमन। नंद किशोर घाटे जी ने हमें मैसेज किया है और आप बीड शहर महाराष्ट्र से हमें मैसेज कर रहे हैं। कमल ने हमें मैसेज किया है और मैसेज आया है हमारे पास मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा और ऋतिक का भी। इसके साथ मैसेज हमारे पास आया है कैथल हरियाणा से, लिखने वाले हैं जयवीर। गव्या मल्होत्रा ने हमें मैसेज किया है, मसरूर हसन का मैसेज सहारनपुर से है और मैसेज है हमारे पास सुदर्शन शाह का। इसके साथ राजेश वर्मा का हमारे पास मैसेज पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश से। कमल बालूजा ने हमें मैसेज किया है, भूषण खेरा का मैसेज आया है और आप हमें पंजाब से मैसेज कर रहे हैं। आपने बहुत खूबसूरत मैसेज की शुरुआत की है और बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे प्यार के लिए। और आप के साथ हैं विशाल खरे, विशु और लाडली खेरा और शालिनी, तिवाशिनी वानी, और एक भी इसमें आपने ब्रेक नहीं लगाया है, बी कॉमा नहीं दिया है, तो ज़रा मुश्किल हो रहा है। और आपने की है एक गीत की फरमाइश, तो भूषण जी कोशिश रहेगी कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए। अनिल मोहन का हमारे पास मैसेज आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, और मैसेज हमारे पास पहुंच चुका है राजकुमार डूडी का, और आपके साथ हैं प्रमोद डूडी, आप हमें हिसार से मैसेज कर रहे हैं। जसबीर सिंह ने हमें मैसेज किया है जिंद हरियाणा से, और मेहर अरोड़ा का हमारे पास मैसेज आया है पदमपुर श्री गंगानगर से। पूनम गगनेजा ने हमें मैसेज किया है और आपने कहा है कि किसी भी गीत में आप हमें शामिल कर लें। रियासत हुसैन ने हमें मैसेज किया है जसपुर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से, माफ़ कीजिएगा। और राधेश श्याम शर्मा का मैसेज आया है, आपकी फरमाइश भी हम तक पहुंच चुकी है। और अकरम हुसैन प्रिंस ने हमें मैसेज किया है। सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।

अगर कोई चाहने वाला आपको मिल जाए और ऐसा कोई ख़ास मिल जाए तो जीने के जो सहारे हैं ना वो मिलने लगते हैं और ज़िंदगी जीने के जो इशारे हैं वो भी मिलते हैं कि अब ज़िंदगी ज़रा आसान हो गई है, कि आपको कोई चाहने वाला, आपको कोई पसंद करने वाला मिल गया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके साथ जन्मजात होते हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स, वो आपको मिले हुए होते हैं। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग के जिनके पास उनके पेरेंट्स होते हैं एक अच्छी उम्र तक। उन्हें बहुत, मैं कहूँगी कि बहुत बहुत अच्छी बात ये रहती है कि वो उनके साथ हैं और खुदा करे कि सबके पेरेंट्स उनके साथ बने भी रहें। तो सबसे पहली मोहब्बत की जो पाठशाला है ना जनाब, मुझे लगता है वहीं से शुरू हो जाती है। और बात हम इश्क की भी कर रही हैं तो जीने के सहारे और जीने का तरीक़ा जो है हम अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। और मैसेज आ गया है हमारे पास कुरनूर से, आदिल कमर का। वो कहते हैं कि इश्क बहुत ही पाक और साफ है, इश्क से बढ़कर कोई नहीं इंसाफ है। तो आपको लगता है कि पैसे की जगह जो इश्क है वो मतलब रखा जा सकता है, वही इंसाफ है। मैसेज हमारे पास मुल्तानी ढांडा से आया है, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक का और मधु नायक का। आप कहते हैं कि प्यार और पैसा दोनों ही जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन दोनों की भूमिकाएं अलग हैं। बहुत ही खूबसूरत। हमारी निजी राय ये है कि सच्चा प्यार यदि जीवन में किसी को मिल जाए तो उसी प्यार के सहारे हम पैसे की ज़रूरी राह को आसान बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत ख्याल है और बहुत अच्छा जवाब है आपका, और शुक्रिया कि आपने जवाब दिया अनिल मोहन जी ने भी, और इतना अच्छा आपने हमें जवाब दिया है। तो कमर साहब ने भी हमें जवाब दिया है इस सवाल का, लेकिन जो सही बात कही है वो अनिल जी

कही है कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, और मोहब्बत जताने के लिए भी कुछ ना कुछ तो सामान चाहिए होता है कि भाई मोहब्बत बहुत है, और वो सामान फ्री में तो मिलता नहीं है। एक फूल तोड़ने के लिए भी कहीं जाना तो पड़ेगा, तभी तो वो फूल तोड़ा जाएगा। और मैसेज हमारे पास और भी बहुत सारे आ चुके हैं। मैसेज हमारे पास आया है अब्दुल गफ्फार का, और उसके साथ है सोनू शिव विश्वकर्मा जी ने हमें मैसेज किया है। आपके साथ है मोनू माही संगीता, और आप हमें सलवा खेड़ी से मैसेज कर रहे हैं। प्रकाश वर्मा का हमारे पास मैसेज आया है। सोमदत्त ने हमें मैसेज किया है पटियाला पंजाब से। आपके साथ हैं कैरव ज्योति रानी और गुरमंत कौर। मैसेज हमारे पास आया है किशन सपकल जी का, और आज किशन सपकल जी ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हैं, और मैसेज हम तक पहुँचा है सुनील कुमार गुंड जी का। आप हमें कह रहे हैं कि सभी ने निवेदन है कि अच्छा जी कल सुबह योगा ज़रूर करें और बढ़ती उम्र के प्रभावों को घटाएं। आपको क्या पता कि मेरी उम्र क्या है, लेकिन हाँ हमारे सभी लिसनर्स हैं, हर एक उम्र के हैं, तो हर एक किसी को योगा करना चाहिए। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सभी योग ज़रूर ज़रूर करें। आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है सुनील जी। आप हमें पंजाब संगरूर से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं सुचिता और नैनीश गुंद। मैसेज हमारे पास आया है बबल जी का भी, और इसके साथ साथ मैसेज हमारे पास आया है रमेश कुमार का। फारूक अली खान ने हमें मैसेज किया है। बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मैसेज किया है। पी एस नवहानकर ने हमें मैसेज कर दिया है, और मैसेज कहाँ तक पहुंचा है हमारे पास। नारायण खर्चे जी ने मैसेज किया है। अहमद फुलवाले ने बहुत सारी दुआएँ दी हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आपका मेल ज़रूर शामिल करूं, तो लीजिए आपका मेल शामिल हो गया है। आप हमें मैसेज कर रहे हैं मुंबई करजत से, और इसके साथ साथ कापसरेड़ा नई दिल्ली से भी मैसेज किया है। बिटिया आमना नसरीन ने, अस्मा परी राबिया मंतशा आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली ने इसके साथ मुंबई से मैसेज किया है। दुखनी सदफ आरजू जूही इकबाल और इमरान अहमद फुलवाले ने मैसेज हमारे पास आया है। फागू राम यादव जी का भी, और इसके साथ हरजिंदर शिंदा जी ने भी हमें मैसेज कर दिया। आपके साथ है जसवीर जस्सी सीता। आप हमें पंजाब से मैसेज कर रहे हैं। मैसेज हमारे पास आया है जसबीर सिंह जी का भी। आप हमें जिंद हरियाणा से मैसेज कर रहे हैं। तो जी एक और बहुत खूबसूरत सा जो गीत है वो आपके इंतज़ार में है, उसे इंतज़ार ज़्यादा नहीं करवाते हैं।

मेरा अब वक्त इजाज़त नहीं देता कि ज़्यादा हम और देर करें, क्योंकि आपके मैसेजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। हमारे पास मैसेज आया है बबल मल्होत्रा का, आपके साथ हैं ओम प्रकाश मल्होत्रा और आप कह रहे हैं कि आपका मैसेज ज़रूर ज़रूर शामिल किया जाए किसी भी गीत में। आप हमें पंजाब मोहाली से मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ मैसेज हमारे पास आया है उषा मोहन का और आप हमें दिल्ली से मैसेज कर रही हैं। आपके साथ हैं अनिल मोहन और आप कह रही हैं कि आपको कार्यक्रम पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कार्यक्रम को पसंद किया और साथ हमें ये बताया कि आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने ये पूछा था कि एक तराजू है और उसके एक पढ़ले पर इश्क है, दूसरे पर पैसा है, धन दौलत है, और जो बीच की सुई है वो इधर उधर हो रही है। उसे बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए क्या, कहाँ, कौन सी चीज़ ऐड की जाए जो दोनों पढ़ले बराबर हो जाएं। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। कुछ लोग जवाब सोचकर अपने पास ही बैठे किसी इंसान को सुना कर बता कर खामोश हो गए। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या बात हो सकती है, क्या ऐसा ऐड किया जा सकता है कि दोनों जो पढ़ले हैं वो बराबर हो जाएं। मुझे लगता है कि किसी एक पढ़ले में जो इश्क वाला पढ़ला है उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी रखते हैं और जो पैसे वाला है उसमें थोड़ी सी मोहब्बत रखते हैं कि जब पैसे कमाएं तो मोहब्बत के साथ कमाएं और जब इश्क करें तो इस जिम्मेदारी के इश्क के साथ इश्क करें कि इसको निभाने के लिए भी हमें कमाना ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी में वो वक्त ज़रूर आता है कि जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस रखें, किसी भी चीज़ की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

और एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारे पास आया है और लिखने वाले हैं बबलेश पंवार, और आप हमें बाड़मेर से लिख रहे हैं। आपके साथ है डैनी और मास्टर मनीष। आप कहते हैं कि मोहब्बत को पाने के लिए हिम्मत चाहिए, ज़माने से टकराने की एक शिद्दत चाहिए, ये राह नहीं है कोई मखमली सेज जैसी, कांटों पर भी मुस्कुराने की आदत चाहिए, लकीरों को मोड़ने का हुनर होना चाहिए, रातों में जागने का सब्र होना चाहिए, आसान नहीं होता किसी के दिल में बसना, खुद को मिटाकर किसी को पाने की चाहत चाहिए। बहुत खूबसूरत, और आपने जिस अंदाज में सवाल का जवाब दे दिया बहुत लाजवाब है। और अब कार्यक्रम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है और मैसेज हमारे पास आया महेंद्र प्रसाद मोदी जी का, आपने गीत की फरमाइश की है, फिलहाल माफी चाहते हैं। कृष्णा पार्क से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवान ने मैसेज किया है, रफीक भाई पवार ने हमें मैसेज किया है, और अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, योग जरूर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर अब 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 12:10 पर कार्यक्रम होगा सुरों का सफरनामा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम है आकाशवाणी विशेष कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, स्वर सम्राट मोहम्मद रफी उद्घोषक की भव्य एक सुंदर बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में बेहतरीन रचनाएं आज आप सुनेंगे और सुनेंगे मोहम्मद रफी साहब की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन खूबसूरत बातें और बहुत सारी। जी हाँ, आकाशवाणी के इस विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में हार्दिक है सभी साथियों का। दोस्तों, कुछ आवाज़ें केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ स्वर केवल कानों तक नहीं पहुँचते बल्कि सीधे दिल में उतर जाते हैं। और जब भारतीय सिनेमा के सबसे मधुर, सबसे विनम्र और सबसे बहुरंगी स्वर की बात जी हाँ होती है, तो सबसे पहले जिनका नाम ख्याल में आता है वह है मोहम्मद रफ़ी साहब। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी एक ऐसी आवाज़ जिसने प्रेम को भी सुर दिए, विरह को भी, भक्ति भी और देशभक्ति भी, जिसने शेमे कपूर की मस्ती को स्वर दिया, दिलीप कुमार की गंभीरता को भी, जॉनी वाकर की शरारतों को भी और भारत की आत्मा को भी। साथियों, कुछ दिल के जज्बात कहना चाह रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत शायरी है। कहते हैं कि सुरों की बस्ती का वो बादशाह था, सुरों की बस्ती का वो बादशाह था, हर दिल में जिसकी आवाज़ की फना था, पनाह था। गज़ल भी उसकी थी, नगमा भी उसका था, संगीत के आकाश में जो चमकता महताब था। जहाँ दोस्तों, आज उसी फनकार की यादों के सफ़र पर चलेंगे जिसे दुनिया मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी, जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी नाम ही काफ़ी है। साथियों, शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत से और उसके बाद चलेंगे उनके सफ़र पर, एक से एक बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं और उनके बारे में जो जीवन परिचय होगा, जितनी भी जानकारियां हमारे पास उपलब्ध हैं उसी के अनुसार आपको बताई जाएंगी। तो आज शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही सुंदर गीत से, कितना प्यारा वादा, फिल्म कारवां से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ में ये शानदार रचना आ रही है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने। आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।

खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, कितना प्यारा वादा इन मतवाली आंखों का। जी हाँ, फिल्म कारवां से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे बहुत ही सुंदर गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत से सजाया राहुल देव बर्मन ने। तो बढ़ते हैं और उनकी खास जानकारियों की ओर। साथियों, मोहम्मद रफ़ी नाम नाम से ही पूरी दुनिया जानती है। या दोस्तों कुछ आवाज़ें केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ स्वर केवल कानों तक नहीं पहुंचते, बल्कि सीधे दिल में उतर जाते हैं। और जब भारतीय सिनेमा के सबसे मधुर, सबसे विनम्र और सबसे बहुरंगी स्वर की बात होती है, तो सबसे पहले जिस नाम का ख्याल आता है वह है मोहम्मद रफ़ी। एक ऐसी आवाज़ जिसने प्रेम को भी सुर दिए, विरह को भी, भक्ति को भी और देशभक्ति को भी, जिसने शिमी कपूर की मस्ती को स्वर दिया, दिलीप कुमार की गंभीरता को भी और जॉनी वॉकर की शरारतों को भी और भारत की आत्मा को भी। यह दोस्तों वाकई बहुत ही शालीन और बेहद हम्बल इंसान हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। आज उसी फनकार की यादों के सफ़र में चलेंगे जिसे दुनिया मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानती है। मोहम्मद रफ़ी जी का अगर हम जीवन परिचय बताएं तो उनका पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। जन्मस्थान कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर के निकट है और उनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद और माता का नाम अल्लाह रखी। या दोस्तों, और उनके बचपन के संघर्ष की बात करें तो बहुत ही अलग तरीके का, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, एक खूबसूरत कहानी जैसा ही लगता है हमें। बचपन का जो संघर्ष रहा है, कहा जाता है कि बचपन में रफ़ी साहब एक फ़कीर की आवाज़ की नकल किया करते थे। उस फ़कीर की तान सुनकर वे घंटों पीछे पीछे चलते रहते थे। उनके बड़े भाई ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और संगीत की शिक्षा दिलवाई। उन्होंने उस्ताद अब्दुल वाहिर खां, पंडित जीवनलाल भट्ट और फिरोज निज़ामी जैसे गुरुओं से संगीत की बारीकियां सीखी। तो फिलहाल एक और गीत सुनवाते हैं। अभी ये सिलसिला और ज़्यादा लंबा चलेगा ताकि धीरे धीरे उनका जो जीवन है, जीवन संघर्ष है और जो कुछ ऐसी बातें हैं वहाँ पर भी, उस सफ़र में भी ले चलेंगे, लेकिन साथ में एक सुरीली, सुंदर, बेहतरीन, खूबसूरत रचनाओं का जो समावेश बनने वाला है, आपको लगेगा कि हाँ वाकई रफ़ी साहब की बात ही अलग है ना। एक से एक बेहतरीन लाजवाब रचनाएं। तो फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी साथियों को, श्रोता साथियों को ज़रूर पसंद आएगा।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 और इंद्रप्रस्थ चैनल में भी आप सुन सकते हैं ये कार्यक्रम। साथियों, सभी साथियों को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इंद्रप्रस्थ चैनल और AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल को भी आप सराहें, प्यार करें और अपने कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे पर्सनल नंबर पे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे फिल्मी सफ़र की ओर। श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी साहब का फिल्मी सफ़र की जो शुरुआत हुई 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच में, जी हाँ, पहला गीत गाने का अवसर मिला। 1946 में वे मुंबई पहुंचे, पहला गीत तेरा खिलौना टूटा बालक, एक बहुत ही अनमोल और बेहद खूबसूरत गीत है ये और फिल्म अनमोल घड़ी का। फिलहाल हम जो अनमोल और सबसे पहला जो ब्रेक मिला था गीत का, तो वाकई पहली हिंदी फिल्म गीत तेरा खिलौना टूटा बालक, इसी फिल्म का एक गीत हम सुनवाने जा रहे हैं। और हमारे साथियों को शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि हाँ आपको पता है नहीं पता, लेकिन ये गीत वाकई उनका पहला गीत गुल बलोच फिल्म से था। तो सुनवाते हैं वो गीत, एक यूनिक बेहतरीन गीत, मोहम्मद रफ़ी साहब का पहला गीत का जो चांस मिला था वही गीत सुनवाने जा रहे हैं आपको। आशा करते हैं वो गीत शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ बहुत ही सुंदर गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये फिल्म 1946 प्रदर्शित फिल्म रही, गीत तनवीर नकवी के हैं और संगीत से सजाया है नौशाद साहब ने। तो आइए सुनवाते हैं ये बहुत ही यूनिक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही अनमोल और बेहद खूबसूरत अनसुना लाजवाब गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और दोबारा से हम बताए देते हैं इस गाने की जो डिटेल्स रही और जो उनका सफ़र रहा है, फिल्मी सफ़र। जी हाँ, फिल्मी सफ़र की शुरुआत 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच में पहला गीत गाने का अवसर मिला। 1946 में वे मुंबई पहुंचे और पहला हिंदी गीत तेरा खिलौना टूटा बालक, फिल्म अनमोल घड़ी से अभी आपने सुना। श्रोताओं, इसके बाद उनकी आवाज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफी साहब की गायकी विशेषताएं अगर हम बताएं तो न जाने कितनी ही विशेषताएं हैं उनके पास। 4 ऑक्टेव तक फैली आवाज, रोमांटिक सूफियाना अंदाज, भजन, कव्वाली, गजल, देशभक्ति, हास्य, हर शैली में महारत, अद्भुत उच्चारण, भावों को जीवंत कर देने वाली क्षमता, विनम्रता और अनुशासन। सुने अनसुने ऐसे किस्से हैं जिन्हें हम यदि बताने पर आए तो न जाने कितना समय लग जाएगा। लेकिन साथियों, सुरों का सफरनामा जो भी कार्यक्रम होता है 50 मिनट का होता है, उसी में ही हमें समाहित करना होता है वो पूरी जानकारी जितनी हमारे पास मौजूद रहती हैं, और गीत भी हम प्ले करते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि शीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप सब तक पहुँचनी चाहिए, और पहुँचाने का कार्य हम कर रहे हैं और साथ में गीत का आनंद भी दिला रहे हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम है सुरों का सफ़रनामा। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। बढ़ते हैं उनकी और खूबसूरत कुछ ऐसी रचनाएं, कुछ ऐसी बातें जो शायद ही बहुत ही कम सुनने को मिली होंगी। हाँ, वैसे तो जग जाहिर है रफ़ी साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, और ऐसा कोई साथी नहीं है जो रफ़ी साहब के बारे में नहीं जानता हो। उनकी खासियत रही है कि वो रफ़ी साहब 1 रुपये की फीस कई नए संगीतकारों के लिए रफ़ी ने केवल 1 रुपये में गीत गाए हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत बड़े मददगार इंसान भी रहे हैं। कहा जाता है कि वे ज़रूरतमंद कलाकारों की गुप्त रूप से अधिक सहायता करते हैं और आर्थिक सहायता करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जब संगीतकार जोड़ी संघर्ष कर रही थी

तब रफी साहब ने बहुत कम पारिश्रमिक लेकर उनके लिए गीत रिकॉर्ड किए। और भी जानेंगे उनके बारे में कुछ बातें। फिलहाल एक सुंदर गीत आ रहा है आपके पास।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत। साथियों हमारा प्रयास रहे, हालांकि 7,000 से भी ज़्यादा उन्होंने गाने गाए हैं, लेकिन हमारी कोशिश आज इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ आज कि कुछ ऐसे गीत हों जो पहले कभी नहीं सुने हों। सुने तो हों लेकिन कम सुने हों। अक्सर हम देखते हैं कि भाई जो भी गीत आ रहे हैं वो रैंडमली कोई भी गीत आते हैं लेकिन वही पसंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसे हज़ारों हज़ारों गीत छूट जाते हैं जो सुनने से महरूम हो जाते हैं वो साथी। हमारी कोशिश आज वही है, तो आज सुनवा रहे हैं एक और खूबसूरत गीत और इसके बाद और भी जानकारियों के साथ।

बेहद खूबसूरत गीत। साथियों, रफ़ी साहब के बारे में ऐसी तमाम जानकारियां हैं, और जो भी गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, अभी आपने सुना। और बढ़ते हैं साथियों, मोहम्मद रफ़ी और इतनी लोकप्रियता के बावजूद भी उन्होंने स्टूडियो में सबसे पहले पहुंचने वाले कलाकारों में गिने जाते रहे हैं हमेशा। मोहम्मद रफ़ी और अभिनेता जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, या फिर जो कलाकार रहे हैं, अदाकार रहे हैं, उनकी आवाज़ बनी, रफ़ी साहब की आवाज़ बनी है। अगर हम बात करें किन किन के साथ उन्होंने जो अपनी आवाज़ दी है उन कलाकारों को, सबसे पहले हैं दिलीप कुमार, देव आनंद, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र और जॉनी वाकर। और इसके अलहदा जो दशकवार अगर हम बताएं तो उसमें 1940 के दशक में, जैसे कि हमने बताया 1940 की जो फिल्म थी मेरा तेरा खिलौना टूटा बालक, जी हाँ, और साथ में यहाँ बदला वफा का जो 1947 प्रदर्शित हुआ था, और 1950 का दशक की बात करें तो सुहानी रात ढल चुकी, न जाने कब आओगे, 1949 लोकप्रियता के 50वें दशक में दुनिया के रखवाले, और दुनिया के रखवाले जो 1952 प्रदर्शित फिल्म रही, मन तड़पत जय हरि दर्शन को आज 1952 में ही, और ये जिंदगी के मेले 1955, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए 1957, ये दशकवार हम बता रहे हैं। और मधुबन में राधिका नाचे रे 1958, 1960 का जो स्वर्णिम दशक रहा चौधरी का चांद हो जो 1960 का दशक रहा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को जो 1961 में प्रदर्शित फिल्म में इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, और एहसान तेरा होगा मुझ पर 1961 में, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा 1963 में, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे 1964 में, बहारो फूल बरसाओ 1966 में, दिल के झरोखे में 1968, और बड़ी मुश्किल है 1969, 1970 का दशक ये दुनिया ये महफिल 1970, पर्दा है पर्दा 1977, क्या हुआ तेरा वादा 1977, आदमी मुसाफिर है 1977, दर्द दिल दर्द जिगर 1980, यादगार गीतों की श्रेणी रही हैं। वाकई बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत इनकी जर्नी रही है हमेशा हमेशा। और ऐसा कौन सा गीत, ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें रफ़ी साहब गीत नहीं गा सकते? ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो पारंगत हैं उस भाषा में, एक से एक बेहतरीन सुंदर गाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हिंदी है या कुछ और है, ऐसा लगता है कि बस पानी की तरह उनकी ज़बान से एक सुंदर तरीके के जो गीत हैं, अल्फाज जबरदस्त, प्रोनाउंसिएशन जिसे कहते हैं। और मन तड़पत राय हरिजन को, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, सुख के सब साथ ही दुख में ना कोई, कव्वालियों के भी बड़े माहिर रहे हैं, ये इश्क है ये इश्क, इश्क ये पर्दा है पर्दा। और देशभक्ति की बात करें तो वाकई बहुत ही शानदार भी, बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं, कर चले हम फिदा वतन पे जो फिदा होगा। रोमांटिक गीत की अगर बात करें तो तेरी आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है, बहारो फूल बरसाओ, चौदवी का चांद हो, पुरस्कार न जाने कितने ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें। फिलहाल हम सुनवा रहे हैं कुछ ऐसे खूबसूरत गीत जो आप सुनना चाहते हैं। Thank you.

0: सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दूं बापू?
0: बोल दे बेटा। बाप

0: बापू।
1: अरे की है बरखुरदार,
0: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं हूं लाचार।
2: की है बोल भी।
0: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार, रहती है गोरी गोरी गरीब किसान की छोरी, मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
1: हाय ठीक है ठीक है, प्यार की होए आए प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
1: बोल दे बेटा।

0: ठीक है बापू मैं जाता हूँ, आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए कठे जाए, मेरी बात भी तो सुने।
2: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ जा।

0: दिन बदले में राजा से एक एक के हजार लाऊंगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार, ये कल मुही को सोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात, ले ले बढ़ा दो हाथ।
0: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

0: मारी सारी उम्र की कमाई गई डॉलर है। हाय भैया
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।
3: बाप

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बिल्कुल अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग, वाकई बहुत ही सुंदर लाजवाब, और शायद ही बहुत ही कम साथियों ने यह गीत सुना होगा। साथियों समय इजाज़त नहीं देता है हमें, क्योंकि 50 मिनट का ही प्रोग्राम होता है हमारे पास, और तमाम जानकारियाँ समेटे हम जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं ताकि कोई चीज़ या कुछ ऐसी बातें छूट ना जाएं, है ना। लेकिन साथ में गाने भी हम सुनवा रहे हैं। और साथियों मोहम्मद रफ़ी साहब को राष्ट्रीय सम्मान

1967 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रफ़ी साहब का फिल्मों में योगदान बहुत ही सराहनीय रहा। रफ़ी साहब ने लगभग 7,000 से अधिक और विभिन्न भाषाओं में गीत गाए हैं, जैसे कि अगर हम बताएं तो हिंदी के अलावा पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, कन्नड़, तेलुगु, असमिया, सिंधी सहित अनेक भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उनकी एक शायरी है बहुत ही सुंदर, जिसकी आवाज में मंदिर की घंटियां भी थी और दरगाह की दुआएं भी, जिसके सुरों में मोहब्बत की खुशबू भी थी और वतन की सदाएं भी थी। वो गायक नहीं, एक एहसास था जिसे दुनिया मोहम्मद रफ़ी कहती है। फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं और हमारी कोशिश यही रही है कि जो कम सुने जाने वाले गीत हैं, जो अनमोल रचनाएं हैं जिन्हें कई साथियों ने, बहुत हज़ारों साथियों ने शायद नहीं सुनी होगी, लेकिन हाँ हमारी आज कोशिश यही रही है कि ऐसे गीत सुनवाए जाएं ज़्यादा कि ताकि वो थोड़ा सा वो भी उस गीत की ओर अग्रसर हो। तुम जो हुए मेरे हमसफर, फिल्म 12 o'clock, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत से सजाया इस खूबसूरत गीत को ओपी नैयर साहब ने। फिलहाल हम सुनवा रहे हैं ये गीत, उसके बाद थोड़ा सा अंतिम जो रचना होगी तो एक अलग खूबसूरत रचना हम सुनवाएंगे, उससे पहले ये गीत।

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर मधुर रोमांटिक खूबसूरत गीत अभी आपने सुना। साथियों क्या कहें, हम जाते जाते समय बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है इंसान की। जी हाँ दोस्तों, वो गायक नहीं एक एहसास थे जिन्होंने दुनिया मोहम्मद जिन्हें मोहम्मद दुनिया मोहम्मद रफ़ी कहती है, और उनकी अगर हम विरासत की बात करें, अंतिम दौर की बात करें, तो सच में 31 जुलाई 1980 को जब रफ़ी साहब इस दुनिया से विदा हुए, तब पूरा देश शोक में डूब गया। मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग उमड़ पड़े, लेकिन कलाकार कभी नहीं मरते, वे अपनी रचनाओं में जीवित रहते हैं। और रफ़ी तो हर उस दिल में जीवित हैं जहां संगीत सांस लेता है। दोस्तों आज के इस विशेष सफर में हमने जाना उस फनकार को जिसने सुरों को इबादत बनाया और संगीत को इंसानियत से जोड़ा और अपनी विनम्रता से महानता की नई परिभाषा लिखी। मोहम्मद रफ़ी केवल गायक नहीं थे, वे भारतीय संगीत की आत्मा थे। एक छोटी सी शायरी के साथ विदा लेंगे। ना वो महफिल रही ना वो जमाना रहा, मगर उनका तरन्नुम आज भी सुहाना रहा, जिसे वक्त मिटा ना सके सदियों तक वो रफ़ी का सुरों का खजाना रहा। जब भी दिल को सुकून की तलाश होगी, कहीं ना कहीं रफ़ी की आवाज़ साथ होगी। सितारों में एक सितारा आज भी चमकता है, मोहम्मद रफ़ी नाम से जो हर दिल में धड़कता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। छोड़े जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत के साथ। अब मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि। रफ़ी साहब के अमर सुरों के सशत नमन करता है रेडियो आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS आग्रह का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे, जहाँ वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 3 भारतीय ध्वजवाहक टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर चुके हैं और भारत आ रहे हैं। इन टैंकर में 94 भारतीय चालक दल के सदस्य भी सवार हैं। ये तेल टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सन्मार हेराल्ड हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन गीत, जबरदस्त रोमांटिक, खूबसूरत गीत, और रोमांटिक भी के साथ साथ आह्वान भी कर रहे हैं, खो ना जा, खो ना जा। जी हाँ, वाकई बहुत ही सुंदर। एक और गीत रचना आ रही है, बहुत ही प्यारी, कितनी जवां है रात, फिल्म आज़ाद से, और जो आज़ाद फिल्म रही है 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है, लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में सुंदर रचना है, गीत राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत से संवारा है सी रामचंद्र ने। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, ऐसी सुंदर रात में किसकी याद नहीं आएगी, किसको याद नहीं आएगी। जी हाँ, हर इंसान को याद आती है कि जवां रात है और गीत भी बहुत ही ख़ास है। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है शोला जो भड़के, फिल्म अलबेला से, लता मंगेशकर और चितलकर और साथ में जो साथी हैं यानी कि कोरस हैं उनकी आवाज़ में शानदार खूबसूरत रचना। अलबेला फिल्म 1951 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत राजेंद्र किशन के हैं और संगीत से सवारा है सी रामचंद्र ने। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन, अनमोल, बेमिसाल रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा मस्ती भरा खूबसूरत गीत शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा गीत। साथियों, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और हम कभी सोचते हैं कि भाई किसी एक स्पेशल विशेष जो टाइटल होता है तो उस पर कुछ गाने या गीत सुनवाए जाएं आप सभी साथियों को। साथियों, हमारी नज़रों में एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत नज़र आ रहा है। ये रात खुश नसीब है। जी हाँ, ये रात खुश नसीब है, बहुत ही प्यारा गीत है और ये गीत वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आप सुनेंगे तो वाकई लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसे गीत हैं जो अक्सर सुनने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारी कोशिश तो यही रहती है हर बार जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, अच्छा लगता है कि कोई ना कोई टाइटल लिया जाए और उस पर आधारित कोई ना कोई खूबसूरत रचनाएँ आपको सुनवाई जाए। ये रात खुश नसीब है फिल्म आईना से, ये शानदार रचना लता मंगेशकर की आवाज़ में शानदार खूबसूरत रचना। आइए सुनवाते हैं ये अनसुना सा ये खूबसूरत गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। श्रोताओं, जैसे कि हमने बताया था कि जो स्टार्टिंग में इवनिंग से लेकर और 12 बजे तक जो कार्यक्रम होता है वो होता है इंद्रप्रस्थ चैनल का, और ठीक 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल। दोनों ही चैनल एक ही स्टूडियो में हैं जी, बस डिफरेंट इतना है कि कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ चैनल में प्रोग्राम होते हैं और कुछ समय के लिए AIR लाइव न्यूज़ 24/7 फ्रीक्वेंसी में होते हैं। दोनों ही एक ही स्टूडियो में कार्यक्रम होते हैं, और शायद हमारे बहुत सारे साथियों को पता नहीं होगा, लेकिन हाँ, सभी से आग्रह कर रहे हैं हम AIR लाइव न्यूज़ 24/7 और इंद्रप्रस्थ चैनल को यदि आप सराहें, प्यार करें, उसके कार्यक्रम को सुने, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे साथी सुन रहे हैं। और आजकल तो एक नई रवायत शुरू की है हमने, हम सब ने, कि अपने पोस्टर के माध्यम से सूचित किया जाता है, और आज हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, शायद हमसे पहले किसी ने किया नहीं है, कि हमने अपने स्टेटस पे ही वो पोस्टर डाला था, फिर हमने आकर यानी कि स्टूडियो में आकर हमने वो ग्रुप में, यानी कि जो हमारा जो ग्रुप होता है, और वहीं हमने अपना पोस्टर प्रेषित किया, और आप सभी साथियों ने सराहा, प्यार किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, एक ऐसा गीत आ रहा है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, बहुत ही रोमांटिक और लाजवाब खूबसूरत गीत है, फिल्म मेरे सनम से आशा भोसले की आवाज में शानदार रचना। गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से संवारा है OP नैयर साहब ने। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर और बेहद रोमांटिक खूबसूरत गीत।

जी हाँ, चले आइए हमारे पास। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। साथियों, इस कार्यक्रम में यानी कि गीत सुनहरे कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत भी आ रहा है बहुत ही प्यारा सुंदर लाजवाब गीत। साथियों, आज हमने गीत सुनहरे कार्यक्रम के माध्यम से हमने सोचा कि थोड़ा रात का समय है तो थोड़ा सा रात की जो रचनाएं हैं बहुत ही सुंदर और लाजवाब होती हैं, क्यों नहीं हम वो ना सुनवाएं। जी हाँ, तो हम सुनवा रहे हैं बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीतों का सिलसिला। जी हाँ, एक अंधेरी रात का जो एक आनंद होता है बेहद खूबसूरत लगता है हमें, है ना। तो आइए सुनवाते हैं एक और बेहतरीन लाजवाब रचना आ रही है और ये रचना वाकई बहुत ही खूबसूरत है। तो ये गीत आ रहा है आपके पास और ये रचना वाकई रातें हैं इकरार की। जी हाँ, प्यार की, इकरार की, मोहब्बत की, अपनेपन की। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये शानदार बेहतरीन रचना। कौन सा? जी हाँ, ये रातें हैं इकरार की।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारा सुंदर गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में। साथियों बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत, कैसी हंसी बहारों की रात है, फिल्म आदमी से मोहम्मद रफ़ी साहब की और तलत महमूद साहब की आवाज़ में शानदार रचना। संगीत से समाज सजाया है इस खूबसूरत गीत को नौशाद साहब ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रात से भरी सुंदर रचना।

एक चांद जमीन पर है, माफ कीजिएगा, एक चांद मेरे साथ है। बाकी बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी साहब और तलत महमूद की आवाज में शानदार रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत रोमांटिक गीत की ओर, तेरा तीर ओ बेपीर। जी हाँ दोस्तों, गीता दत्त की आवाज में शानदार रचना, आज की रात पिया नींद नहीं आएगी। जी हाँ, ये फिल्म एल्बम है, बहुत ही सुंदर है, आज की रात पिया। तो सुनवाते हैं एक खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, आज की रात भी आप बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज़ में। जी हाँ, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत भी बहुत ही शानदार है, बेहद लाजवाब है। जी हाँ, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। जी हाँ, आधी रात तो हो चली है, 2 बजने को हैं और बस ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद ठीक 2 बजे समाचार प्रसारित किए जाएंगे, उससे पहले एक शानदार बेहतरीन रचना आपके लिए हम सुनवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये गीत वाकई वाकई बहुत ही अच्छा है और हमेशा हमने सोचा कि चलिए ठीक है, हम गीत तो अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्या कहें, हमारे साथी हैं और साथ भी दे रहे हैं और हमें अच्छा लगता है। हमारे कई साथी हैं जो हमें सुन रहे हैं लाइव। जी हाँ, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। सुनवाते हैं एक और आज के कार्यक्रम की अंतिम और बेहतरीन शानदार रचना।

0: जी हाँ, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत कार्यक्रम गीत सुनहरे, आज आपके साथ था मैं आपका दोस्त ललित कुमार। साथियों, 2 बजने को है और कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। फीफा विश्व कप में ग्रुप एफ में नीदरलैंड और स्वीडन के बीच मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में चल रहा है। नीदरलैंड स्वीडन के खिलाफ 4-1 से आगे है। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती पर 3-0 की आसान जीत के साथ फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के लिए मैथियस कुन्हा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ में 2 गोल किए, जबकि विनीसियस जूनियर ने 3रा गोल दागा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi said tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, empowered by a range of welfare and outreach initiatives of the centre. Addressing the public gathering at Rairangpur in Odisha's Mayurbhanj district, the Prime Minister lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi. On the occasion, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Paschim Banga Divas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. The 12th International Day of Yoga will be celebrated today with the theme Yoga for Healthy Aging. The main event of International Day of Yoga 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. Meanwhile, in view of the celebrations of International Day of Yoga in the national capital, Delhi Metro services will today commence at 4 a.m. from its originating stations. The Delhi Metro Rail Corporation said that the train services will be available at an interval of 30 minutes till 6 a.m. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination is set to take place today. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Ahead of the examination, the National Testing Agency, NTA, has conducted nationwide mock drills as part of preparations for the re-examination. The NTA said it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. We have a report.
4: Over 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed for the secure, transparent and smooth conduct of the examination. A multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification, GPS-enabled vehicles with police escort for the movement of the examination material, and end-to-end secure handling of confidential materials to designated locations under sealed protocols. The NTA is also actively monitoring social media platforms to curb misinformation and prevent malpractice. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
3: At least 5 devotees lost their lives and 40 others were injured after a portion of the temple structure collapsed in Manwad Taluka of Maharashtra's Parbhani district. The incident occurred when a large number of devotees had gathered at the temple for darshan. Prime Minister Narendra Modi and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed deep sorrow over the tragedy and announced financial assistance of rupees 5 lakh each for the families of those who lost their lives in the accident. India's Access and Benefit Sharing ABS framework under the Biological Diversity Act 2002 has emerged as a global model for linking biodiversity conservation with community welfare. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that since 2008, the National Biodiversity Authority has mobilized over 266 crore rupees through benefit

0: sharing mechanisms with around 145 crore rupees disbursed to local communities, farmers, traditional knowledge holders and biodiversity management committees. India has categorically rejected the unwarranted comments made by Pakistan's President Asif Ali Zardari. Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said that he has in any case no locus standi to comment on matters that are internal to India. Mr. Jaiswal said that these comments are particularly absurd given Pakistan's own abysmal record on human rights, which is a matter of global commentary. He said Pakistan's long history of systematically targeting and victimizing minorities across various faiths is notorious. In cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 2:10:15। या दोस्तों, ये समय होता है बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम का, जिसका नाम है गीत बहार, फिल्म म्यूजिक ऑफ नॉन स्टॉप। जी हाँ, नॉन स्टॉप फिल्म गीत संगीत होता है और इसमें किसी प्रकार का भी हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नॉन स्टॉप ख़ास तौर से बनाया गया है कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के सीधा लगातार हर बार खूबसूरत गीतों की सुर माला हमेशा प्ले होती रहती है और जिसे हम शेड्यूल करते हैं। या दोस्तों, और बहुत ही सुंदर गीत हैं और हमारे कई साथी भी कह रहे हैं कि भाई हम 3 बजे तक भी कार्यक्रम सुनेंगे, तो आपकी बहुत मेहरबानी और इतना प्यार कर रहे हैं हमें, तो वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज इस कार्यक्रम यानी कि गीत बहार कार्यक्रम में आज मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट RJ ललित कुमार। तो आज शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही सुंदर गीत के साथ। ये गीत आ रहा है, ये कौन चित्रकार है। जी हाँ दोस्तों, ये कौन चित्रकार है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो हमने शेड्यूल किए हैं आप सभी साथियों के लिए। रात का समा है और कुछ नटखटपन लिए शानदार बेहतरीन रचनाएं हैं, कुछ रात के मुसाफिर की बात है, कुछ और भी बहुत सारे गीत हैं। तो बस जैसे जैसे समय हमें मिलेगा वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे कि हाँ, आप सभी साथियों को पसंद होने वाले शानदार खूबसूरत गीत प्ले किए जाएँ। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का पहला सुंदर बहुत ही खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई ये बहुत ही सुंदर गीत, बेहद खूबसूरत रचना। जी हाँ, ये कौन चित्रकार है? बूंद जो बन गई मोती, मुकेश साहब की आवाज़ में सुंदर रचना। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई बहुत ही प्यारा गीत है और गीतकार हैं इस शानदार गीत के भरत व्यास, और संगीत से सजाया है इस बेहतरीन रचना को सतीश भाटिया ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा है, रोमांटिक गीत है और वाकई, और हमारे साथी सुनना चाहते हैं ये सुंदर बेहतरीन गीत। खासतौर से जितेंद्र को ज़्यादा पसंद करती हैं और फैन हैं जितेंद्र की। अरे मैंने तुझको चाहा, यह है तेरी मेहरबानी, ढोल सजना ते ढोल जानी। जी हाँ, फिल्म धर्मवीर से, धर्मवीर फिल्म 1977 प्रदर्शित फिल्म रही है और मोहम्मद रफ़ी साहब की सुंदर खूबसूरत आवाज़ में ये शानदार रचना है। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर लव सॉन्ग्स।

जी हाँ दोस्तों, वहाँ के बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। हाँ, हो जाए कभी कभी ज़िंदगी में, तू मैं महलों का राजा, तू महलों की रानी। वहाँ की बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की, और ये गीत आ रहा है बहुत ही प्यारा। जी हाँ, जाने क्यों जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं, हमें नहीं पता बिल्कुल भी जलते हैं या नहीं जलते हैं, लेकिन हाँ, जलने वालों को जलना रहने दो और गीत संगीत का आनंद लेते रहिए। और यह गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, तो चलिए सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत हमारे साथी की पसंद पर। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन रचना फिल्म आशा से, जाने हम सड़क के लोगों से। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ एक बार फिर से गूंज रही है। आशा फिल्म 1980 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

हाँ दोस्तों, होता है ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी। लेकिन हाँ, सब कुछ भुला कर यदि आगे बढ़ने का प्रयास करें तो और भी अच्छा होता है। कहने वाले कुछ भी कहेंगे, जलने वाले बिल्कुल जलेंगे, तो जलने की आवश्यकता नहीं है, है ना? एक बहुत ही सुंदर गीत है, हम बंजारों की बात क्या पूछें। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत है और फिल्म धर्म वीर से सुंदर एक और रचना आ रही है किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज़ में शानदार रचना। फिल्म धर्मवीर 1977 रिलीज फिल्म रही है और वाकई बहुत ही प्यारा गीत भी है। गीत आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। नाम तो सुना होगा, है ना? तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। साथियों, समय हुआ है 2:35 और अब एक और खूबसूरत गीत आ रहा है आपके पास। बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही सुंदर। ये गोटेदार लहंगा, निकलू मैं ढार के, फिल्म धर्म कांटा से ये सुंदर रचना आ रही है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज में। सुंदर गीत, गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत नौशाद का। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार रचना।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, इंस्टेंट नॉनस्टॉप म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 3 बजने को हैं, अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में आज INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव राज्य में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। नीट UG 2026 पुनः परीक्षा आज संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पद्मश्री पी

नारायण कुरूप के निधन से मलयालम साहित्य ने अपनी एक विशिष्ट आवाज़ खो दी है। वे कवि, आलोचक, व्यंग्यकार और विद्वान थे जिन्होंने शास्त्रीय परंपराओं को समकालीन विचारों के साथ मिलाया। उनका निधन कल रात केरलम की राजधानी त्रिवेंद्रम में हुआ। फीफा विश्व कप के ग्रुप ई में जर्मनी और आइवरी कोस्ट के बीच मैच कनाडा के टोरंटो स्थित बीएमओ फील्ड में चल रहा है। अब से कुछ देर पहले ग्रुप एफ के मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 5-1 से करारी शिकस्त दी। ये मैच अमेरिका के ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में खेला गया। इससे पहले ब्राजील ने फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हैती को 3-0 से हराकर फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल।

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। प्रातः के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है अर्चना कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

त्रिशिव पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नम्मा ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप को प्रस्तुति दी है सरगाजी एस गोविंदराजन ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026 सुबह के 4:54 और ठीक 22 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे प्रसारण आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, हम आपको बता दें चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ जानकारी। 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी समाचार होंगे। आओ योग करें कार्यक्रम का समय 5 बजकर 10 मिनट का रहेगा। देशभक्ति गीत आप सुन सकते हैं 5 बजकर 20 मिनट पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 5 बजकर 30 मिनट पर आप सुन सकते हैं स्वर रंजनी कार्यक्रम। प्रातः 6 बजे हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी हिंदी समाचारों के साथ। 6 बजकर 5 मिनट पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। छः बजकर दस मिनट का समय कार्यक्रम वंदना का है। हम आपको बता दें 6:30 पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोलकाता से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसे आप 6:30 पर सुन सकते हैं। 6:40 का समय चिंतन का रहेगा, जिसमें योग और आधुनिक जीवन विषय पर आप विचार चर्चा सुन सकेंगे। श्रोताओं, ये थी इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर।

0: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर आयोजित सामूहिक योग सत्र में शामिल होंगे। कार्यक्रम ठीक इसी समय शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह 6:30 बजे से 7:50 तक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारत के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को नौसेना में शामिल करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एजेंसी ने कहा कि वो परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने ओडिशा में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। वे राज्य में कई महत्वपूर्ण रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई अवसंरचना परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर भारत आ रहे हैं। इनमें 86,00,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। टैंकर देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड पर 94 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि मानवाधिकारों के मामले में पाकिस्तान के दयनीय रिकॉर्ड को देखते हुए ये टिप्पणियां विशेष रूप से बेतुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था की अनिश्चितताओं के बीच मजबूत तैयारी बनाए रखना आवश्यक है। श्री सिंह ने मेघालय के शिलांग स्थित पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में सैनिकों से बातचीत करते हुए तकनीकी दक्षता, रणनीतिक दूरदर्शिता और संस्थागत नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार पद्मश्री पी नारायण कुरूप का कल रात केरलम में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरलम और माह में मंगलवार तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The 12th International

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें, जिसके अंतर्गत आज आप अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन जानेंगे।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं।
अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्ध मत्स्येन्द्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है, मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भ अवस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्ध मत्स्येन्द्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं, तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 5:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश भक्ति गीत।